सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com.
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
2: Now we need to understand, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं. ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस. अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग ड्रामा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी अभी तक तो हम बहुत सी चीजों को मैनेज कर रहे थे, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे थे, लाइफ को मैनेज कर रहे थे, अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, अपने प्रोफेशन को मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब खुद के ऊपर नजर गई तो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में समझा और अपनी सही पहचान करते हुए क्या वो सिचुएशंस हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, इस पर कई सारी बातें हम कर चुके हैं। आज भी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर पिछली कड़ी को हम देखें सिस्टर शिवानी, तो कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए थे कि जब सिचुएशन आ जाती है तो एक छोटा सा रिकैप लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि Why actually we need to manage the self?
1: We just saw last time के परिस्थितियां बहुत सारी हैं हमारे सामने जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक ही चीज है जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज माई रिस्पॉन्स। सो वी शिफ्टेड द फोकस के सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय क्यों ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें तो सिचुएशन अपने आप संयम में आ जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ एक बातों के बारे में हमने विचार किया। एक था साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जो हम उलझन कहते हैं ना, बहुत उलझन है क्योंकि हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो अगर हम एक मिनट निकाल के भी स्टेप आउट करें कि यू नो जो ड्रामा चल रहा है उसको यहां से न देखने की बजाय एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें हर एक एक्टर का रोल बहुत क्लियर दिखाई देगा और सिचुएशन जैसी है वैसे दिखाई देगी। और फिर जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वही प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो साक्षी दृष्टा वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा डिटैच्ड होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन मुझे नहीं कंट्रोल कर रही है, मेरा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन जब हम उसमें उलझे हुए थे कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। सो जैसे कि कई बार होता है ना, बहुत केओस हो रहा है, लेट्स से ऑफिस में होता है, आप कुछ प्रोजेक्ट पे हो, आज शाम को सबमिट करना है, यू नो डेडलाइन इज देयर एंड यू हैव टू सी द एनवायरमेंट ऑफ द ऑफिस, इट इज लाइक केओस, एवरीवन इज शाउटिंग एट ईच अदर एंड जल्दी करो क्यों नहीं हो रहा, ऐसे
0: ब्लेमिंग,
1: ऐसे वातावरण में वो प्रोजेक्ट खत्म होना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही है, क्योंकि द होल एनर्जी फ्लो इज वेरी नेगेटिव। लेकिन अगर हो तो जाएगा पूरा, लेकिन एक्सपीरियंस क्या रहा सारा दिन का या वो एक महीने का जब आप वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, स्पेशली इवेंट्स ऑर्गेनाइज हम करते हैं। अब रोल ही है इवेंट ऑर्गेनाइज करना, इवेंट कुड बी एज स्मॉल एज कि आपके घर पे आज एक डिनर है, आपके घर पे आज एक बर्थडे पार्टी है, दैट्स ऑल्सो एन इवेंट। और उस इवेंट में आप देखो पूरा परिवार कैसे केओटिक सा हो जाता है,
0: और उसके बाद जैसे ही सारे मेहमान जाते हैं आप ऐसे थक जाते हैं, बिकॉज इट इज लाइक इतना टायरिंग पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है।
1: तो ऐसे जैसे ये छोटी छोटी सिचुएशंस है, इनमें आप एक बार स्टेप आउट करके देखो। मॉर्निंग में आप देखो, जो आप घर पे, हमने लास्ट टाइम भी बात की कि मॉर्निंग का सीन कैसा होता है घर पे, अब इस मॉर्निंग के सीन में सपोज आज हमारे घर जो बहन आती है सफाई करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, वो आज नहीं आई, तो पूरा सीन कैसा हो जाता है। इट इज एवरी वन इज लाइक, अब एक है कि आप शोर मचाते रहो एक दूसरे पे चल, और एक है आप एक मिनट स्टॉप करो कि यू नो व्हाट एम आई डूइंग। घर साफ होता जा रहा है और अंदर क्लीनिंग द बर्तन, वे क्लीनिंग द हाउस एंड अंदर क्यों नहीं आए, ऐसे नहीं वैसे, इट्स अ सिचुएशन नॉट इन माई कंट्रोल, माई रिस्पॉन्स। तो अगर उस समय हम 10 सेकेंड भी अपने आप को स्टॉप करके कहें वॉट एम आई डूइंग एंड यू विल इमिजिएटली जस्ट स्लो डाउन, जस्ट हैव टू कम आउट ऑफ इट वन मिनट लाइक दैट। तो वन वॉज डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, द अदर वॉज फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन, कि हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आज जो अपने अंदर भर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भी हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है। तो लेट्स बी केयरफुल, जहां तक इन्फॉर्मेशन मीडिया से भी है, जहां तक इन्फॉर्मेशन चारों तरफ की, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा भरते जा रहे हैं। और उससे क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है ना यहाँ पे, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंज्यूम करने लगती हूँ बाहर से, तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर जो ऑलरेडी इतना भर गया है, इतना भर गया,
0: कॉर्नर नहीं है जिस पर लिखे हैं।
1: तो उसमें फिर मेरा रिस्पॉन्स फिर ऑटोमेटेड होने लगता है, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन

0: पे बेस्ड है और फिर इन्फॉर्मेशन भी कौन सी क्वालिटी की हम भर रहे हैं. तो जहां इन्फॉर्मेशन ही ज्यादा दर्द वाली भरेंगे तो रिस्पॉन्स फॉर ज्यादा दर्द वाला हो जाएगा. तो इसलिए हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन भरें तो भले हम सुन पढ़ तो रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य लें. तो एटलीस्ट फर्स्ट लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव. और तीसरा हमने देखा कि जब भी हम ये जर्नी पर हैं कि यस दर्द मेरी क्रिएशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ, फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब कभी ऐसी थोड़ी सी भी हार खा लें, रिएक्ट कर जाएं, एटलीस्ट देन स्टॉप एंड लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ. नहीं तो अगर एक बार दो बार चार बार ऐसे हार खाते गए तो लगेंगे नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम ही राइट था कि ये सब कुछ तो बाहर से ही आता. लेकिन अगर सपोज मैंने एक बार रिएक्ट किया, गुस्सा किया, नाउ लेट मी सिट बैक एंड यू नो रिकवर. जैसे कि एक इलनेस तो आ गई, लेकिन इलनेस का अब इलाज कर लें, उससे रिकवर हो जाए. क्योंकि हम उससे रिकवर नहीं होते तो एक के बाद एक बीमारी
1: फिर हमें इसके साथ जुड़ती जाते हैं.
0: तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार अगर बीमारी आपको कोई हो जाती है तो आपका अपना इलाज आपको पूरी तरह से करना चाहिए. ना शारीरिक बीमारी भी होती है, कहते हैं रेस्ट कर लो, अच्छी तरह से रेस्ट कर लो ताकि आप उस बीमारी से रिकवर हो जाओ. अगर आप बिना रिकवर हुए ही एक्टिविटी में आ गए तो वो बीमारी हो सकता है आपको फिर से दोबारा आ जाए. तो इसी तरह एक बार गुस्सा किया, उसमें से रिकवर नहीं किया तो 10 मिनट बाद फिर कुछ और हो जाएगा और फिर एट द एंड ऑफ द डे कहेंगे एंगर इज नेचुरल.
1: और इनफैक्ट नहीं, एक बार जब एंगर जब हो जाता है ना, जब अपने आप को रिस्ट्रेन किया उसके बावजूद भी हो गया, उसके ऊपर हमने काम नहीं किया उसी वक्त, तो उसके रिपरकशंस, क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुकी होती है, और उसके बाद ये देखा जैसे शिवानी कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं.
0: बिकॉज वी सॉ कि फीलिंग क्या होती है, फिर मेरी गलती तो थी नहीं, फिर जस्टिफाई मतलब आपकी गलती थी, देन अगेन दैट यू नो, क्योंकि वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम इतना डीप रूटेड है कि अगर एक वो थॉट आ गई कि मेरी गलती नहीं थी, दूसरी थॉट आएगी आपकी गलती थी, तीसरी थॉट आएगी फिर चेंज किसको होना चाहिए, आपको. यू सी ना, अगेन वी फॉल बैक इन टू दैट ओल्ड थिंकिंग पैटर्न. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिएक्ट कर भी दिया किसी भी फॉर्म का रिएक्शन बाहर या अंदर, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स एंड सिट बैक विद योर सेल्फ. अगर आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आपका कोई फैमिली मेंबर या आपके कोई फ्रेंड्स, अगर उनका मूड खराब हो गया, यू नो दे आर अपसेट एंड यू सी देम लाइक दैट कि दे आर अपसेट, दे आर इन पेन, तो आप क्या करते हो?
1: हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम उनके साथ बातें करने लगते हैं.
0: नाउ सी इज इन दैट नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, 2-3 मिनट भी हम टाइम निकालकर उनसे बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे. क्या बात करेंगे? हाउ आर यू? इट्स ओके, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, भूल जाओ, कोई बात नहीं. तो जबकि हम औरों के लिए ये टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि वो दर्द में है एंड उनका दर्द मुझे मैटर करता है, तो मैं अपना काम छोड़ के आपके साथ बैठूंगी, तो मैं अपना काम छोड़ के अपने साथ क्यों नहीं बैठ सकती? अगर मैं दर्द में हूं, मैं दर्द में ही काम करते जाती हूं, अपने साथ क्यों नहीं 2 मिनट निकालकर बैठ सकते?
1: That's right, true actually.
0: So the minute we go into pain, let's stop. अपने आप से बात करें, फिर उस सिचुएशन को पर्सपेक्टिव में देखें और रिकवर करें विद द पॉजिटिव थॉट, व्हाटएवर हैपेंड फाइन, आई एम अ पावरफुल सोल. अगेन यू नो, वो एक नेगेटिव साइकिल शुरू हुआ है थॉट्स का, कोई बात नहीं, उसको स्टॉप करके, कट करके, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करना है. अगर मैंने अपने आप को नहीं स्टेबल किया तो फिर मैं हर सिचुएशन में फेल होती जाऊंगी सारा दिन. आप देखो, अगर एक बार आपका मूड खराब हो गया आज सुबह सुबह, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, फिर हर सिचुएशन में, यही अगर आपने 2 मिनट निकाल लिया अपने, ना दिस इज ऑल मेडिटेशन. नो मेडिटेशन, क्योंकि फर्स्ट चीज है अपने आप से रिश्ता, फिर परमात्मा से रिश्ता, अपनी हीलिंग, दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन यू नो, एवरी टाइम वी थिंक इट्स सपोज टू बी वेरी टेक्निकल, नो, मेडिटेशन इज जस्ट ब्यूटिफुल, टेकिंग आउट टाइम, अपने आप से बात की, परमात्मा से बात की, अपना ध्यान रखा, उससे शक्ति ली. और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वो 1 घंटे के बाद 1 मिनट, ताकि वो ऑटोमेटिक अगर हमारी रूटीन में फिक्स हो जाए कि हम हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर उस 1 घंटे के अंदर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस हुआ था तो उस 1 मिनट के अंदर.
1: बिल्कुल, जैसे आप ये कह रहे हो, हम हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद घर फोन करते हैं, बच्चा ठीक है कि नहीं. सो अगेन यू नो, इस अपने हस्बैंड को फोन करते हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं.

0: कि कितने सारे लोग ऐसे करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बोलें, अपने आप के साथ करें कि मैं ठीक हूं कि नहीं.
1: यस, इट्स ओनली दैट. वो एक मिनट सिर्फ उसी के लिए है. और बजाय कि अब कई बार क्या होता है कि अगर हम वो एक मिनट निकालते हैं तो कई बार हम एक सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स में फिर चले जाते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मुझे दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, उसने ऐसा किया. नो, देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. हमें वो वन मिनट इसलिए नहीं निकाला है कि हम वो परिस्थिति का चिंतन करने वाले हैं उसमें बैठकर, उनको ऐसा उनको. सो इसलिए हम परिस्थिति का चिंतन ना करके तुरंत वो वन मिनट स्टार्ट ही करते हैं पॉजिटिव थॉट से कि आई एम अ पावरफुल बींग, या आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ लवफुल बींग. मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं जो शांति का सागर है, तो मैं आत्मा कैसी होंगे. तो क्या है, पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा.
0: इट जस्ट फिल्स यू द मोमेंट यू गिव दैट थॉट.
1: इसलिए वन मिनट में हम ये नहीं कहेंगे कि आप वन मिनट निकालकर हर टाइम उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो उस एक घंटे में
0: तो सोच रहे हैं.
1: हम वैसे भी सोच रहे थे. एग्जैक्टली. तो वो वन मिनट इसलिए निकलता है ताकि उस एक घंटे के अंदर जो ऑर्डिनरी वेस्ट, कभी थॉट्स, कभी नेगेटिव थॉट्स जो आ गई होंगी, तो ये वन मिनट में हम कॉन्शियसली प्योर थॉट्स क्रिएट करते. तो जितना भी थोड़ा सा वो एक घंटे के अंदर ऊपर नीचे हुआ होता है वो खत्म हो जाता है. भले हम अपने सभी भाई बहनों को ये बार बार कह रहे हैं, बट आई स्टिल फील नॉट मेनी आर ट्राइंग. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बात बहुत सिंपल लगती है कि एक घंटे में एक मिनट, ये कौन सी बड़ी बात है. बट ये एक घंटे में एक मिनट बहुत पावरफुल टूल है. अगर समवन जस्ट टेक्स इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट और इसको एक हफ्ते के लिए सिर्फ करे, एक हफ्ते के लिए आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा दो जो हर एक घंटे के बाद बजेगा ही बजेगा, और वो तो बजेगा लेकिन आप स्टॉप करेंगे. आप
0: वो स्टॉप तो करेंगे तो.
1: और आप पॉज करके वो क्रिएट करेंगे. लाइफ विल चेंज, दैट इज डेफिनेट.
0: वेरी ट्रू. और वो उस एक घंटे के बाद जो एक मिनट है उसमें ये नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं सोचना कि क्या हुआ था.
1: वो कई बार क्योंकि दर्द इतनी डीप रूटेड है ना, और वो वैसे ही चल ही रहा था उस एक घंटे में, तो कई बार वो एक मिनट भी उस सिचुएशन के बारे में या उस व्यक्ति के चिंतन के बारे में ही एक, बिकॉज वन मिनट इज वेरी शॉर्ट. और आप एक घंटे के बाद हर टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते. आप ऑफिस में हैं, आप बार बार ये नहीं कर सकते आप पांच मिनट निकाल लो, दस मिनट. सो इसलिए इट्स वन मिनट. लेकिन अगर वो वन मिनट एक्यूरेटली आप करो, अब होता क्या है, सपोज 9 to 10 इन द मॉर्निंग मेरा कुछ हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 10 o'clock अगर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो मेरा 10 to 11 ऑटोमेटिकली ठीक बीतेगा. लेकिन अगर मैंने वो वन मिनट 10 o'clock पे नहीं निकाला है तो मेरा 9 to 10 जैसा बीता होगा तो वो 10 to 11 पर इन्फ्लुएंस करेगा. फिर 10 to 11 भी थोड़ा अच्छा नहीं बीतेगा तो वो 11, तो somehow
0: 5 बजे तक तो स्टेज जो कुछ नहीं हो पाएगा.
1: फिर जबकि हम शाम को घर पहुंचते हैं तब तक तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है. हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं ना, डायरी रखते हैं कि 9 to 10 ये करना है, 10 to 11 ये करना है. तो जैसे आप ऐसी डायरी बनाते हो तो एक कॉलम और भी साथ में ऐड करो, 9 to 10 क्या फील करना है. What to do is one column, 9 to 10 what to do and what to feel. 10 to 11 कैसा फील करना है.
0: पावरफुल, लवफुल,
1: एंड बेसिकली एवरीवन वांट्स टू फील हैप्पी. अगर आप किसी से भी पूछो क्या चाहिए तो वन यूनानिमस वर्ड इज खुशी चाहिए. तो हम और आप, इट्स अमेजिंग, आप यू आस्क एनीवन टुडे कितने दिन खुश रहना चाहेंगे, कहते 365 days. अच्छा, पूरे दिन में कितनी बार, कहेंगे हर मिनट. प्योर डिजायर है कि मैं जीवन का पल पल खुशी में बिताऊं, और कर रहे हैं ऑपोजिट. क्यों? क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ. तो जैसे आप अपनी डायरी को टिक करते जाते हैं कि 9 to 10 ये काम हो गया, 10 to 11 ये काम हो गया, तो सेकंड कॉलम को भी चेक करें कि वो 9 to 10 आप जो अनुभव करना चाहते थे, खुशी का, स्टेबिलिटी का, वो किया या सिर्फ काम किया. और काम के साथ इधर फीलिंग दर्द वाली तो नहीं क्रिएट हो गई थी. लेट्स से आपका कल बच्चों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चों की स्टडी आपके लिए कंसर्न बनी हुई है एंड इट्स देयर ऑन योर माइंड, या आपके घर में फैमिली में कोई किसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इट्स ऑन योर माइंड. अब आप काम तो कर रहे हैं, आप टिक करते जाएंगे, ये काम हुआ, ये काम हुआ. मन की स्थिति क्या थी पूरा दिन. हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं. सिर्फ काम किया, काम किया, काम किया, लेकिन सारा दिन दर्द में बीता, हाउ फेयर इज इट, क्योंकि डे बाय डे फिर जीवन ऐसे तो बीत ही रहे हैं, फिर पूछो कैसे चल रहा है, कहेंगे

0: चल रहा है.
1: एंड देन समवेयर जो एक बहुत डीप रूटेड सभी के अंदर आज सेट होता जा रहा है कि दिस लाइफ इज नॉट वेरी एंजॉयबल. इट इज मोर लाइक चल रहा है. इट्स मोर लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम सिर्फ पूरा करते जा रहे हैं. और उसका रीजन सिर्फ एक है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे. इट्स नॉट दैट खुशी इम्पॉसिबल है. इट्स वेरी मच पॉसिबल. और इसीलिए हर एक के अंदर ये डिजायर है कि मैं खुश रहूं. लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप में कल्टिवेट हो जाएगी. आपने पूरी जो अपॉइंटमेंट डायरी बनाई, आप उस पर काम करते हैं तब तो वो आप एक एक टास्क अचीव कर पाते हैं. सिर्फ डायरी बना दी और किया नहीं तो हो जाएगा क्या? सिर्फ सोचने से कि मुझे ये करना तो वो अपने आप हो जाएगा.
0: करना तो पड़ेगा,
1: करना तो पड़ेगा ना. तो नाउ एवरीवन, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए. करेंगे क्या उसके लिए? एक मिनट निकालेंगे उसके लिए? हाँ करेंगे, फिर करते नहीं. तो अनलेस वी डू इट, वो अपने आप तो नहीं आने वाला. तो इसलिए मॉर्निंग में जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, 10 मिनट्स भी अगर अपने से निकालते तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं आपसे मेडिटेशन आगे हो रहा, परमात्मा से भी अभी तक कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, अपना दिन तो प्लान कर सकते हैं ना. दिन की प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ आज मुझे कैसा फील करना है पूरा दिन. तो वो थॉट हम सुबह सुबह क्रिएट करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, चाहे आज कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ गई, आई विल क्रॉस इट विद स्टेबिलिटी. आई एम पावरफुल. यू नो दिस इज अ थॉट आई हैव टू कीप गिविंग माई सेल्फ. फिर सुबह सिर्फ दिया, लेकिन फिर सारा दिन फिर सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, इसलिए वो एक घंटे के बाद एक मिनट, वो बहुत बहुत वैल्यूबल है. सो वो एक मिनट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके नेक्स्ट आवर पर भी यू नो प्रभाव पड़ता है. अगर हम ये एक एक मिनट निकालें हर घंटे के बाद, तो हम सारा दिन हमारी स्थिति कैसे रहेगी? और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाम को घर पहुंचेंगे तो कैसी स्थिति?
0: हम उस हालत में नहीं होंगे जिसमें हम थके हुए होते. इनफैक्ट फिजिकली हम जितना भी थके हुए हों, हम इमोशनली और मेंटली इतने ड्रेन्ड आउट होते हैं.
1: एक्चुअली फिजिकली हम बहुत ज्यादा नहीं थक रहे. आज क्या हमारा वायुमंडल है, अच्छे अच्छे हमारे ऑफिस हैं, एसी गाड़ी में हम ऑफिस जाते हैं, एसी ऑफिस में हम बैठे हैं, कम्फर्टेबली बैठे, कोई फिजिकल तो बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं. ये जो थकावट की फीलिंग है, इट्स मोर हियर. क्योंकि इमोशनली और मेंटली हम थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी की वेस्टेज बहुत हो रही है, क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं. पता ही नहीं चल रहा कहां वो एनर्जी डिप्लीट होती
0: है. थैंक्स सिस्टर शिवानी, वी शुड ट्राई टू टेल एवरीवन, हम सब आज संकल्प करें. मैं तो आज अभी इस एपिसोड के बाद एक घंटे के बाद का अलार्म लगाने वाली हूं, क्योंकि ये ट्राई करके देखें कि एक हफ्ता कम से कम हर एक घंटे बाद हम ये एक पॉजिटिव थॉट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एक मिनट में हमने परिस्थिति का चिंतन नहीं करना है, हमने उसे एक घंटे को भी नहीं देखना है,
1: अपने दर्द का भी चिंतन नहीं करना.
0: वही तो कर रहे होते हैं हम. तो ना परिस्थिति का चिंतन, ना अपने दर्द का चिंतन, और ना ही एक घंटे को भी देखें. सिर्फ अपने आप को ये कहें, वो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं कि मैं कौन हूं, और अपनी वो स्ट्रेंथ जो है वो अगले घंटे के लिए भी अपने आप को.
1: इट्स बेसिकली लाइक अ चार्जिंग. जैसे आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो पहले मोबाइल सुबह चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो सारा दिन में तो डिस्चार्ज हो जाता है. तो अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, चार्जर अपने साथ रखना शुरू किया ना. अब आप कहीं भी जाओ, हर जगह चार्जर लगे हुए हैं, विच इज वेरी गुड. ऑफिस में भी आप जाओ, चार्जर भी लगा है, फोन उसी के साथ लगा हुआ है. तो शाम को जब आप घर पहुंच रहे हैं, आप घर ड्राइव करके जा रहे हैं, आपका फोन फुल्ली चार्ज है. पहले क्या होता था, घर पहुंचने के टाइम वापसी पे वो फोन कई बार डिस्चार्ज हो जाता था. तो जब आपको चाहिए था वो, आप कहीं रास्ते में अटक गए, यू डिडंट हैव इट. सिमिलरली हियर, अगर आप सारा दिन में बहुत डिस्चार्ज हो गए, शाम को जब आपको वो एनर्जी चाहिए, आप घर पहुंचे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, सिर्फ वही टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, उसमें हम हमेशा हर रोज कैसे होते हैं?
0: डिस्चार्ज.
1: दैट इज द ओनली रीजन जो हमारे आज घर पे रिलेशनशिप्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं. क्योंकि हम सभी जब घर पहुंचते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वो शाम तक डिस्चार्ज की स्थिति में होता है.
0: और इनफैक्ट जो घर पे हैं वो भी डिस्चार्ज हो चुके होते हैं. एंड देन जैसे कि मैं सारा दिन का थका हारा आया हूं, वो कहते हैं कि मैं सारा दिन वेट करती रही, मैं सारा दिन घर पे बैठी रही, तो वो वहां टकराव जो है वो
1: तो पूरी इवनिंग जो है ना आपकी 7 to 10 या जितना भी टाइम आप घर पे हैं वो डिस्चार्ज स्थिति में है. फिर आप रात को सोए, चार्ज हुए, सुबह आप फ्रेश हैं, आप ऑफिस चले गए, फिर घर पे आए, फिर डिस्चार्ज्ड है, तो बेसिकली मेजोरिटी लोगों के लिए आज जितना टाइम परिवार वालों के साथ है उस समय हमारी स्थिति कैसी है?
0: बहुत थकी हुई होती है. वेरी ट्रू.
1: सो द एनर्जी विच वी हैव टू एक्सचेंज विद फैमिली वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रही है. और फिर अगर मेरी आज इवनिंग अच्छी नहीं बीती या कुछ ना कुछ यू नो हर टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट सा बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे ऑफिस पे पड़ेगा कि नहीं कल से?
0: बिल्कुल. ऑलरेडी थकी हुई होंगी, यू नो ऑलरेडी मेरा लड़ाई हो चुकी होगी क्योंकि मैं थकी हुई थी और थकी हुई होती है अगले दिन मॉर्निंग फिर मेरा यही.
1: आप किसी से भी आज पूछो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है तो ऑर्डर पता है क्या देंगे? वर्क, फैमिली एंड सेल्फ. पहले मेरा काम, फिर परिवार, फिर मैं खुद. अब काम इतना ज्यादा टाइम ले रहा है आज कहेंगे 10 घंटे 12 घंटे काम में चलेंगे, फैमिली को ही हम 2-3 घंटा दे पाते हैं तो वो थर्ड स्टेप तक हम पहुंचते नहीं,
0: अब तक हम सो जाते हैं.
1: इसलिए कहेंगे सेल्फ के लिए टाइम नहीं है क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी ले रहे हैं. वॉट इज द ऑर्डर? वर्क, फैमिली, सेल्फ, क्या ये राइट ऑर्डर है हमारा? तो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो द ऑर्डर शुड बी सेल्फ, फैमिली, वर्क. सेल्फ हेल्दी होगा तो फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे. फैमिली हेल्दी को छोड़कर आप ऑफिस जाएंगे तब जाकर आपका वहां कुछ मन लगेगा, आप ठीक से काम करेंगे. सेल्फ दर्द में है तो रिलेशनशिप्स घर पे थोड़े से ऊपर नीचे हुए. अब इस दर्द में इस परिवार को छोड़ के ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस पहुंच के मन कहां होता है? ये हुआ, ये हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट है, पता नहीं क्या. तो आर यू डूइंग जस्टिस टू वर्क ऑल्सो? तो अगर स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है आप परिवार के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते और काम के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते. हाँ, बहुत सारे घंटे स्पेंड कर सकते हैं वहां
0: लेकिन आपका बिल्कुल निकलेगा नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा.
1: एक्चुअली पहले वर्क को कर दिया, सेल्फ के ऊपर टाइम नहीं दिया तो उस वर्क में ज्यादा घंटे स्पेंड करने पड़ रहे हैं क्योंकि दर्द में आप काम करो और हेल्दी स्थिति में काम करो फर्क.
0: ऑफकोर्स आप इतने बोझिल, इतने हैवी, इतने थकान से भरे हुए होते हो. इनफैक्ट यहां से शिवानी एक और बात कि बार बार हम ये कहते हैं कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ?
1: काम परिवार के लिए.
0: इसलिए ये होता है, जब भी आपने ये कहा तो मेरे को बिल्कुल सामने ये याद आएगी कि वर्क को हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है लेकिन हमारी प्ली ये होती है
1: कि फैमिली के लिए,
0: हमारे लिए तो काम.
1: एब्सोल्युटली. लेकिन फैमिली को क्या चाहिए आपसे? फैमिली को सिर्फ धन नहीं चाहिए आपसे, चाहिए क्या आपसे? खुशी चाहिए, घर में प्यार चाहिए. आज मेहनत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन खुशी का पैरामीटर, घर में आपस में विश्वास का पैरामीटर, प्यार का पैरामीटर, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा और ही घटता जा रहा है जस्ट बिकॉज द प्रायोरिटी वॉज नॉट राइट. एंड जब हम ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ घंटे कि भाई वर्क को 14 घंटे दिए तो सेल्फ को 2 घंटे देना, नहीं. इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए कि जब तक मैं हेल्दी नहीं हूं मेरी फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती और जब तक मैं और फैमिली हेल्दी नहीं है मैं काम के क्षेत्र में भी जस्टिस नहीं कर सकता. तो मुझे पहले अपने को हील करना पड़ेगा. मैं ठीक हो गया, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होकर मैं ऑफिस गया. नाउ आई विल बी डूइंग जस्टिस टू वर्क एंड जितना काम मुझे करना है 100% गारंटी इट विल गेट डन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम. हम काम कर रहे हैं, यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेपर पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मन कहां पर है?
0: वहां क्या चल रहा होगा?
1: अगर घर पे नहीं भी है, ऑफिस में कोई ना कोई बात हो जाती है सारा दिन और मेरे अंदर ताकत तो है नहीं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो काम भी कर रहे हैं मन ऐसा क्यों, ये क्यों, आगे कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं. सो एम आई डूइंग फुल जस्टिस टू वर्क? इवन काम के क्षेत्र में फुल कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहां पे स्टेबिलिटी चाहिए लेकिन वो स्टेबिलिटी तब होगी जब सेल्फ पे काम किया होगा. लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हमारा सारा टाइम काम पे है. तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो राइट सेट करनी है. पहले मैं ठीक तो परिवार ठीक, परिवार ठीक है फिर अब मैं काम पे जाता हूँ. देन एवरीथिंग विल बी मोर यू नो फ्लोइंग एंड वेरी स्मूथ एंड आई विल एंजॉय एवरीथिंग आई एम डूइंग. नहीं तो मैं तीनों को एंजॉय नहीं कर रहा, तीनों जगह ही कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे.
0: और मजे की बात तो ये दिख रही है कि सेल्फ पे काम करने के लिए आपको उतने 14 घंटे नहीं चाहिए.
1: एक मिनट, एक घंटे के बाद एक मिनट. इट्स जस्ट दैट इट लुक्स टू सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखना पड़ेगा. वो सुनते में इतना इजी लगता है कि समवेयर
0: कर लिया.
1: हाँ, एंड मेजोरिटी बोलते हाँ हम तो जरूर कर लेंगे लेकिन वो करना पड़ता है, विधि पूर्वक करना पड़ता है. कई कॉर्पोरेट हाउसेस में जब उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ऑफिस में जैसे स्पीकर्स लगे हुए हैं एंड लिटिल लाइट म्यूजिक, नो मेडिटेशन म्यूजिक हर

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है,

0: बातें, सिचुएशंस और मैं, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा? दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यान पिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपन एकता है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साते। पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ हैं और जिंदगी को एक नई नजर से देखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताएं, आज कुछ नई बात शुरू करते हैं। अभी तक हम बहुत सी बातें अपने जीवन से जुड़ी जान रहे हैं, लेकिन आज कहीं न कहीं ऐसा होता जा रहा है कि जीवन की हर सिचुएशन हम पर हावी हो जाती है। कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको बदले, नहीं बदल पाते हैं। धीरे धीरे उसको बदलना भी छोड़ देते हैं और हालात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या यही है जिंदगी? कई बार मन करता है कि ये जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो कौन से ऐसे कौशल हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक नई श्रृंखला के साथ आपके साथ हैं लाइफ स्किल्स। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुस्ते शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, शुरू यहीं से करते हैं कि क्या हुआ है जिंदगी में कि प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि जिंदगी अच्छी हो जैसी हमने इमेजिन की हुई है, नहीं हो पाती है, और फिर हम कहीं ना कहीं गिव इन करना शुरू कर देते हैं। और फिर देन वी से कि लाइफ मीन्स कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी का मतलब ही है कि एक्सेप्ट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ऐसे ही जीना है। सचमुच क्या जिंदगी ऐसे ही जीनी है?
1: नहीं, बिल्कुल आपने जो बताया वही बात सिद्ध करती है। आज लोग भी कहते हैं, लोगों से पूछो भी कि भी कैसे हो, तो कहेंगे चल रहा है, या तो बहुत प्रॉब्लम्स है,
0: जी रहे हैं,
1: हाँ, या तो नहीं गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति ने उनके रिस्पॉन्स ही प्रूव करते हैं कि भी लोग इस प्रकार की जिंदगी नहीं चाहते। अब जितने सुसाइड्स को भी आज देखो, भी बच्चों में भी इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, वह भी प्रूव करता है कि भी सीरियस प्रॉब्लम है, कि इट्स नॉट एन स्मॉल प्रॉब्लम, इट्स नो रियली डीप रूटेड सीरियस प्रॉब्लम, कि जिसको लाइफ स्किल्स को समझ करके हमें दूर करना चाहिए।
0: जैसे शिवानी गाड़ी पे आता है फिर से, आपके साथ लोग गाड़ी को बहुत एसोसिएट करते हैं, क्यों धक्का लगाना पड़ रहा है? क्या पेट्रोल की कमी है? क्या हमने इंजन की ओवरहॉलिंग नहीं की? व्हाट हैज रियली हैपेंड?
2: सबसे पहले तो क्या हमें गाड़ी चलाना आता है? बाकी सब भी तो बाद में करेंगे ना। गाड़ी में पेट्रोल भी तो मैं तब भरूंगी तब मुझे पता हो कि वो पेट्रोल टैंक खोलने वाला जो नॉब है वो कहाँ पर है। हाउ मच डू आई नो अबाउट माई कार? एंड इट्स नॉट अबाउट द कार, इवन इफ यू लुक एट इट्स अबाउट द ड्राइविंग। हाउ मच डू आई नो द स्किल? इवन अगर गाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा ना पता हो, ड्राइविंग की स्किल तो आनी चाहिए ना। दबाना है ब्रेक, दबा दिया एक्सेलरेटर, जो टाइम चाहिए कि हमें एकदम स्टॉप हो जाना चाहिए उस टाइम कई बार हम बहुत फास्ट चले जाते हैं। कोई टाइम चाहिए जो हमें फास्ट कुछ करना है, हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो तब दबाना था एक्सेलरेटर, दबा दी ब्रेक, ब्लैंक हो जाएंगे, मुझे नहीं पता अब क्या करना है जीवन में ना। तो वी से माई लाइफ हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, एंड इट नॉर्मली कम्स टू अ स्टैंड स्टिल एट अ पॉइंट वेर इट एक्चुअली नीड्स टू बी गोइंग एट अहेड। सो जस्ट बिकॉज आई डोंट नो when to press the accelerator, when to press the brake. So जैसे हम जीवन की बहुत सारी skills सीखते हैं, अपनी गाड़ी कैसे चलानी है, अपना computer कैसे चलाना है, even अपना mobile कैसे use करना है, साधन सारे हैं, चलाना ना आता हो तो उसका पूरा use हम नहीं कर पाएंगे। If I have a mobile but I don't know कि उसका camera कैसे work करता है या उसका बाकी चीजें कैसे work करती है, I won't be able to use it to its full potential. And तो मेरे पास चीज है लेकिन मैं उसका

0: पूरा उपयोग नहीं कर पा रही जिस तरह से मुझे करना चाहिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. सेम विद लाइफ. आई हैव दिस ब्यूटिफुल लाइफ. आई हैव द यू नो पावर टू टेक इट द वे आई वॉन्ट. लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं है इट जस्ट सीम्स टू बी गोइंग इन एवरीवेयर अदर डायरेक्शन.
1: खिंच जाती है कभी वो पिक्चर खराब हो जाती है हमसे. क्या हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम आती है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम सही तरह से उसे सॉल्व करें. वो क्यों नहीं कर पाते? जैसे कहा सर शिवानी आपने कि स्टैंड स्टिल हो जाती है सर. कोई ऐसी घटना हो गई जीवन में और हम चाहते हो क्योंकि सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो जाती है लोग नहीं चेंज कर रहे होते तो हम नहीं उसको पार कर पाते.
0: आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है जीवन ऐसी हो जाती है सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं लोग नहीं चेंज हो पा रहे तो इसलिए हम स्टैंड स्टिल हो गए. इसका मतलब मेरी गाड़ी रुपा की सब लोग चला रहे हैं. सी आई जस्ट सेड कि माई सी इवन इफ आई एम स्टक इन द ट्रैफिक जैम लेट से आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियां फिर भी मुझे ये ध्यान में आना चाहिए कि मेरी गाड़ी का कंट्रोल किसके पास है. मेरे पास है. आई हैव टू फाइंड माई वे इवन थ्रू अ बिग मेस. सिमिलरली अगर कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है तो भी मेरी गाड़ी का कंट्रोल मेरे पास है. आई हैव टू फाइंड माई वे कि मुझे कैसे टर्न करना है मुझे कहां रुकना है कहां फास्ट जाना है. बट हम आजकल ये कह रहे हैं उनकी गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ. मेरा एक्सीडेंट तो होना ही था. दिस इज द ओनली प्रॉब्लम. दिस इज द स्किल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस सीरीज कि येस इट्स अ जर्नी एंड इट्स लाइक अ जर्नी ऑन द रोड जहां सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में सबकी गाड़ियां अलग अलग सबका तरीका चलाने का अलग अलग. बहुत सारे लोग हमें आसपास मिलेंगे जो थोड़ा सा गलत तरह से भी चला रहे हैं. यू नो नाउडेज वी से कंपटीशन गलत तरह का कंपटीशन समटाइम्स वी से ऑफिस पॉलिटिक्स ये सब चीजें हैं. लोग मुझ पर चिल्ला रहे हैं तो मेरे हाथ में क्या है. इट जस्ट मीन्स कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो थोड़ा सा ठीक से नहीं चला रहे बट फिर भी मेरी गाड़ी मेरे हाथ में है. दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू वर्क ऑन. नॉट जस्ट कीप ऑन यू नो ब्लेमिंग that other people are not driving well. Always on the road we will have different kind of people. Koi kisi tarah chalayenge koi kisi tarah chalayenge. Mera focus apni journey par hona chahiye aur uska control mere paas hona chahiye. Jaise hi control bahar de diya fir to then there is nothing much left to do. So what we want to do in this series is get back the control. To lead my life the way I want to lead it, not the way other people and situations are making me lead it. That is the most important thing.
2: Very true. दूसरी एक बात अगर ये भी आप देखेंगे ना मनोविज्ञान में भी मानने लगे हैं कि आज हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया है ना बाह्य चीजें हमें कंट्रोल कर रही है. वास्तव में हमारा कंट्रोल इंटरनल होना चाहिए. बस ये बात भी अगर अच्छे से हम चर्चा कर ले लोग इस बात को समझ ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है. और यही कला सीखनी है कि कैसे हमारा जो कंट्रोल है वो हम इंटरनल लाए.
1: नहीं पहले हमसे जो गलतियां हुई मैं वही बार बार कर रही हूँ कि उनको एक बार देखें कि क्या हमने रॉन्ग साइड चलाना शुरू किया है.
2: गहराई से हम सोचे दो प्रकार से. आउटवर्डली अगर हम सोचे तो गलती यहां पर हुई है कि हम बाह्य बातों पर डिपेंडेंट हो गए. ये समझने लगे कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा मेरे पास बड़ा घर होगा तो मैं सदा के लिए शांत रहूंगा मेरी पोस्ट पोजीशन बड़ी हो जाएगी जितना बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाएगा. परंतु ये वो एक बहुत बड़ी गलती कर ली. वह चीजें भल जरूरी है ये शरीर को कंफर्टेबल बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है परंतु वह सुख नहीं दे सकती वह हमें सदा के लिए आनंद नहीं दे सकती. बस इसके कारण एक तो हुआ. दूसरी बात कि हम लोगों पर भी डिपेंडेंट हो गए और रिलेशन में डिपेंडेंट हुए. इसके कारण फिर वह सदा के लिए व्यक्ति हमें सुख नहीं दे सकता है तो और हम दुखी हुए नहीं और निराश हुए. इरिटेशन आ गया है ना हेट्रेट आने लगी इस प्रकार की सभी नेगेटिव बातें डेवलप हुई. और एक गहराई से अगर बात देखें तो आज हम जो चीज हमें जीवन में चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए आउटर एनर्जी को यूज कर रहे हैं और जो आउटर एनर्जी है वो हमें अलग अलग दिशा में ले जा रही है.
1: आउटर एनर्जी मीन्स व्हाट?
2: आउटर एनर्जी ऐसा कहेंगे कि मैं अच्छा दिखूं है ना मेरा शरीर अच्छा हो या तो जैसे मैंने कहा मेरा घर बहुत अच्छा होना चाहिए मेरी कार दूसरों से बड़ी होनी चाहिए. ये जो सब हम प्राप्त करने के पीछे एनर्जी को लगा रहे हैं वह है आउटर एनर्जी.
1: अच्छा अपनी ही ऊर्जा.

0: अपनी ऊर्जा
1: अपनी ही कर्म की ऊर्जा जो है ये इन सब की प्राप्ति में
0: लगा रहे, बाह्य चीजों की प्राप्ति में लगा रहे, और इसके कारण एक तो वो वेस्ट होती है और फिर अल्टीमेटली हमें लगता है कि मेरे में खोखलापन आ गया। आज देखे तो लोगों के पास सब कुछ है लेकिन इनर वैक्यूम है, परंतु अगर हम इनर एनर्जी को यूज करने लगे तो एक तो वह सेव होगी, थोड़ी सी एनर्जी में आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे और इनर एनर्जी से आपको सही दिशा भी मिलेगी।
1: सर एक मैं एक बात ये जाननी है कि इनको प्राप्त करने के लिए एनर्जी तो यूज करनी पड़ेगी। सी अगर मेरे को गाड़ी चाहिए, चलो मैं उससे ये नहीं कहूँ कि मुझे सुख प्राप्त होगा, पर गाड़ी तो चाहिए ना, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कुछ भी है, या प्रोफेशनली सक्सेस तो चाहिए, रिश्तों में भी संबंधों में भी मधुरता चाहिए, या बंगला कुछ एक कम्फर्ट चाहिए आज के वक्त में, तो उसको करने के लिए ऊर्जा चाहे वो बाहर की मेरी अपनी ही ऊर्जा मुझे इस्तेमाल तो करनी ही होगी।
2: आज मॉर्निंग में हमने किसी से पूछा आपको जीवन में क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी गाड़ी, अच्छा बच्चा, अच्छा मकान, एंड देन ही सेड आई कैन गो ऑन, द लिस्ट इज वेरी वेरी लॉन्ग। आई सेड ये लिस्ट कब तक चलेगी? सेड जीवन भर मेरे पास ये लिस्ट बहुत लंबी है, एंड लिस्ट में हर वर्ड आ रहा था जो चाहिए, क्योंकि ये सब होगा तो मैं खुश होऊंगा, एंड अच्छा चाहिए, यू नो द बेस्ट पार्ट वॉज द वे ही केप्ट सेइंग अच्छी पत्नी, अच्छा बच्चा, नो वेयर ऑन दिस लिस्ट आई एम देयर कि मैं अच्छा ना, आप अच्छे, आप अच्छे, बस दैट इज द ओनली वेयर व्हाट यू सेड, व्हाट मिस्टेक हैव वी मेड, देन दैट इज द मिस्टेक।
1: मैं अच्छी नहीं हूँ,
2: सी इट्स नॉट कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तो वो अच्छे नहीं है, सब जो हैं जैसे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे चाहिए मतलब जो इमेज मैंने क्रिएट किए वैसे वाले वो चाहिए, अगर वो वैसे वाले होंगे देन आई विल बी हैप्पी। तो पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया?
1: उस इमेज पे, उस इमेज की प्राप्ति पे,
2: उनके पास, कि वो वैसे होने चाहिए तब मैं खुश होऊंगा। अब ये नहीं होने वाला है, लेट अस वेक अप टू दिस रियलिटी, अवेकनिंग इज दिस वेक अप, उठ जाएं, जागृत हो जाएं कि ये जो हम बार बार अच्छी पत्नी, अच्छा दोस्त, अच्छा बच्चा, ये अच्छा अपनी डेफिनेशन के हिसाब से हम क्रिएट कर रहे हैं, और हम कहेंगे हम तब खुश होंगे जब वो रिश्ता इस डेफिनेशन में फिट होगा।
1: तो हम एक्सेप्ट तो फिर भी करके बैठे ही हैं, सी
2: तो फिर हम खुश नहीं है ना।
1: हाँ, वो अब
2: सी अगेन आपने तो अपनी आपने अपनी शॉपिंग लिस्ट में ये लिखा कि मुझे ये चाहिए, तो अगर आपको जब तक वो नहीं मिलेगा देन यू आर वेरी एम्प्टी।
1: तो हम चाहत भी खत्म कर दें।
2: इट्स नॉट अबाउट चाहत खत्म
1: कर दें, पीपल आर सेइंग यू नो कि बिना चाहत, उन्हीं से अगर आप आगे बात करेंगे तो उनसे कहेंगे चाहत तो खत्म करनी, अगर चाहत भी ना रही तो लोग बोलते हैं हमारे पास फिर बचा क्या, एक वही ड्रीम भी तो लेकर चल रहे हैं।
2: सो देन वी आर ऑलवेज एम्प्टी ना, जैसे बात हुई कि हमेशा मेरा हाथ ऐसे है ना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये आएगा देन आर बी बेटर, ये आएगा देन आर बी बेटर, और वो उसने बहुत क्लियरली कह दिया लिस्ट इज वेरी लॉन्ग कि मेरे जीवन के एंड तक ये लिस्ट रहने वाली है, मतलब एंड तक मैं कैसे रहने वाला हूँ, ऐसे रहने वाला हूँ, मतलब मैं एंड तक भी, एंड वट एवर वी कॉल, कि जब तक मैं इस कॉस्ट्यूम में हूँ आई एम नॉट गोइंग टू बी कंटेंटेड, एंड देन आई एम गोइंग टू से, एंड देन अब ही विल गेट अ कार, ही विल गेट अ जॉब, ही विल गेट मैरिड, बट डेफिनेटली ही वॉन्ट फील कि हिज वाइफ इज द अच्छी वाइफ, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू फिट इन टू दैट परफेक्ट।
1: आज वैसे फिट कर भी जाएगी तो कल तो होगा ही होगा,
2: यू नो, तो वो डिसकंटेंटमेंट हमेशा बनी रहेगी। लाइफ स्किल्स मतलब मैं अपने अंदर कौन सी स्किल्स क्रिएट करूं जिससे चाहे वो जॉब है चाहे वो कोई रिश्ता है उसमें मैं कैसे अपने आप को मोल्ड करके अपने आप को कंटेंटेड और अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करूं। दिस इज इम्पोर्टेंट।
0: चाहत बुरी नहीं है, परंतु हम क्या चाहते हैं वहां गड़बड़ वहीं पर है, क्योंकि बाहर की चीजें चाहते हैं और उसका कहीं अंत नहीं है, वहां फुलफिलमेंट होनी ही नहीं है, इसीलिए मैंने आउटर एनर्जी कहा। अगर अंदर की चाहत हो कि मुझे शांति चाहिए, मैं एक बार बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊं, तो फिर सब कुछ मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है। लोग ये सोचते हैं कि मुझे यह सब मिल जाएगा फिर मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, परंतु सत्य बिल्कुल इससे विपरीत है। पहले आप जहां भी हो संतुष्ट हो जाओ और फिर आपको जो चाहिए वह सब कुछ मिलेगा। और यही स्किल्स है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भी कैसे स्किल्स हमारे में आ जाए कि हम जहां है सचमुच सेटिस्फेक्शन का अनुभव करे, सुख का अनुभव करे, तब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तब वो जो आर्ट है, क्योंकि लाइफ इज एन आर्ट है ना, वो बैलेंस करना पड़ेगा। वो बैलेंसिंग कैसे होगा?

0: सी चाहत में मेरे को ही काम करना है तो फिर चाहत क्या. सी अगेन इन माई ड्रीम.
1: आपको कुछ भी चाहिए हो बिना काम करे मिलेगा क्या? कुछ
0: क्या बिना पढ़े बोलेंगे क्या मुझे पास होना चाहिए?
2: कितने लोगों का ये ड्रीम होता है,
1: लेकिन पास तो नहीं होंगे ना. कुछ भी चाहिए तो वो ऐसे नहीं आ रहा ना. कुछ भी चाहिए मीन्स आई विल वर्क टूवर्ड्स इट एंड आई विल गेट दैट, बट आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए. पास होना चाहिए स्टडी. ऐसा होगा नहीं कि आप एफर्ट डालेंगे, स्टडी करेंगे और आप पास नहीं होंगे, तो ऐसा होगा नहीं ना. तो हर एग्जाम में आपको अगर करना है, पास होना है, तो बिना हमारे एफर्ट के नहीं होगा. आपने कहा हम जीवन भर ये करते आए हैं. एक्चुअली नॉट. जीवन भर हम सिर्फ वेट करते आए हैं कि दूसरे वो करेंगे जो मुझे चाहिए. सो देन हमने सिर्फ वेट किया एक्चुअली,
3: और हमने अपनी लाइफ मिजरेबल बनाई.
0: लेकिन एक जो अभी आपने बात कही कि आई थिंक इट्स समथिंग विच नीड्स टू वर्क ऑन, कि एक्चुअली अगर मैं ड्रीम की बात करूं, चाहत की बात करूं, तो मैं बिना कुछ किए ही चाहती हूं कि वो हो जाए. ये तो एक है, लेकिन कई बार मैं उसको उसकी प्राप्ति के लिए कर्म भी करती हूं. करते हैं हम कर्म और वो नहीं सफल होता. मतलब जैसे पास होने की बात है या अच्छी नौकरी की बात है या फिर प्रोफेशनली बहुत ग्रो करने की बात है, जो चाहत है, जो ड्रीम है कि मेरे को यहां पहुंचना है और उसके लिए मैं मेहनत भी करता जाता हूं, बट one I'm not able to reach and by the time I reach I'm so tired that it doesn't matter.
1: That's because maybe the journey had too many obstacles and too many hurdles and I was not driving right. You know, aap ek jagah se dusri jagah drive pe to ja rahe, lekin aapne kaise drive kiya us journey par. End mein jab aap apne destination par pahunchte hain, you might be totally just exhausted kyunki you drove the wrong way. Aapne kisi ko takkar mari, yahan kiya, bar bar brake bahut zor se lagayi, bahut zyada honking ki. How are you going to feel at the end of the journey? तो वो ही आज हो रहा है. आपको प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए, इट्स अ जर्नी, आप उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हर रोज ऑफिस जाकर आप लोगों पर चिल्ला रहे हैं, हर रोज आप चिंता कर रहे हैं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, हर रोज आप सोच रहे हैं मेरे से पहले कोई और उस पोजीशन पर नहीं पहुंच जाए. तो जो गिरीश भाई ने कहा, इंटरनल जो एनर्जी आप सारा दिन क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट इज द क्वालिटी? तो फिर जब आपको वो पोजीशन, वो टाइटल मिल भी जाएगा, you're quite drained out by the time you reached there. And फिर आपको वो टाइटल मिल गया, within a week you are already aiming for your next title. And फिर again a new journey, again वो journey ऐसे ही होगी. तो फिर आपको वो एक हफ्ता नहीं याद रहता जब आपको अच्छा लगा वो टाइटल मिलकर, आपको वो पूरी journey जो exhaust कर देता.
0: टाइटल तक पहुंचने से पहले पहले मेरा नेक्स्ट की इच्छा हो चुकी.
1: तो हो जाता है
3: ना. What I said in the beginning कि हम आउटर एनर्जी को यूज कर रहे हैं.
1: एक्चुअली चाहिए कि लिस्ट में पहले तो बहुत क्लियर हो जाए कि क्या चाहिए. That is also very important. Even अगर चाहिए की लिस्ट है, ये चाहिए तो क्यों चाहिए? Let's keep coming down, down, down. ये चाहिए क्यों चाहिए? आपको पोजिशन चाहिए तो क्यों चाहिए? बिकॉज लोग अप्रिशिएट करेंगे, वो मान शान मिलेगा. अच्छा, वो भी क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो मिलेगा देन आई विल फील गुड. इट हैज टू कम डाउन टू आई विल फील गुड. आप चाहे कोई भी बात ले लो, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल सक्सेस है, या चाहे वो गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी है.
0: इट मेक्स मी फील गुड.
1: तो चाहिए लिस्ट में एक्चुअली तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए, एंड दैट इज फीलिंग गुड. एंड नाउ वी वॉन्ट टू ट्राई कि पहले हम फीलिंग गुड क्रिएट कर लें, देन वी विल एम एंड बाकी सारी चीजें जो चाहिए.
3: और भी नहीं, और एक देखो बात कि साइकोलॉजी में माना गया है कि हार्डवर्क नहीं जरूरी है, स्मार्ट वर्क इज नेसेसरी. ये भी कहते हैं
0: कि स्मार्ट वर्क
3: दैट इज व्हाट नो इज अ स्किल. लाइफ स्किल इज स्मार्ट वर्क. और भी ये मानते हैं हार्ड वर्क ही नहीं, टीम वर्क जरूरी है.
0: एक और आपसे एश्योरेंस चाहिए कि अभी शिवानी ने कहा कि इफ आई फील गुड राइट नाउ, वट एवर वेर एवर, इफ आई लर्न टू फील गुड, विल आई गेट एवरीथिंग आई एम एमिंग?
3: डेफिनेटली. प्रॉमिस. बहुत डीप की बात है. तभी आपको बता दूं, इट्स वेरी डीप थिंग. मे बी आगे हम डिस्कस कर पाएंगे इस बात को.
0: ऐसा
3: माना, हाँ हाँ, नहीं, इसमें पूरा एक आध्यात्मिकता में माना गया है. लोग ये समझते बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, कहते आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा. सिर्फ आवश्यकता है कि भी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर अगर हम उस चीज को क्रिएट कर पाए अपनी साइकी में, तो आउटर वर्ल्ड में भी वो क्रिएट होता है. जिसको कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि बस अपने थॉट प्रोसेस को आप ट्रांसफॉर्म कर लो, तो उसी प्रकार के वाइब्रेशन सारे कॉस्मोस में भी क्रिएट करोगे, जिसको सिंक्रोनिसिटी कहते, और वह चीज आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी. जैसे रिश्ते की बात

0: ही ना, भी बस आपके मन में रियल कि मुझे ऐसा एक अच्छा रिश्ता चाहिए, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनी, इंटरनल स्टेट बनी, अंदर एनर्जी अच्छी बनी, तो ऑटोमेटिक ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आएंगे हु विल बी राइट पर्सन, जिसके साथ आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकेंगे, सदा के लिए सुखी रहेंगे। तो सिंक्रोनिसिटी को यूज करना है, सिर्फ ना टेंशन से भागा दौड़ी करो ये प्राप्त करना इसे करना, उसे तो एंग्जाइटी हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है,
1: मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो क्या होगा, मिल गया तब भी चला जाएगा, ये जो सारे एफर्ट्स, ये जो पूरी एनर्जी इसमें जा रही है। तो डॉक्टर पटेल, आपने कहा स्मार्ट वर्क, हम हार्ड वर्क करते आ रहे हैं जीवन में, स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे?
0: वही आर्ट सीखने की जरूरत है, जैसे भी स्मार्ट वर्क के लिए कुछ भी चीजें हम देखें तो एक तो हमें अपने विचारों को मैनेज करना सीखना होगा। हम औरों को मैनेज करने का सोचते हैं परंतु अपने विचारों को मैनेज करने का नहीं सोचते। और एक स्मार्ट वर्क बहुत ही जरूरी है कि औरों को परिवर्तन नहीं करना है, मुझे परिवर्तन करना है। कहते कि भाई अमेरिका में एक लड़के का पॉलिटिकल फैमिली में जन्म हुआ, वो करीब 25 साल का हुआ तो उसने सोचा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, सारी दुनिया को बदल दूंगा। 45 इयर्स का हुआ, सोचा कि भाई शायद सारी दुनिया को तो नहीं बदल सकता हूं, जरूर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, सारे अमेरिका को बदल दूंगा। 55 का हुआ, सोचा शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा, मेरे स्टेट का गवर्नर जरूर बनूंगा, सारे स्टेट को बदल दूंगा। 75 का हुआ, सोचा शायद स्टेट को बदलना भी मुश्किल, कम से कम अपने गांव को तो जरूर बदल दूंगा। 85 का हुआ, मरने को था, सोचने लगा अरे रे अपने आप को ही नहीं बदला, अपने आप को बदल देता तो बहुत अच्छा होता। ये फाउंडेशन वहां है, अपने आप को बदलो सारी दुनिया को बदल दूंगे।
2: इज इट पॉसिबल, दैट इज व्हाट वी सेड, फील गुड, जो आपने कहा गारंटीड कि वो सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भाई साहब ने कहा पक्का मिलेंगी, लेकिन 0.1% चांस अगर नहीं मिले, यू आर स्टिल फीलिंग गुड, दैट्स व्हाट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये गारंटी है कि फीलिंग गुड जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। सी, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे हाथ में हैं और कुछ एक बातें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैं पहले अपनी सारी एनर्जी उन चीजों पर फोकस कर दूं जो मेरे कंट्रोल में है। सी, इट्स अगेन लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, सिर्फ मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में है, इट्स नॉट अ गारंटी कि बाकी लोग ठीक ड्राइव करेंगे, इवन अगर मैं उनको खड़े होकर ड्राइविंग की सारी स्किल्स वहां पर अच्छी तरह से बताऊं। सेम थिंग इज हैपनिंग, हम आसपास के अपने लोगों को बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो यू नो स्पाउस है, चाहे वो कोलीग है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ही करेंगे जो हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि दे आर चूजिंग हाउ दे वॉन्ट टू ड्राइव। नाउ आई हैव टू चूज हाउ आई वॉन्ट टू ड्राइव, एंड वो गारंटी है कि अगर मैं अपनी गाड़ी पर पूरी तरह से फोकस करूं, मैं रीच करूंगी अपनी डेस्टिनेशन विदाउट अ सिंगल एक्सीडेंट, दैट इज डेफिनेट, इवन इफ एवरी वन अराउंड मी इज ड्राइविंग बैडली, इट्स स्टिल पॉसिबल। लेकिन उसके लिए चाहिए होती है 100% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे। लेकिन अगर सब लोग आसपास गलत चला रहे हैं और मैंने 2 मिनट भी थोड़ा उस तरफ ध्यान दिया कि वो कैसे चला रहा है, आई बैंग इनटू समवन, तो वो फुल फोकस
1: कोई और आएगा।
2: यस, फुल फोकस अगर आपको अपनी एनर्जी पे हो गया तो फिर आप पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे विदाउट अ सिंगल स्क्रैच हेयर। That's possible and that's the purpose of life, to feel good and to feel happy.
1: Dr. Patel, एक अच्छी इंश्योरेंस मिल रही है हमें कि पूरी श्रृंखला में हम ये तो जानना चाहेंगे और ये सीखेंगे कि फील गुड कैसे करना है, बट और क्या कुछ शामिल होगा आने वाली कड़ियों में?
0: और तो मैं समझता हूँ फील गुड के लिए जरूरी है कि विचारों को बदलना, क्योंकि हमारे विचार ही सब कुछ करते हैं। कहेंगे कि जो बहुत बड़ी कला है वह है थॉट मैनेजमेंट, वी कैन कॉल इट इवन माइंड मैनेजमेंट। और माइंड मैनेजमेंट के लिए जरूरी चाहिए सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सेल्फ प्रोग्रेस, तो सेल्फ एस्टीम को हम कैसे डेवलप करें? और भी कुछ सचमुच ऐसी लाइफ स्किल्स की भी जिसे डेवलप करें, रिलेशनशिप की स्किल्स है, या तो अपने आप को चेंज करने की स्किल्स है, अंदर में भरपूरता को कैसे प्राप्त करे वह, और यह सब हो सकता है आध्यात्मिकता से। आज मूल चीज है, आज लोग धर्म की ओर तो मुड़े हैं परंतु आध्यात्मिकता का सत्य अर्थ नहीं समझे, तो आध्यात्मिकता को हम और डीपली समझेंगे। मेडिटेशन के साइंटिफिक बातें क्या है उसको भी समझे, ताकि 21वीं सदी में

0: भी लोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने लगे।
1: आज हम में से मेजोरिटी कोई ना कोई डिजीज के शिकार हैं, और कुछ नहीं तो दर्द यहाँ वहां तो लगा ही हुआ है, किसी के बैक एक है, किसी के नी पेन है। कैसे हम इस पेन को मैनेज करें विद द पावर ऑफ द माइंड, क्योंकि बहुत सारे हम स्कैन्स कराते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, तो डॉक्टर कहता है थिंक अबाउट इट, लेकिन आई डोंट नो बिकॉज मैंने यहां कभी देखा नहीं। तो देन आई लर्न टू लिव विद द पेन, नाउ वी वांट टू हील दैट पेन। तो माइंड का बॉडी पे असर, फूड का माइंड पे असर, बॉडी पे असर, रिलेशनशिप्स पे असर, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड एक बहुत बड़ी चीज जो आजकल हो रही है, फियर, जिसकी वजह से हम बहुत सारी और चीजों पर कंट्रोल दे रहे हैं, वेदर इट इज एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट इज ऑल काइंड ऑफ साइंसेज आउटसाइड। तो कई बार हम बहुत ज्यादा उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, हर रोज उनसे पूछ रहे हैं हम ऐसा करें या नहीं करें, हम आज का दिन ठीक है या आज का दिन ये ऐसा है, ये टाइम ठीक है या ये टाइम गलत है। तो पूरी गाड़ी का कंट्रोल किसको दे दिया है, जस्ट टू समवन एल्स। तो भले ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब में रहते हुए भी मुझे फिर भी कैसे चार्ज लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो तंत्र है, इन सब इन्फ्लुएंसेस में रहते हुए हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड स्टिल बी द मास्टर ऑफ माय लाइफ, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू।
2: सो लाइफ स्किल्स की इस पूरी श्रृंखला में आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच सर शिवानी, डॉक्टर पटेल, ओम शांति। तो जी क्या चाहिए जिंदगी, बहुत बार अपने आप से कहते हैं, और आज तो हम इस मुकाम पर हैं, इस मोड़ पर हैं कि सचमुच लगने लगा है कि जिंदगी एक कॉम्प्रोमाइज है, थके से हुए हैं, लेकिन इस थकान को दूर करना है। हम में से हर कोई अच्छा फील करना चाहता है, फील गुड फैक्टर बहुत बार सुना, लेकिन आज से शुरू होती है ये जर्नी। हम जानेंगे कि कैसे अच्छा महसूस करते करते जीवन के हर सुख की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे अभी तक जो पूरी डिपेंडेंसीज बाहर थी, धीरे धीरे एक एक करके ये चार्ज अपने हाथ में लेंगे प्रैक्टिकली। कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप इस श्रृंखला में जिसे चाहते हैं कि हम लेकर आए, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अब एक निमित ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। लाइफ स्किल्स के इस श्रृंखला में आगे भी बहुत से स्किल्स जानेंगे जिंदगी के बारे में, जिंदगी से जुड़ी हुई। अभी आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: क्या देखने के लिए? अंधेरा?
1: नहीं, ये देखने के लिए कि रात बीत रही है, सवेरा जरूर होगा।
0: तो भी जख्म जो है उसे भरते करते वक्त लगता है।
1: इलाज करने से जल्द भर जाता है।
0: डॉक्टर बनकर आए हैं आप?
1: ऐसे जख्म के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, दोस्त की होती है।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप, अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है, जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आपने ट्यून किया है रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए, आज शनिवार है तो करियर ऑप्शन के बारे में बातें करते हैं। हम लोग इस विशेष शनिवार के दिन अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनके करियर के बारे में किसी एक अलग विषय को लेकर बात करते हैं। जैसे पिछली बार हमने जादूगर के बारे में बताया था, कोई करियर कर सकते हैं क्या मैजिशियन बनके, तो हमने काफी अच्छी बातें सुनी थी प्रशांत जी से। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, एज ए मैजिशियन आप क्या क्या कर सकते हैं, और मैजिशियन जो है सोशल काम भी कर सकता है और प्लस अपना कमाई भी कर सकता है, और बहुत आसानी से सैटरडे संडे आप जो है प्रोग्राम्स करके अपने पूरे महीने का कमाई कर सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में आपने सुना। आज हम लोग जो है रेडियो के बारे में बात करेंगे, करियर इन रेडियो के बारे में। रेडियो के द्वारा हम कैसे अपने करियर को बना सकते हैं, रेडियो के द्वारा हम अपने जीवन का विकास कैसे कर सकते हैं, इस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो सोच रहे होंगे कि रेडियो पे क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, रेडियो में कितने टाइप के वर्क्स होते हैं, कितने टाइप के जॉब होते हैं, वो सारी बातें आज आपको पता चलने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, और आज के हमारे खास मेहमान कमलेश जी जालंधर से आए हुए हैं। ब्रह्म कुमारी कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने वालों का भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे मधुबन रेडियो पर आकर।
1: जी, जी, जी।
2: और रेडियो को अगर मैं सच में कहूँ तो रेडियो मेरी जान है, मेरा जीवन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करने में, क्योंकि आपने ऑल इंडिया रेडियो में जालंधर में विशेष रूप से एक 30 साल आपने शायद काम किया है।
2: जी।
1: तो एक लंबा सफर आपने तय किया है रेडियो में, तो आपको रेडियो का A to Z सारी चीजें पता है। और निश्चित तौर पे हमारे जो आज के भी लिसनर्स हैं, हमारी युवा साथी हैं जो करियर के लिए कुछ नया हटके करना चाहते हैं, उनके

0: भी शायद बहुत अच्छा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि रेडियो से आपके ताल्लुक कैसे बने और कैसे जुड़े, वो उस कहानी जरूर बताइए ताकि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लगे।
1: जी रमेश भाई, अगर रेडियो की बात मैं करूं तो रेडियो का सफर जो 30 साल का बहुत ही खूबसूरत सफर रहा और जीवन का गोल्डन पीरियड मैं कह सकती हूं इसको, क्योंकि जन जन तक पहुंचने का एक जरिया है रेडियो, हर घर में पहुंचने का जरिया है रेडियो। और मैं रेडियो से जुड़ी तो मैं बात करूंगी कि जब बचपन में मेरे फादर साहब जो सिग्नल में थे आर्मी में, वो रेडियो खुद बनाते थे घर में।
0: अच्छा,
1: तो जैसे वो टेबल पर सारा सामान पड़ा रहता था तो मैं पास बैठती थी उनके, देखती रहती थी। तो फादर साहब कहते थे इनको टच नहीं करना, तो मैं उनको बोलती थी कि ये जो ढोलक पड़े हुए हैं इनमें से बंदे बोलते हैं क्या? तो कहते नहीं, पूछना नहीं है कुछ, बस देखना है। तो मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में रेडियो मेरा करियर बन जाएगा। तो रेडियो पर जब भी मुझे मतलब मैं आई रेडियो पे, उस समय की बात करूंगी तो बाई चांस कह लीजिए या मेरा कुदरत का करिश्मा कह लीजिए या मेरे मुकद्दर कह लीजिए, रेडियो पे मेरा आना हो गया। उसमें मुझे कोई खास ट्रेनिंग तब लेनी नहीं पड़ी क्योंकि मेरी आवाज और अंदाज कह लीजिए, मेरी प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी थी। तो फर्स्ट उसमें टेक में मेरा वॉयस टेस्ट हुआ और इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई।
0: नहीं, पर रेडियो पे इंटरव्यू के लिए आप कैसे गए? क्या कोई पेपर में इश्तिहार आया था या डैडी ने?
1: जी जी जी, रेडियो पे इश्तिहार अखबार में ही आया था।
0: जी जी,
1: तो मैंने उसको पढ़ा और उसमें इंटरव्यू के लिए मैंने डेली अखबार में देखना शुरू किया। मुझे एक्सपर्ट थे जो वहां के, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा लेटेस्ट जो न्यूज चल रही है वो आप पढ़िए, एक हफ्ते का तो तकरीबन पढ़ लीजिए क्योंकि उसी में से इंटरव्यू आता है। तो वॉयस टेस्ट का ऐसे है कि वॉयस मेरी आप कुदरत का कह लीजिए एक तोहफा है मेरे पास। हाँ जी, और दूसरा ये कि आप जिस माहौल में रहते हो, आर्मी पर्सन होने की वजह से हम जगह जगह जाते थे तो वहां का रहना सहना बोलना वाणी है ना, ये सब मैंने सीखा। तो इन चीजों का मेरा रेडियो मेरा बहुत ये काम आई ये चीजें। और जब मैंने रेडियो पे ज्वाइन फर्स्ट जब मेरी प्रोग्राम था तो मैं घबराई हुई थी क्योंकि माइक को फेस करना कोई बहुत मतलब मुश्किल काम है, बड़ा कुछ आसान काम नहीं है, बहुत घबराई थी। लेकिन जब मैंने शुरू कर दिया, मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि चलिए अनाउंसमेंट कीजिए, लिखकर अनाउंसमेंट कीजिए, वैसे नहीं करनी है, तो मैंने वो मीटर लिखा और बोलना शुरू कर दिया। बस उसके बाद तो जैसे मेरे पर लग गए और मैं एरोप्लेन का काम किया मैंने रेडियो में कि मैं उड़ती चली गई ऊंचे आसमान में बहुत ही। और जब मैं लोगों से जुड़ी, मुझे फीडबैक आनी शुरू हुई। हमारे पत्रों का प्रोग्राम होता था तो उसमें मेरा नाम आता था कि कमलेश जी ने आज फला प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, कमलेश जी की आवाज हमें बहुत अच्छी लगी, अंदाज बहुत अच्छा लगा। तो अनाउंसर जो है, कलाकार है, वो तारीफ का भूखा होता है। तो मेरी तारीफ होती थी तो मैं दिन-ब-दिन अपने आप को और निखारती गई। तो रेडियो ने मुझे तराशा, निखारा, मेरी आवाज को, मेरी शख्सियत को उसने निखारा। तो जितने भी प्रोग्राम जिसमें मुझे याद है कि हम इंटरव्यूज करते थे बहुत मतलब हिंदुस्तान से बहुत बड़े बड़े लोग आए और उसमें आर्टिस्ट भी थे, संगीतकार भी थे और प्रशासनिक लोग भी थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा कैसे किस महकमे में क्या काम चलता है, कैसे काम होता है। मुझे याद है हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बाकी सब ठीक है, पब्लिक ग्रीवेंसेस का ये प्रोग्राम था। तो उसमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे पास आए थे ऑफिसर, तो उनसे बात हुई, आधा घंटा हमने प्रोग्राम किया। तो 3 महीने बाद उनको हमने फिर बुक किया, तो उससे पहले उनका एक दो बार फोन आया तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन जब वो दोबारा आए हमारे ऑफिशियली, उनको हमने बुलाया प्रोग्राम के लिए, तो एजुकेशन में उसमें था कि रोजगार कैसे आप हासिल कर सकते हैं या आप एजुकेशन जो है हायर कैसे ले सकते हैं, या स्कूलों में जैसे बहुत दूर के स्कूल है, उन बच्चों को पता नहीं है स्कूल जाने का और पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं है, तो ये चीजें वो बताने वाले थे। तो आते ही उन्होंने कहा, कमलेश जी आप तो बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं क्योंकि आपका प्रोग्राम जो बाकी सब ठीक है बहुत दूर तक सुनाई दिया और हमारे पास 40,000 लोगों की एप्लीकेशन आई कि हमारे बच्चों को एडमिशन दीजिए हमारे डिपार्टमेंट में आपके। तो ये हमारी प्राप्ति थी। उसके बाद हमने डॉक्टर्स का ये सरकार ने शुरू किया था स्वस्थ भारत प्रोग्राम, तो स्वस्थ भारत प्रोग्राम में हमने सभी तरह के डॉक्टर्स को, एलोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर और यूनानीपैथी डॉक्टर, मुझे याद है कि एक 95 इयर्स ओल्ड हम डॉक्टर लेके आए थे मलेरकोटला से, उनको हम गाड़ी में लेके आए और

0: सर जयपुरी साहब की ये बोल, लता जी की आवाज, शंकर जयकिशन साहब का संगीत, ये आपने गीत सुना और आई मिलन की बेला फिल्म का ये गीत आपकी नजर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई हमें आपने जो गीत सुनाया हमें, और आशा करूंगा हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको यही गाने का जो है विशेष आनंद लेते हैं, म्यूजिक के साथ भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, इसके बाद फिर बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। हमने एक ही गाने को दो बार सुनाया ना, मजा आया होगा आपको। कमलेश जी से भी सुना और वैसे भी हमने पूरा जो है म्यूजिक के साथ गीत भी सुना। तो चलिए, कभी कभी हमें जो अच्छे गीत होते हैं उन्हें दो तीन बार सुनना चाहिए ताकि हमारे मानस पटल पर वो असर करता है ना। जो अच्छे विचार होते हैं उस पर आपको जो है बार बार सोचना चाहिए, उन चीजों को बार बार याद करना चाहिए ताकि आपके मानस पटल पर वो काम करते रहें और आप एक अच्छे इंसान बने रहे, है ना। तो आइए अब आपस आपको फिर से जोड़ना चाहूंगा मैं कमलेश जी से। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कि जब रेडियो की बात आपने की, आपने अपना करियर बनाया, 30 साल तक आपने उसमें काम किया, तो बहुत सारे अच्छे और सुंदर एक्सपीरियंस आपके पास है ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हमारे युवा है, जो कॉलेज है या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको अगर रेडियो से जुड़ना हो तो क्या वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, किस तरह का प्रोफेशन उनको ज्वाइन करना चाहिए, यानी किस तरह की पढ़ाई उनको करना चाहिए रेडियो से जुड़ने के लिए, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एक स्टेपिंग स्टोन्स के बारे में बताइए, शुरुआत कहां से करें।
1: बिल्कुल रमेश भाई, अगर रेडियो से जुड़ने की बात हम करें तो सबसे पहला जो मेरे हिसाब से, हर एक का अपना अपना नजरिया होता है कि कोई भी लैंग्वेज जो है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, पूरी ग्रिप होनी चाहिए, ताकि अगर आप सही बोलेंगे, सही बात करेंगे तो लोगों के मानस पटल पर उसका अच्छा असर होगा और देर तक रहेगा। तो लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए। जब हमने रेडियो स्टार्ट किया तो तब शायद ट्रेनिंग का दौर कम था, हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, एकदम से रेडियो ज्वाइन हो गया, इंटरव्यू हो गई, टेस्ट हो गया पास, तो हमने ज्वाइन कर लिया। प्रैक्टिस से हम बहुत कुछ सीख गए, लेकिन आज की बात हम करें तो मीडिया का दौर है, इसमें तो बाढ़ आई हुई है। अगर आप कहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग है, और मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन जो है वो एक बेस है उसका सबसे पहले, है ना। तो ग्रेजुएशन तो आपको करनी ही चाहिए, और किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कुछ एक्सपर्ट बन जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। रीजनल लैंग्वेज है, जैसे एफएम रेडियो में तो रीजनल लैंग्वेज और मिक्स्ड एंग लैंग्वेज आजकल चल रही है, तो उस पर भी आप मतलब होमवर्क कर सकते हैं, और रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग लीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, और अपनी प्रोनंसिएशन पर ध्यान दीजिए सबसे पहले। जैसे हम रेडियो की लैंग्वेज जो आज मिक्स हो गई है ना, उसमें हमें थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है, और नई जो पीढ़ी है उसको पसंद भी कर रही है, तो आप जो बात कहना चाहते हो एक लैंग्वेज में स्पष्ट कहिए ताकि लोगों को उसका असर ज्यादा हो। दूसरी बात ये कि रेडियो जैसे बहुजन हिताए बहुजन सिखाए, ये जन जन तक पहुंचने वाली चीज है, तो उसके लिए आपको अगर आप रेडियो जो है पहुंचता है हर परिवार तक पहुंचता है, अगर उसमें किसानों की बात होती है, खेतीबाड़ी की बात है और इंडस्ट्री की बात होती है, परिवारों में जो है परिवारों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, एजुकेशन की बात होती है, देश की तरक्की की बात होती है, हमारी राष्ट्रीयता की बात होती है, ये सारी बातें हमारे मन में जो है उनको उन पर पकड़ होना जरूरी है, ताकि हम कुछ भी कहें तो सुनने वाले के कान में पहले तो वो रस घोले, अच्छे से बात करेंगे तो लोगों पर उसका असर होगा। और घबराने की बात नहीं, हम ये कह देते कि बेरोजगारी है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि रेडियो जॉकी का काम बहुत छोटा है, रेडियो जॉकी का काम बहुत जिम्मेवारी का काम है, तो आप इसकी ट्रेनिंग लेंगे तो जरूर आगे बढ़ पाएंगे, बहुत इसमें स्कोप है, डबिंग का है, एडिटिंग का है, म्यूजिक का अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कैसे आजकल हम मिक्सिंग का काम चल रहा है, पुराने सॉन्ग्स को हम रीमिक्स करके उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग जो पुराने गीत नहीं सुनना चाहते थे रीमिक्स हो गया तो लोग उनको दोबारा रिचार्ज हो गया सब कुछ, है ना। तो जितना जहां तक मुझे पता है, क्योंकि हम टेक्निकली तो इतना हम अनाउंसर्स को इतना वो नहीं रहता है, लेकिन हाँ आपकी आवाज में दम होना चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए, आपकी तमन्ना होनी चाहिए कि आपने रेडियो जॉकी बनना है। तो जैसे अगर हम सरकारी रेडियो की बात करें तो उसमें डेली वेजेस पे आजकल बहुत अच्छा वेजेस दे रहे हैं, वो पार्ट टाइम आप कर सकते हैं, साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो मिनिमम 6 डेज की ड्यूटी सभी को मिल जाती है अगर आप अच्छा काम करते हो, बहुत कुछ है उसमें करने को। अगर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो शुरुआत तो आपको कहीं से करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बहुत सारी नई चीजें आपको पता चलती हैं, और एज के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक, मैच्योरिटी के मुताबिक, आपके शौक के मुताबिक

0: नागरिक आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो रेडियो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का और अपने मन की बात कहने का, अपने अपने मन के भावों को। जैसा आपने देखा होगा रमेश जी के आजकल, जैसे कोरोना काल का हम बात करें तो हमने उसमें बहुत काम किया लोगों को अवेयर करने का कि कैसे उसमें हम स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, कैसे उस बीमारी से बचें, है ना। रेडियो ने बहुत उस समय लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया। तो ये चीजें जो है हमें समझाती हैं कि आप अगर लोगों के दिलों में पहुंचना चाहते हैं, लोगों के घरों में पहुंचना चाहते हैं, नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो औरतों के लिए हो। रेडियो पे आप देखिए पारिवारिक प्रोग्राम कितने चलते हैं, बहुत सी बहनें उसमें इन्वॉल्व हैं, रेडियो को साथ रख के वो अपने काम करती हैं, उनका उनके बगैर गुजारा ही नहीं है रेडियो के बगैर, है ना। तो ये चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। रेडियो जॉकी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपकी वाणी आपको बहुत दूर तक ले जाती है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है।
1: जी जी कमलेश जी, काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया कि कैसे हम लोग रेडियो से जुड़ सकते हैं, और सबके लिए मेरे ख्याल से ये रेडियो जो है वरदान ही है एक तरह का। आप इसमें बच्चों के लिए भी कार्यक्रम करते हैं, महिलाओं के लिए करते हैं, सभी उम्र वालों के लिए रेडियो जो है एक अच्छा काम करता है। तो जैसे कि आपने आखिरी में बताया कि महिलाएं भी इसमें जुड़ सकती हैं, तो उनका कैसे रोल हो सकता है, वो किस तरह के प्रोग्राम दे सकते हैं, थोड़ा सा बताएं
0: जी।
1: क्या महिलाएं घर का काम करके भी रेडियो पे अपना पार्ट टाइम सैटरडे संडे काम कर सकती हैं?
0: बिल्कुल, देखिए आजकल ऑनलाइन शुरू हुआ है, जिनको शौक है, आप देखिए कितने एप्स ऐसे आ गए हैं जिसपे लोगों को गाने का शौक था, एक्टिंग करने का शौक था, तो उसमें अपना वो शौक पूरा कर रहे हैं। तो जैसे मेरी बात बीच में रह गई, कोरोना काल में लोगों को डिप्रेशन बहुत हुआ, लेडीज को बहुत हुआ, क्योंकि उनको सारा पूरा परिवार घर में रह गया, कोई काम पे जा नहीं रहा, तो पूरा दिन खाने का ही प्रोग्राम चलता रहता है। तो ये चीजें जो है कभी कभी आदमी ऊब भी जाता है इन चीजों से, है ना। तो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जिंदा दिल रखने के लिए आपको रेडियो से जुड़ना फीमेल के लिए बहुत जरूरी है। जो सुन रही है ना लगातार रेडियो, तो वो तो कहती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब काम हमारा समाप्त हो जाता है किचन का। और जो रेडियो के साथ रेडियो पे प्रोग्राम करना चाहती हैं वो ऑनलाइन आ सकती हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हैं हमारे पास, प्रोग्राम है जैसे ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम का, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो जो प्रोग्राम हमारे फोन इन प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें वो मेल बहुत कम होते थे। कई बार मैं सवाल पूछती थी कि आप भाई जी को मौका नहीं देती हैं बोलने की, हर बार आप ही आ जाती हैं, तो वो कहते थे कि वो तो काम पे बिजी हैं लेकिन उनको शौक नहीं है। तो मेरा तो रेडियो मेरी मतलब है एक बहुत अच्छा मेरा एंटरटेनमेंट है, तो मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ और आपसे बात भी कर रही हूँ। तो देखिए उसमें हर उम्र वर्ग के लोग आते थे, फीमेल ज्यादा आती थी, है ना। कोई पुरानी कहानी सुना जाती थी, कोई पुराने समय की बात कर जाती थी कि हमारे समय में तो ऐसा होता था, आजकल बच्चे कहना नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे तो आंखों से डर जाते थे, आंख से डरा देते थे। तो कोई गाना सुना जाते थे, कोई खाना पकवान बता जाते थे, है ना। तो ये बातें जो है, अगर आपको शौक है ना, तो बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं उसमें। अगर आपको ऑफिशियली आपको ज्वाइन करना है तो आपको कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा जरूर, वो मुझे लगता है कि 2.5-3 महीने की ट्रेनिंग होती है, अगर आप वो कर लेते हो, एक एज होती है इसकी ट्रेनिंग की भी, ग्रेजुएशन के बाद कर लो या साथ साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये ट्रेनिंग जरूर करो, पार्ट टाइम करो इसको, है ना। ये तो मतलब है संगीत के साथ आप जुड़ गए तो आपके सारे काम संवर गए, आप जो आपको पॉलिश कर दिया रेडियो ने, ना। मैं अपनी बात करूं तो शायद मैं आज इतनी बातें कर रही हूं तो इतनी बातें नहीं करती थी मैं, मुझे दुनिया का ज्ञान नहीं था, तो अब मुझे ज्ञान देना बहुत आ गया है सबको, हर टॉपिक पे आप कोई टॉपिक शुरू कर लीजिए तो उसमें मैं कितनी देर बात कर सकती हूं मैं बता ही नहीं सकती, है ना। तो ये चीजें बोलने का आपको, आपकी अपने मन की बात कहने का आपको मौका मिलता है,
1: और निश्चित तौर पे आपकी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, हमारे सभी दर्शक मित्र, श्रोता मित्र सुन रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा होगा कि क्या इतना आसान है रेडियो से जुड़ना। बिल्कुल बिल्कुल आसान तो है, लेकिन आपकी रुचि और आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत रंग लाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्या होता है कि हर चीज हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बात है, लेकिन आपकी रुचि जहां पर है अगर उस चीज को आप करना शुरू कर देते तो आपको मदद भी मिल जाता है, आप लगन से करते भी है और फिर चीजें जो है बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, रेडियो में आपको कुछ करना है, तो मोस्ट

0: वेलकम, स्काई इज द लिमिट। हर जगह जो है आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बहुत चांसेस है, बस शर्त यही है कि आपकी रुचि कितना है, आपकी इच्छा शक्ति कितना मजबूत है इस चीज को करने के लिए।
1: किसी को लिखने का शौक है तो लिख सकता है वो, है ना, किसी को गाने का शौक है तो वो गा सकता है। ये चीजें जो है आगे जैसे जैसे आप उसमें जुड़ेंगे ना तो बहुत सी चीजें
0: आएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर विशेष कमलेश जी को सुन रहे हैं। रेडियो के बारे में, रेडियो क्या है, रेडियो में कैसे काम होता है, रेडियो से कैसे आप जुड़ सकते हैं, वो सारी बातें आप सोच रहे होंगे कि जुड़ के फायदा क्या, कुछ कमाएंगे भी क्या नहीं, है ना, कमाएंगे भी, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो।
2: रहा तेरा।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस विषय को लेकर बातें कर रहे हैं हम लोग आज। रेडियो में कैसे करियर कर सकते हैं, रेडियो के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, इस विषय को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। कमलेश जी हमारे साथ हैं जिन्होंने 30 साल रेडियो में अपनी सेवा दी है और अभी भी उनकी जिज्ञासा है कि मैं रेडियो से ही जुड़ा रहूं। तो एक बार व्यक्ति रेडियो में आ जाता है तो वो रेडियो से कहीं अलग नहीं हो पाता क्योंकि उसकी जिंदगी बन जाती है रेडियो। तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आप अगर सोच रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं चाहूंगा कि आप इस और जरूर आइए। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें क्या कमाई हो सकती है, किस तरह से हमारा जो है शुरू होता है। और कमलेश जी खुद रेडियो में रही हैं 30 साल ऑल इंडिया रेडियो में जालंधर में, तो उन्होंने वो सारी चीजें देखी हैं और अभी शायद उन्होंने वो भी चीजें देखा है जहां पर लोग परमानेंटली इसमें होते थे और अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम शुरू हो गया है, तो वो भी फेज उन्होंने देखा है। तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा हमें अच्छी पे स्केल के बारे में पता चलेगा कि अभी और पहले में क्या क्या डिफरेंस हुए हैं। जी कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत फिर से। मैं चाहूंगा कि अब रेडियो से कमाई कैसे कर सकते हैं वो बताइए।
1: बिल्कुल रमेश भाई, मुझे लग रहा है कि सुनने वाले बिल्कुल कान लगाकर बातें सुन रहे होंगे। मुझे बहुत आनंद आया।
0: अभी तो ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाया भी होगा।
1: तो ऐसा है कि हमें जब ट्रेनिंग मिली ना रेडियो में जाने की, तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने ट्रेनिंग दी कि आप जब रेडियो पे ज्वाइन करोगे तो एक तो समय के पाबंद होना पड़ेगा, बिल्कुल मिनटों का हिसाब रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि घर की टेंशन है, जो बैग आपसे साथ लेके घूमते हो सारा दिन, उसको बाहर एक पेड़ लगाए गेट के, वहां टांग के आना है और अंदर आप बिल्कुल फ्रेश होके आना, और जब वापस जाना तो वो बैग अपना टेंशन का अपने घर वापस ले जाना है, टेंशनें अंदर नहीं लेके आनी है। तीसरी बात ये कि अगर आप इनकम की बात करें रेडियो पे, तो हमारे पास बहुत से राइटर आए, बहुत से संगीतकार, गीतकार, हम सरकारी तौर पे उनको फीस मिलती थी, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बात है तो वो धीरे धीरे सरकार ने उसकी मतलब है बढ़ाई है वो भी, और उसमें बहुत से बच्चे जो है पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वो 6 ड्यूटीज करते हैं और बाकी अपनी पढ़ाई साथ साथ चल रही है उनकी। तीसरे इसमें आप जो भी काम सीख लेंगे, अगर आप बोलने के एक को आप को अच्छा लगता है, बोल सकते हैं आप, तो फिर तो आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं। अगर आपको डबिंग एडिटिंग का काम सीख लेते हैं तो आप आजकल ऑनलाइन कुछ भी रिकॉर्ड कीजिए और कहीं भी पहुंचा दीजिए। देखिए, एड का जमाना है, शोहरत का जमाना है, हर चीज को बिकती है जो एड से बिकती है, तो वो आप बनाना सीख जाइए, है ना। उसमें आप बोल के अपनी आवाज दे सकते हैं, उसको एडिट करके कहीं भी आप दूसरे देशों में लोग, बाहर के देशों को लोग भेज रहे हैं जिन्होंने काम करना है। तो इसके अलावा आप जैसे फीमेल की बात करूं तो वो हम उनको बुक करते थे, वो हमें पकवान बता के जाते थे, उनको भी हम फीस देते थे। और बच्चों की बात करें तो वो कोई कहानी सुना के जाता है, कोई गीत सुना के जाता है, कोई शब्द, कोई भजन, तो उनको हम फीस देते थे। तो आजकल पैसे का दौर है, तो कोई भी काम पैसे के बगैर नहीं होता है। तो आपको अगर इसमें काम करना है तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए

0: जब होती हैं तो लव मैरिज भी हुई, अरेंज मैरिज भी हुई, तो फट से आज शादी हुई कल डाइवोर्स हो गया, है ना। तो ये चीजें जो है वो हम सीखते थे कि पुराने लोग कैसे एक दूसरे से मतलब है तालमेल बिठा के परिवारों को चलाते थे। तो ये सब चीजें हमने रेडियो से सीखी। वैसे हम कहाँ मिलते, माइक ने हमें ऐसे लोगों को मिलाया जिन्हें हमें जिन्होंने हमारे ही जीवन को संवार दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इनकम का साधन बनाना है अगर आपको, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, समय के पाबंद होना पड़ेगा, आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, शौक रखना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा, है ना। ये सब चीजें सीखेंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: और ये बहाना नहीं लगाना कि बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं मिलता, काम बहुत मिल रहे हैं, आप शुरुआत कीजिए, कभी ना कभी आप कहीं न कहीं पहुंच ही जाएंगे।
1: हाँ, करने वाले के लिए काम बहुत है, नहीं करने वाले के लिए अच्छा काम भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे ऐसे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आज के इस प्रोग्राम में, और हमारे सभी श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि रेडियो में आपके जो अच्छे अनुभव है या फिर आपने इनके इंटरव्यूज किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर बता पाए तो।
0: इंटरव्यू के बारे में, हर तरह के इंटरव्यू हमने हर तरह के प्रोग्राम किए, जिसमें मुझे याद है कि कई बार जो जिनसे हमने इंटरव्यू करना होता था, क्योंकि वो ऑफिसर हैं, जैसे डीसी है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर हमारे पास आए, उनका भी समय कोई पाबंदी होती है, कभी बिजी हो जाते हैं, तो हमने उनको बुक कर लिया और वो समय पे आए नहीं, तो प्रोग्राम शुरू हो गया। आधे घंटे का प्रोग्राम है तो हम उनकी वेट भी कर रहे हैं और प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया। तो जैसे बाकी सब ठीक है, प्रोग्राम हमने शुरू किया था, उसमें हम किसी भी फील्ड से, जैसे जो सरकार की योजनाएं हैं उनके कमजोर वर्ग के लिए, उनके बारे में हम बात करते थे। तो तब तक मैं शायद 20-25 प्रोग्राम कर चुकी थी, तो डीसी साहब लेट हो गए, उनकी गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस गई, तो मेरे पास 15 मिनट बोलना था, और हमारी जो जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को, वो हमारे डायरेक्टर साहब उनको लेके मेरे सिर पर खड़े थे कि देखो अभी प्रोग्राम शुरू होगा, डीसी साहब आएंगे और आप प्रोग्राम सुनिए, ऐसे लाइव प्रोग्राम जाता है। तो उसमें आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज से पता नहीं लगना चाहिए कि कुछ हुआ है, चाहे आसपास आग लगी हो तो आप उसमें उफ नहीं कर सकते,
1: आपको अपना प्रोग्राम शो मस्ट करना है,
0: शो मस्ट गो ऑन। तो मैंने वो प्रोग्राम शुरू किया, उधर से इशारा हो गया जी मैडम शुरू करो, तो डीसी साहब तो नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने फिर प्लान किया कि जब तक वो नहीं आते हैं तो तब तक मुझे क्या करना है, माइंड मेकअप हो गया मेरा। तो जितने मैंने पिछले 20-25 प्रोग्राम किए थे उनका मैंने वो याद करना शुरू, फला प्रोग्राम में फला आए थे तो उन्होंने ये बताया था, फला प्रोग्राम में फला आए थे उन्होंने ये बताया था,
1: शुरू कर दिया
0: फ्लैशबैक शुरू चलने हुई मेरी रील। और हमारे डायरेक्टर साहब इतने खुश हुए इस बात से कि 15 मिनट ये नहीं पता चल रहा था कि क्या
1: चल रहा है,
0: बहुत मतलब कम से कम हजारों बार ऐसा हुआ होगा कि हमें टॉकर मिल नहीं रहा और हम खुद ही किए जा रहे हैं प्रोग्राम, सभी फील्ड के हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो 15 मिनट बाद डीसी साहब को पीछे से वो जो लेके आए थे उनको धक्के से अंदर घुसाया, कहते बैठिए सर आप प्रोग्राम शुरू कीजिए, मैडम 15 मिनट से आपका प्रोग्राम कर रही है। तो वो भी बहुत खुश हुए, तो बड़ा मजा आया प्रोग्राम करने का, बहुत शाबाश मिली, बहुत तारीफ मिली। तो फिर ऐसे बहुत से किस्से हैं जो अगर शुरू करेंगे तो किताब लिख सकती हूँ।
1: चलिए हम लोग फिर से वापस जो है किस्से कहानी में आपकी कहानी सुना करेंगे, अब वक्त इजाजत नहीं देता कि और हम बात करें। और चलिए इसी के साथ जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज कोट करें आप। जी
0: मैसेज मैं देना चाहूंगी, बहुत से विषय हैं रमेश भाई जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन रेडियो के माध्यम से मैं हर वर्ग से यही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी बहाना मत बनाइए किसी भी बात को। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो उसके लिए आगे बढ़िए, समय के पाबंद हो जाइए, सोचिए समझिए और उस पर विचार कीजिए और आगे बढ़िए। मैदान खुला है, खुला आसमान है, आप उड़ान आपने भरनी है हौसले की, और एक न एक दिन आप किसी न किसी जगह सफलता हासिल जरूर करते हैं, ये मेरा अपना तजुर्बा है। तो खुश रहिए, सेहतयाब रहिए, परिवार का ध्यान रखिए, बच्चों को प्यार दीजिए, बड़ों को आदर कीजिए, ये सब चीजें जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो आपने मुझे मधुबन रेडियो पे बुलाया और मेरी बहुत सी यादें जो ताजा हो गई, और एक मुझे लगता है कि मुझे आज खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी खाना, तो ये मेरा खाना

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्युअल स्पिरिच्युअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडिओ स्टेशन. खुश रहो, खुशियां बांटो.
4: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो. प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन.
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. मैं आज फिर एक टॉपिक पर अपना चिंतन आपसे शेयर करूंगा. स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का अर्थ है कि जब व्यक्ति स्वयं में सकारात्मक बदलाव लाता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे समाज और फिर संपूर्ण विश्व पर पड़ता है. यह विचार गांधी जी के प्रसिद्ध कथन खुद वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं से प्रेरित है. यदि हम चाहते हैं कि दुनिया एक बेहतर स्थान बने तो हमें सबसे पहले

0: अपने विचारों आदतों और कर्मों में परिवर्तन लाना होगा। आइए अब हम स्वपरिवर्तन का महत्व समझते हैं। स्वपरिवर्तन का अर्थ केवल बाहरी रूप से बदलाव लाना नहीं है, बल्कि यह आत्म मंथन, आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की प्रक्रिया है। जब हम स्वयं को बेहतर बनाते हैं, चाहे वह हमारे व्यवहार, सोचने के तरीके या कार्यशैली में हो, तो हमारा परिवेश भी स्वतः ही प्रभावित होने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति ईमानदारी और नैतिकता को अपनाता है, तो उसके आसपास के लोग भी इससे प्रेरित होकर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम अपने घर और आसपास सफाई रखते हैं, तो समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ती है, जिससे पूरे देश में स्वच्छता अभियान को बल मिलता है। व्यक्तिगत बदलाव से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। एक व्यक्ति जब स्वयं में बदलाव लाता है, तो वह अपने परिवार, मित्रों और समुदाय को भी प्रभावित करता है। अगर एक शिक्षक अपने छात्रों को नैतिकता, परिश्रम और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है, तो वे छात्र अपने जीवन में मूल्यों को अपनाते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसी तरह अगर कोई युवा नशे या बुरी आदतों को छोड़कर एक अनुशासित जीवन अपनाता है, तो वह अपने आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे बदलाव पूरे समाज और फिर राष्ट्र में व्यापक परिवर्तन लाते हैं। जब समाज के अधिकतर लोग स्वपरिवर्तन की राह पर चलते हैं, तो यह एक सामूहिक सामाजिक बदलाव का रूप लेता है। एक देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसके नागरिक जिम्मेदार, ईमानदार और नैतिक मूल्यों को अपनाने वाले हों। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो देश में भ्रष्टाचार, अपराध और असमानता जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं। इतिहास गवाह है कि हर बड़े सामाजिक और वैश्विक परिवर्तन की शुरुआत कुछ व्यक्तियों के आत्म परिवर्तन से हुई है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं ने पहले स्वयं को बदला और फिर उनके विचारों ने पूरे समाज और विश्व को प्रभावित किया। इस चिंतन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यदि हम वास्तव में दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं, तो हमें दूसरों को बदलने की अपेक्षा पहले खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे छोटे व्यक्तिगत बदलाव समाज में बड़ी क्रांति ला सकते हैं। जब हर व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी, करुणा, अनुशासन और नैतिकता को अपनाएगा, तो एक सकारात्मक और विकसित विश्व की कल्पना साकार होगी। इसलिए आइए हम स्वयं में बदलाव लाकर दुनिया को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाएं। ये है आज का मेरा चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
1: रेडियो श्रोतागण, अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
2: थैंक यू
1: सिस्टर. बीइंग डिवाइन में आप बार बार कहती आई एम नॉट दिस कपड़ा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस हैंड, आई एम नॉट दिस, आई हैव एक्वायर्ड की आप बात कर रही थी. पहले बॉडी एक्वायर की, फिर नाम एक्वायर किया, फिर पेरेंट्स, फिर दोस्त, फिर टीचर, फिर प्रॉपर्टीज, फिर नाम शाम जो भी है. लेकिन मैं आई जो है, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे मुझे, मैं आई हूं कौन अगर ये नहीं हो तो. वरना मैं इतना पैदा होने के बाद ना मेरे माँ बाप ऐसा मुझे सिखाते, ना मेरे दोस्त, ना दुनिया से मैं सीखता कि लड़ो, पढ़ो, मेहनत करो, एक्वायर करो, एक्वायर करो, मोर प्रॉपर्टी, मोर नेम, मोर फेम, कुछ बनो, टैलेंटेड है आप, कुछ करिए. इतना ज्यादा सुन सुन के थक गया. आप तो पूरे का पूरे पे आपने मेरे वो पानी डाल दिया.
2: नहीं, अक्वायर्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट. बॉडी अक्वायर की, उसका ध्यान रखना, उसको हेल्दी रखना वेरी इम्पोर्टेंट. रिश्ते हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट, उनको प्यार से निभाना, अपना हर रोल, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूरेटली ट्रस्टी होकर निभाना. अपनी पोजिशन जो अक्वायर की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें और ग्रो करना है.
1: That is a responsibility also, na?
2: Of course. See, we have to acquire all these things. It's not that.
1: Acquire करके उसको संभालना.
2: बहुत अच्छे से संभालना है, बहुत अच्छे से निभाना है, हर रोल बहुत अच्छे से प्ले करना है. लेकिन हर चीज जो acquire की, अगर उसको unconsciously मैं समझ लिया तो where will the problem come? Let's see what will happen. Suppose हमारी position है
1: जी.
2: हमारे करियर में जो हम कुछ कर रहे हैं उसको मैंने मैं समझ लिया कि दिस

0: is me, so this is most important. Now, like you said, everybody taught us that we have to be the best.
1: Hmm.
0: We have to go ahead. Ab kya hua? Ye main hai, wo position meri hai. Theek hai? Maine main se zyada is position ko important kiya. Which means, is position mein aage jane ke liye, maine yahan kuch bhi compromise karna bhi shuru kar diya.
1: बॉडी का फिजिकल तो करते ही हैं, ओवरवर्क कर देते हैं, स्लीप कम करते हैं.
0: तो अच्छा, चलो बॉडी के लेवल पे देखते हैं. पोजीशन और करियर में आगे जाने के लिए बॉडी को जितना ध्यान हम रखना चाहिए उतना नहीं रखते.
1: नहीं रखते हैं.
0: तो हमने किसको किससे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया?
1: अपने जो
0: काम को, कमाई को, अचीवमेंट को, अपनी फिजिकल हेल्थ से.
1: इवन बिजनेस रिलेशनशिप, जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप जो आप कह रही हैं, डे टू डे इवनिंग में मिलना, लोगों से करना, लेट सोना, फिर काम भी
0: तो
1: करना.
0: वो सब कुछ तो काम और कमाई के लिए ही था ना. वो सब कुछ को हमने फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया. मतलब जो मेरी फर्स्ट अक्वायर्ड चीज थी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैंने अपनी इस अक्वायर्ड चीज को रखा. अब इससे भी पहले अक्वायर किसने किया था? मैंने. इस पे जब कॉम्प्रोमाइज किया, उससे पहले मैंने इस पे भी कॉम्प्रोमाइज किया.
1: वो समझाइए, समझा नहीं. इस पे कैसे किया?
0: काम को परफेक्ट करवाने के लिए, औरों से पहले पहुंचने के लिए, और ज्यादा अक्वायर करने के लिए मैंने स्ट्रेस भी क्रिएट किया. मैंने गुस्सा भी किया क्योंकि मेरा काम ठीक नहीं हो रहा था, मुझे काम ठीक करवाना था. किसी और को अपने से आगे जाते हुए देखा तो मैंने ईर्ष्या भी क्रिएट की. और कभी कभी किसी को पीछे धकेलने के लिए मैंने और कुछ चीजें भी कर दी. जब मैंने ये सब कुछ किया तो मैं जो हूं, मैं आई द बीइंग, मैं परफेक्शन से हट गई.
1: ओके.
0: लेकिन मुझे काम में परफेक्शन चाहिए थी क्योंकि मैंने सोचा ये मैं हूं, द पोजिशन, एंड दिस हैज टू बी परफेक्ट. सो आउट ऑफ द टू, व्हाट डिड आई अचीव? आई शिफ्टेड फ्रॉम परफेक्शन एंड ब्यूटी. Because I created lot of negativity here. But position मुझे perfect चाहिए. तो उस process में क्या होगा? बाहर तो सब कुछ आ गया, लेकिन वो आए जो वो perfection और beauty को experience करना चाहती थी, सब कुछ achieve करने के बाद भी experience नहीं कर रही है.
1: क्या experience करना चाहती थी?
0: What does I want to experience?
1: I want to be happy.
0: So happy.
1: I want to be peaceful.
0: Peaceful.
1: I want to
0: pure.
1: I want to be. I want enjoyment. I want to enjoy life.
0: I want to experience that contentment. वो भरपूर था.
1: हाँ.
0: तो वो सब मैंने जब I ही भूल गई कि I कौन, तो happiness कहाँ ढूंढी, peace कहाँ ढूंढी, contentment कहाँ ढूंढी? Acquired चीजों के through ढूंढी क्योंकि मैंने सोचा ये I है. Suppose body I है. Now I want happiness. So we said let's listen to good music.
1: हाँ, एक अच्छी गाड़ी खरीद के घूमते
0: हैं. वेरी गुड. एक अच्छी गाड़ी खरीदते हैं. लेट्स ईट सम गुड फूड. लेट्स गो फॉर अ हॉलीडे. तो हम आई को हैप्पीनेस कहाँ से देने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि ये आय है तो इसको खुशी किधर से देंगे? मुख से कुछ अच्छा खाके, आंखों से कोई अच्छी मूवी ड्रामा देखकर, कान से कुछ अच्छा सुनकर, कोई चीज को टच करके, कर्म इंद्रियों के द्वारा अपने आप को खुशी देने की कोशिश कर रहे थे. क्योंकि आए कौन था ये, तो हमने सोचा कि खुशी किसको देनी है? थ्रू टेस्ट, थ्रू आईज, थ्रू ईयर्स, विच वॉज नॉट ट्रू. पोजिशन में गए, काम में गए, आए है तो खुशी कहां से मिलेगी? जितना ज्यादा हम अचीव करेंगे, जितना औरों से हम आगे जाएंगे, जितना हमें और कमाएंगे और अक्वायर करेंगे, आई विल गेट हैप्पीनेस. क्योंकि हमने सोचा खुशी उसमें है. आई कहां था? तो अक्वायर्ड इज नॉट रॉन्ग, वी हैव टू अक्वायर एवरीथिंग. लेकिन अक्वायर्ड को आई समझकर अक्वायर्ड पर पूरा अटेंशन किया और इन द प्रोसेस आई पर कॉम्प्रोमाइज किया, तो सब कुछ अक्वायर करने के बाद अपने आप को खाली महसूस किया.
1: ऐसे महसूस खाली करते हैं अक्वायर करने के बाद तो लोग खुश रहते हैं,
0: लोग इंजॉय करते हैं, लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत साधन आ जाते हैं, धन आ जाते हैं. आंतरिक
1: पावर है, धन है.
0: पावर भी कौन सी? पावर ऑफ पोजिशन, नॉट पावर ऑफ आई. अब जब मैंने अपनी खुशी, पावर,

0: शांति इन अक्वायर्ड चीजों में ढूंढनी शुरू की। अब ये सारी चीजें अक्वायर्ड हैं और हमने पिछली बार देखा आज हैं, कल नहीं।
1: ये भी सही है।
0: तो मेरे को जो अनुभव करना था खुशी शांति शक्ति, एक वो किसी और चीज पे डिपेंडेंट हो गया तो डिपेंडेंसी, सेकंड मुझे मालूम था कि ये कभी भी चला जाएगा।
1: मैंने ये डिस्कशन में किसी से बात की थी कि आज है कल नहीं है, तो बोले जब तक है तब तक हम एंजॉय करेंगे,
0: जब तक है तब तक हम एंजॉय करेंगे,
1: जब नहीं रहेगा तब सोचेंगे।
0: लेकिन उनके माइंड में हमेशा एक थॉट फियर का रहता है कि इसीलिए तो वो पोजीशन को नहीं छोड़ना है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं।
1: हाँ, वो तो
0: उस पोजीशन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, क्योंकि पोजीशन नहीं तो फिर मेरी पावर नहीं, मेरी खुशी नहीं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं, वो तो मेरी पोजीशन में है। दैट इज व्हेन आई स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द आई फॉर दैट फॉल्स पावर। आई वांट पावर बट हु इज द आई व्हिच वांट्स पावर? आई वांट पावर बट मुझे लगा आई मतलब पोजीशन, तो मैंने पावर को कहां ढूंढना शुरू किया? पोजीशन के अंदर, कि आई एम अ पावरफुल पर्सन। क्यों? क्योंकि दुनिया मेरा कहना मानती है, लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक फियर रहता है, ये पोजीशन नहीं तो मैं कौन, ये मेरा कहना नहीं मानेंगे जब मेरी पोजीशन चली जाएगी, अगर मेरे से आगे कोई इस पोजीशन पे आ गया तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी।
1: ये तो इतनी इनसिक्योरिटी है दुनिया में, इतनी है।
0: अब ये सबको आप खुशी शांति और शक्ति कहेंगे, आपने कहा इनसिक्योरिटी, तो किसको इनसिक्योरिटी? उस आय को इनसिक्योरिटी। जब आय इनसिक्योर तो खुशी कैसी, शांति कैसी, पावर कैसी? आई एम इनसिक्योर। अक्वायर्ड इज एवरीथिंग परफेक्ट, इट हैड टू बी द अदर वे अराउंड। आई हैड टू बी परफेक्ट, अक्वायर्ड कुड बी वेरिएबल। टुडे आई इज वेरिएबल, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है अंदर, अक्वायर्ड शुड बी परफेक्ट।
1: मैं गोल्फ कोर्स में जब चेंजिंग रूम में शूज वगैरह निकालता हूँ तो लोग सब एक दूसरे से पूछते हाउ इज योर गेम, एक बोलता हॉरिबल यार, एक बोलता आई मेड सच मिस्टेक्स यार, एक बोलता कुछ, एक बोलता बहुत अच्छा था, एक कुछ। मुझे एक आदमी बोलता अब हमेशा क्यों बोलते कि आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट। अच्छा, एंजॉय एवरी शॉट, तो गलत हुआ हारो जीतो उसमें क्या है, बट आई प्ले फॉर द गेम। तो दैट्स अ नाइस एटीट्यूड बट सो डिफिकल्ट। नो, 5-7 साल पहले तो मेरा हाल इनसे भी बुरा था।
0: हाँ।
1: वो होता तो मैं कैडी को भी पैसे कम देता था।
0: अच्छा, अगर खुद की गेम अच्छी नहीं हुई।
1: हाँ। अभी एक आदमी ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दिया था, पिछली बार आपको बताया था मैंने, कि बोलते हैं एक चीज समझाओ कि आपने थ्रू आउट द गेम 4 घंटे 3 घंटे जितने भी आपके साथ गुजारे, एक बार भी आपने अफसोस नहीं किया कि मेरा रॉन्ग लग गया या राइट लग गया।
0: दैट्स इट, सच अ ब्यूटिफुल मेटाफर ना, ये जीवन के लिए भी अप्लाई कर सकता है।
1: गोल्फ तो लोग कहते हैं कुंडली है।
0: हाँ।
1: कि आप किसी के साथ एक बार गोल्फ कर लो, बिजनेसमैन ऐसे तो करते हैं। हाँ। लेट्स प्ले गोल्फ।
0: हाँ।
1: देखते एक दूसरे का नेचर पहचान लेते हैं उसमें।
0: हाँ।
1: शॉट के बाद ही क्या करता है, कैडी से कैसी बात करता है, चीटिंग कितनी करता है या नहीं करता
0: तो
1: है।
0: बेसिकली वो क्या चेक कर रहे हैं उसमें कि बाह्य परिस्थिति का इनकी स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ता है और किस स्थिति से ये बाह्य परिस्थिति को हैंडल करते हैं।
1: भाई चार शॉट मार के 3 भी तो बोलते हैं कई बार लिखने में।
0: That's what, ना? तो बाह्य परिस्थिति है, वो एक गेम है, गेम का इस आय पर कितना असर पड़ रहा है और ये आय किस क्वालिटी की एनर्जी से गेम खेल रहा है।
1: आपकी पर्सनालिटी है ना, पूरे गोल्फ के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है।
0: तो पर्सनालिटी तो मतलब मन की स्थिति, मन की स्थिति। जैसे आपने कहा शॉट खराब हुआ तो मन डिस्टर्ब हुआ या स्टेबल हुआ, तो जो आपने कहा कि बिजनेस पार्टनर चूज करने से पहले वो उसके साथ गोल्फ खेल ले, तो पता चल जाएगा कि जो एक शॉट खराब होने से इतना डिस्टर्ब हो गया तो बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे होगा तो क्या करेगा। जो एक गोल्फ की गेम के लिए थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं तो उनको बिजनेस पार्टनर कौन बनाएगा। क्वालिटी ऑफ आई दिखाई दे रहा है ना पूरी गेम के अंदर। कि आय कैसी है, ये पर्सनालिटी कैसी है, ये व्यक्तित्व कैसा है, तो 3-4 घंटे वो खेलने से आय की रिफ्लेक्शन पूरी तरह से दिखाई दे देगी। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डिसाइड। अब इस केस में क्या हो रहा है, गेम अगर अच्छा नहीं तो मैं डिस्टर्ब। क्योंकि मेरा क्राइटेरिया का था गेम परफेक्ट होना चाहिए, देन आई एम गुड एंड आई एम राइट। इसी को अगर हम चेंज करें, जो आपने कहा अपना अनुभव कि 5 साल पहले मैं भी इतना डिस्टर्ब हो जाता था, इससे ज्यादा डिस्टर्ब होता था, और अब क्या कह रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव कि गेम अच्छी हुई या नहीं हुई, बिकॉज गेम इज अ वेरिएबल फैक्टर, इट्स वेरिएबल, वो होगा, एक दिन अच्छी होगी, कभी नहीं, कभी मीडियम, कभी बहुत अच्छी, कभी एवरेज, कभी वेरी बैड, तो इट्स अ वेरिएबल फैक्टर। लेकिन अब क्या कर दिया, आय को उस वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं किया। जब इधर की स्थिति उस वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंडेंट हो जाएगी तो यहाँ की स्थिति भी वेरिएबल हो जाएगी, मतलब हिलती ही रहेगी। लेकिन जब यहाँ की स्थिति बाहर के वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आपने क्या कहा कि चाहे कैसी भी गेम हो, योर आंसर इज द सेम, एंड दैट आंसर इज इट वॉज अ क्यूट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ अच्छा फील हो रहा है इवन दो बाहर वॉज नॉट नेसेसरी परफेक्ट, बाहर परफेक्ट नहीं था, लेकिन अंदर अच्छा फील होना मतलब आई एम परफेक्ट, गेम वॉज नॉट परफेक्ट। लेकिन अगर गेम की सक्सेस को ही अपनी आइडेंटिटी बना ली तो गेम की परफेक्शन को ही अपनी परफेक्शन समझना शुरू कर दिया। आई एम गुड ओनली इफ आई प्लेड वेल, गेम की परफेक्शन मेरी परफेक्शन का पैरामीटर बन गई।
1: बचपन से सिखाते ना, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल,
0: बचपन से अक्वायर्ड ही सिखाया है। अब देखो क्या होता जाएगा,
1: ये तो देखो कितना जल्दी इसको एबीसीडी पूरा 1 to 10 आता है, 100 आता है, ये गुड बॉय, हाँ गुड गर्ल,
0: जिसने अक्वायर ज्यादा किया
1: वो गुड है।
0: अब ये करने से क्या हुआ, वो जो अंदर आए था वो क्या होता गया, वो और ही छुपता गया, क्योंकि हमने अपनी सारी चीजें बाहर ढूंढनी शुरू कर दी, एंड इन द प्रोसेस वी फॉरगॉट दैट आई, ये एनर्जी जो ये सब कुछ कर रही है, जिसको हम हमेशा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, लेकिन वो आत्मा भी एक शब्द है, लेकिन शब्द में नहीं जाना है, उसकी कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, दिस गेम इज नॉट मी, दिस बिजनेस इज नॉट मी, दिस रिलेशनशिप इज नॉट मी, दिस इज ऑल माइन, दिस इज आई, द एनर्जी, एंड जीवन का मेरा पर्पस क्या है, आई हैव टू बी ब्यूटिफुल।
1: आई अगर आत्मा है तो आई तो ब्यूटिफुल होती ही है,
0: लेकिन ब्यूटी से हटना नहीं है ना फिर।
1: अच्छा तो आई हैव टू बी आई,
0: आई हैव टू बी आई द ओरिजिनल। मुझे सारा दिन आज ब्यूटी को अपने सस्टेन करना है। जैसे अगर फिजिकल, अगर हमने फिजिकल ब्यूटी पर सोचा तो हम ध्यान रखेंगे ना कि पूरा दिन अच्छा दिखना है, बीच बीच में जाएंगे शीशे में देखेंगे, कॉन्शियसनेस आई शुड बी नीट क्लीन परफेक्ट। अब यही अगर सारा दिन में हम यहाँ चेक कर लें कि कोई दाग तो नहीं लगा, मैं परफेक्ट हूँ, यहाँ की चेकिंग नहीं हो रही है।
1: मैंने ये कुर्ते की देखता हूँ ये लगा हुआ तो नहीं है, और उसको फिर बोलता हूँ धोबी को, थोड़ा इसको व्हाइटनर कम हो गया है, पीलापन आ गया है।
0: लेकिन वो पीलापन आ गया है उसका दाग हटाने के लिए अगर धोबी को गुस्सा करके बोल दिया तो यहाँ का पीलापन तो हट जाएगा लेकिन यहाँ कालापन आ जाएगा। विच इज मोर इम्पोर्टेंट, इट्स आई, आई हैव टू बी परफेक्ट। अगर ध्यान रखा पूरा दिन तो फिर जैसे वो आपने कहा गोल्फ की गेम में, पूरा दिन विल बी अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, इवन अगर बाहर की चीजें हमेशा परफेक्ट नहीं हुई। जब हमें ये याद रहेगा, ये कॉन्शियसनेस बनेगी, आत्मा शब्द हमने सुना है, सोल वर्ड हमने सुना है, स्पिरिट, बीइंग, लाइट, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, पावर, सब वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स हमें मालूम है, हम बचपन से सुनते हैं, वर्ड मालूम है, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, क्या उसको जीवन में जीते हैं?
1: जैसे हम पूजा में बोलते तन मन धन सब कुछ तेरा है, और बाहर मंदिर से निकल के जो तो जो भाव है साई भली कार बोलते हैं, और क्या ऊपर से ओ, इतना गंदी बारिश आ रही है, जो तो जो भाव है अंदर बोला था, तेरी रजा में राजी, मंदिर के अंदर बोला था,
0: रजा लेकिन बाहर आकर तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही,
1: कहाँ रजा में राजी है। मैं खुद ही बाहर आके अगर मेरी गाड़ी के सामने कोई पार्क कर देता था तो उसको लात मारता था गाड़ी।
0: सेम चीज, कि आत्मा वर्ड मालूम है, लेकिन सारा दिन में जब जीवन में एक दूसरे से आए तो क्या उस कॉन्शियसनेस से जिया कि आई द बीइंग मीटिंग अनदर बीइंग।

0: the soul talking to another soul?
1: Possible hai?
0: Possible nahi hai?
1: Nahi hai, kyunki morning se dekh lo, aap biwi se mile to kahan aap usko soul dekhte ho, aapko biwi dekhte ho, phir naukar aata hai, shuru kaam mein lag jate, dhyan jata
0: hai. Kaam mein lag jana to theek baat hai.
1: Dhyan hi nahi jata aap wahan. सोचा ही नहीं कभी कि आई एम स्पीकिंग
0: टू. अच्छा, लेट्स सी कि फर्क क्या होगा. रोल से बात करने के बजाय सोल से बात करते हैं.
1: सिस्टर, रोल जो है ना,
0: लेट्स टेक द सेम.
1: पक्का हो गया.
0: लेट्स टेक द. पक्का हो गया, कोई बात नहीं.
1: पक्का हो गया कि मैं, मुझे नींद में भी कोई हिला के बोले तो मैं आई नो कि आई एम अ मैन. इतना पक्का आई एम अ सोल नहीं है ना मेरा.
0: रोल पक्का है, सोल है वो भूल चुका है. भूल चुका है,
1: 100% भूल चुका है.
0: 100% ही भूल चुका है. जितनी अक्वायर्ड लेयर्स होती गई, जैसे हमने पिछली बार देखा कि मैं कौन, मेमोरी वो भूल चुकी है. सपोज किसी की याददाश्त चली जाए, वो भूल चुका है मैं कौन हूँ, वो भूल चुका है ये
1: मैं
0: कौन
1: हूँ, तुम कौन है, सब भूल जाओ.
0: कोई बात नहीं, लेकिन फिर याददाश्त वापस भी तो आएगी. याद दिलाया भी तो जाएगा धीरे धीरे.
1: हाँ,
0: तो फिर आपको याद दिलाया जाएगा आप ये हैं. आप कहेंगे अच्छा ये हो, अच्छा. फिर थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे. फिर आपको कोई कहेगा ये आप हैं, यहाँ आप रहते थे, ये आपके घर के लोग हैं. तो धीरे धीरे
1: जहाँ जहाँ वो जाता है, जाता था या जाती थी, उसको वहां
0: ले
1: जाते
0: जाएंगे. सब कुछ करेंगे.
1: हाँ.
0: क्यों करेंगे? क्योंकि जो वो एक्चुअली है, जो वो भूल गया है, वो मेमोरी में तो रिकॉर्डेड है. मेमोरी में तो रिकॉर्डेड है. अब वो क्या है, उसको वहां से इमर्ज कराना है. वो मर्ज्ड हो चुका है. इसी तरह आई द बीइंग, मैं आत्मा जो प्योर डिवाइन पीसफुल हो, वो मेमोरी में तो रिकॉर्डेड है. अगर नहीं होता ना, तो हम उन चीजों को बाहर ढूंढते ही नहीं.
1: सही बात है.
0: हमें पता ही ना होता कि पीस भी ढूंढनी है. हम अपने स्ट्रेस और टेंशन के जीवन में ही जीते रहते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अंडर ऑल एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड टेंशन, आई वॉन्ट पीस. वाई आर वी लुकिंग फॉर इट? बिकॉज वी हैव टेस्टेड इट, एंड बिकॉज वी हैव टेस्टेड इट, वी वॉन्ट टू टेस्ट इट अगेन. कोई चीज अगर जीवन में कभी अनुभव नहीं की होगी तो उसको ढूंढेंगे नहीं. ये डेफिनेट है. अगर अनुभव नहीं की है तो अब उसकी खोज नहीं होगी, क्योंकि मालूम ही नहीं है वो है क्या चीज. आज हम उसकी खोज कर रहे हैं क्योंकि वी हैव टेस्टेड इट. सिर्फ ये है कि वी हैव फॉरगॉटन इट, भूल गए हैं. कोई बात नहीं, फिर याद आएगा. फिर भूल जाएंगे सारा दिन में, फिर याद दिलाएंगे धीरे धीरे. वो जो इनेट है, वो बीइंग, उसकी कॉन्शियसनेस हमें सारा दिन में अवेयरनेस में आती जाएगी. हम अक्वायर्ड को फिर भी यूज करेंगे, लेकिन अब जो कॉन्शियसनेस होगी वो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होगी, रोल कॉन्शियसनेस नहीं होगी, पोजिशन कॉन्शियसनेस नहीं होगी, वो सोल कॉन्शियसनेस होगी. वही काम करेंगे. अब उसी कार में बैठते हैं, वही ड्राइवर होगा, वही रास्ते जाते हैं. चार लोग मिलेंगे, वो वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड मिला था, मैनेजर मिला था, प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी मिला था और प्राइम मिनिस्टर मिला था. पिछली बार हम कैसे गए थे? हम रोल से बात कर रहे थे.
1: हाँ, उसको कमांडिंग वॉइस में ड्राइवर को बोला था.
0: हाँ, और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचते पहुंचते कैसे हो गए थे?
1: हाँ जी, कैसे, गुड मॉर्निंग से, बट नरम हो गए थे. हाँ. रिस्पेक्टफुल हो गए थे.
0: रिस्पेक्टफुल होना इज डिफरेंट एंड फीलिंग स्मॉल इज डिफरेंट.
1: हाँ,
0: रिस्पेक्टफुल
1: और मैं छोटा हूँ.
0: हाँ, इन ओ हो जाना और प्रभावित हो जाना, स्मॉल फील करना इज डिफरेंट, रिस्पेक्ट इज डिफरेंट. अब उन्हीं चार लोगों से मिलते हैं, लेकिन रोल कॉन्शियसनेस की बजाय सोल कॉन्शियसनेस से चलते हैं. तो गाड़ी में बैठे एक आत्मा है जो मेरा ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे है. उसका रोल है, उसको गाड़ी चला के लेके जाना है, मुझे पीछे बैठना है. उसको रास्ते में मुझे बताना भी है कि ऐसे नहीं चलाना, दिस इज नॉट राइट टू टेक केयर, सब कुछ करना है. लेकिन अब हम ड्राइवर से नहीं बात कर रहे, आत्मा से बात कर रहे हैं. मैं मालिक ड्राइवर से नहीं बात कर रहा. आई द सोल टॉकिंग टू अनदर सोल. विल देयर बी एनी डिफरेंस?
1: बहुत फर्क पड़ेगा.
0: व्हाट विल बी द डिफरेंस?
1: इक्वल उस पर बात करेंगे.
0: पहले क्या हम

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

धरती पर स्वर्ग कहलाया जाने वाला राज्य, या यूं कहे भारत भूमि के मस्तक पर चमकता हुआ मोर मुकुट, या कहे दुनिया के माथे पर बिंदिया, एक ऐसा राज्य जो खूबसूरती में अनुपम है, अद्भुत है, जम्मू और कश्मीर।

भारतीय राज्य जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिमी पर्वत श्रेणियों के निकट स्थित है। पहले ये भारत की बड़ी रियासतों में से एक था। ये पूर्वोत्तर में सिंक्यांग का स्वायत्त क्षेत्र व तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र जो चीन के भाग से, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश व पंजाब राज्यों से, पश्चिम में पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान अधिकृत भूभाग से घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य के पश्चिम मध्य हिस्से के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में देवसई पर्वत है। इस राज्य की राजधानी ग्रीष्म काल में श्रीनगर और शीत काल में जम्मू होती है। जम्मू और कश्मीर राज्य 32 से 15 और 37 से 5 उत्तरी अक्षांश और 72 से 35 तथा 83 से 20 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भौगोलिक रूप से इस राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी मैदान जो कंडी पट्टी के नाम से प्रचलित है, पर्वतीय क्षेत्र जिसमें शिवालिक पहाड़ियां शामिल हैं, कश्मीर घाटी के पहाड़ और पीर पांचाल पर्वतमाला तथा तिब्बत से लगा लद्दाख और कारगिल क्षेत्र। भौगोलिक तथा सांस्कृतिक रूप से राज्य के तीन जिला क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। अब अगर इसके इतिहास पर नजर डाली जाए तो राज तरंगिणी तथा नीलम पुराण नामक दो प्रामाणिक ग्रंथों में यह आख्यान मिलता है कि कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। इस कथा के अनुसार कश्यप ऋषि ने यहाँ से पानी निकाल लिया और इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया, किंतु भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण खाद्यान्नार बारामूला में पहाड़ों के धसने से झील का पानी बहकर निकल गया और इस तरह

ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बाद में कनिष्क ने इसकी जड़ें और गहरी की। छठी शताब्दी के आरंभ में कश्मीर पर हूणों का अधिकार हो गया। यद्यपि सन 530 में घाटी फिर स्वतंत्र हो गई, लेकिन इसके तुरंत बाद इस पर उज्जैन साम्राज्य का नियंत्रण हो गया। विक्रमादित्य राजवंश के पतन के पश्चात कश्मीर पर स्थानीय शासक राज करने लगे। वहाँ हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का मिश्रित रूप विकसित हुआ। कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका राज्य पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कोंकण, उत्तर पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक फैला था। ललितादित्य ने अनेक भव्य भवनों का निर्माण किया। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ। मुस्लिम शासकों में जैन उल अब्दीन सबसे प्रसिद्ध शासक हुए, जो कश्मीर में उस वक्त सत्ता में आए जब तातरों के हमले के बाद हिंदू राजा सिंहदेव भाग गए। बाद में चक शासकों ने जैन उल अब्दीन के पुत्र हैदर शाह की सेना को खदेड़ दिया और सन 1586 तक कश्मीर पर राज किया। सन 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया और सन 1752 में कश्मीर तत्कालीन कमजोर मुगल शासक के हाथ से निकलकर अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला गया। 67 साल तक पठानों ने कश्मीर घाटी पर शासन किया। अपने वर्तमान स्वरूप में जम्मू कश्मीर का आंचल 1846 में रूपायित हुआ, जब प्रथम सिख युद्ध के अंत में लाहौर और अमृतसर की संधियों के द्वारा जम्मू के डोगरा शासक राजा गुलाब सिंह एक विस्तृत लेकिन अनिश्चितता से हिमालय क्षेत्रीय राज्य, जिसे सिंधु नदी के पूर्व की ओर रावी नदी के पश्चिम की ओर शब्दावली द्वारा परिभाषित किया गया था। राज्य की सीमाओं के अंतर्गत पश्चिमोत्तर में सीमाओं का स्वरूप 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में अधिक स्पष्ट हुआ, और जब ब्रिटेन ने पामीर क्षेत्र में सीमा

धारण संबंधी समझौते अफगानिस्तान और रूस के साथ संपन्न किए। इस समय गिलगिल, जो हमेशा कश्मीर का भाग समझा जाता था, रणनीतिक कारणों से 1879 में एक ब्रिटिश एजेंट के तहत एक विशेष एजेंसी के रूप में गठित किया गया और सन 1947 तक जम्मू पर डोगरा शासकों का शासन रहा। ब्रिटिश हुकूमत की समाप्ति के साथ ही जम्मू और कश्मीर भी आजाद हुए। शुरू में इसके शासक महाराजा हरि सिंह ने फैसला किया कि भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित न होकर स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थक आजाद कश्मीर सेना ने राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिससे महाराजा हरि सिंह ने राज्य को भारत में मिलाने का फैसला लिया। उस विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस विलय पत्र के अनुसार राज्य केवल 3 विषयों, रक्षा, विदेशी मामले और संचार पर अपना अधिकार नहीं रखेगा, बाकी सभी पर उसका नियंत्रण होगा। उस समय भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि इस राज्य के लोग अपने स्वयं के संविधान द्वारा राज्य पर भारतीय संघ के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करेंगे। जब तक राज्य विधानसभा द्वारा भारत सरकार के फैसले पर मोहर नहीं लगाया जाएगा, तब तक भारत का संविधान राज्य के संबंध में केवल अंतरिम व्यवस्था कर सकता है। इसी क्रम में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर से संबंधित राज्य उपबंध केवल अस्थाई है।

आइए जम्मू और कश्मीर के भूगोल पर नजर डालते हैं, क्या है भौगोलिक स्थितियाँ, ये जानने के लिए चलते हैं भूगोल की तरफ। भौगोलिक रूप से इस राज्य को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। मैदान, जम्मू क्षेत्र में संकीर्ण मैदानी प्रवेश की विशेषता तराइयों से निकली जलधाराओं के द्वारा जमा अवसाद और दोमट मिट्टी लोयस से ढके एकदम अलग हो चुके अपरिदित चट्टान से निर्मित रेतील जलोढ़ पंखों के अंत बंधन है, जो अभिनूतन युग यानी 10,000 से 16 लाख वर्ष पुराना के ऐसी मान्यता है। यहाँ वर्षा 380 से 500 मिलीमीटर वार्षिक तक होती है और गर्मी के मौसम में जून से सितंबर में जब मानसूनी हवाएं चलती हैं तब तेज लेकिन अनियमित फुहारों के रूप में वर्षा होती है। अंदरूनी इलाका पेड़ों से पूरी तरह विहीन हो गया है और कंटीली झाड़ियाँ या मोटी घास ही यहाँ की मुख्य वनस्पति है। तराई क्षेत्र, हिमालय की तराई से जिनकी ऊंचाई 610 से 2134 मीटर तक है, बाहरी और भीतरी प्रक्षेत्र निर्मित है। बाहरी परिक्षेत्र की रचना बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, पंख और संपीड़ित चट्टानों से हुई है। ये क्षेत्र हिमालय की वलन गतिविधि से प्रभावित होकर और अपरदन के कारण लंबे पर्वतीय कंटकों और घाटियों यानी दून के आकार के हो गए हैं। अंदरूनी प्रक्षेत्र अधिक भीमकाय तलछटी चट्टानों से, जिसमें मियोसीन युग के लाल बलुआ पत्थर शामिल है, जिनके मुड़ने टूटने और क्षारित होने से खड़ी ढलान वाले पर्वत स्कंधों में पठारों का निर्माण हुआ। नदी घाटियों की कटान तीखी व सीढ़ीदार है और भ्रंशों से उधमपुर तथा पुंछ जैसे जलोढ़ मिट्टी के बेसिन बन गए हैं। ऊंचाई के साथ साथ वर्षा बढ़ती जाती है और ऊंचाई बढ़ने के साथ निचली झाड़ीदार भूमि का स्थान देवदार और चीड़ के जंगल ले लेते हैं।

चलिए चलते हैं कश्मीर की घाटी में। कश्मीर की घाटी का एक गहरा तथा विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिम छोर के बीच में स्थित औसतन 1600 मीटर की ऊंचाई वाली है। अभिनूतन यानी प्लीस्टोसिन युग के दौरान यह कभी क्रेवा झील की तलहटी थी। अब यह ऊपरी झेलम नदी के द्वारा जमा की गई तलछट और जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई है। मिट्टी और पानी की स्थितियों में उल्लेखनीय विविधता है। जलवायु की दृष्टि से यहाँ लगभग 750 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कुछ तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं से और कुछ शीत ऋतु में कम दाब की प्रणाली से संबद्ध हवाओं से होती है। अक्सर हिमपात का साथ वर्षा और ओले देते हैं। ऊंचाई के कारण तापमान काफी परिवर्तित हो जाता है। श्रीनगर में न्यूनतम औसतन तापमान जनवरी में 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अधिकतम औसतन तापमान जुलाई में 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जम्मू और कश्मीर की जलवायु पर अगर नजर डाली जाए, राज्य का 90% से अधिक भाग पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र को भौगोलिक आकृति की दृष्टि से इन 7 भागों में बांटा गया है जो पश्चिमी हिमालय के संरचनात्मक घटकों से जुड़े हैं। दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर तक इन क्षेत्रों में मैदान, निचली पहाड़ियां, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, कश्मीर की घाटी, वृद्ध हिमालय क्षेत्र, ऊपरी सिंधु घाटी और काराकोरम पर्वत श्रेणी शामिल है। जलवायु की दृष्टि से इसमें पूर्वोत्तर की अल्पीय यानी पहाड़ी जलवायु से लेकर दक्षिणी पश्चिम में उपोष्ण तक की विविधता है। औसत वार्षिक वर्षा उत्तर में 75 मिलीमीटर से लेकर दक्षिण पूर्व में 1150 मिलीमीटर तक है। जम्मू और कश्मीर के जनजीवन की अगर बात की जाए तो भू आकृति की विविधता के कारण इस क्षेत्र में लोगों के व्यवसायों में भी भारी विविधता पाई जाती है। लोगों के पंजाब से आकर बसने के दीर्घकालीन प्रवृत्ति के कारण मैदानों और तराइयों में कृषि बस्तियां हैं। लोग और उनकी संस्कृति दोनों की पंजाब के पड़ोसी क्षेत्रों और पश्चिम की अन्य निम्न भूमि के समरूप है, जहां जलाढ़ मिट्टी और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धि ने खेती को संभव बनाया है। जैसे कि दूनों और निचली घाटियों में हुआ, जनसंख्या गेहूं और जौ की फसलों पर निर्भर है। यह फसल बसंत में काटी जाती है और चावल तथा मक्का ग्रीष्म के अंत खरीफ की फसलें हैं। साथ ही पशुपालन भी विरल है और मक्का की खेती पशुपालन और वन्य उपजों पर निर्भर है। दक्षिणी मैदानी बाजारों के लिए दूध और शुद्ध घी के उत्पादन के लिए बसंत में ऊंचे चरागाहों की ओर प्रवास जरूरी होता है। शीत ऋतु में पहाड़ियों के निवासी निचले क्षेत्रों में लौट आते हैं और शासकीय वनों या लकड़ी की मिलों में काम करते हैं। खेती हर छोटी बस्तियों और गांवों की बहुतायत है। जम्मू और उधमपुर जैसे नगर ग्रामीण और आसपास के स्टेट के लिए बाजार केंद्र में प्रशासनिक मुख्यालय का काम करते हैं। भाषा, कश्मीरी भाषा संस्कृत से प्रभावित है और गिलगिल की विभिन्न पहाड़ी जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं की दर्दीय शाखा की है। उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी, लद्दाखी, बल्टी, पहाड़ी, पंजाबी, गुजराती और दादरी भाषाओं का प्रयोग साधारण नागरिकों द्वारा किया जाता है। कश्मीर की घाटी के निवासी उर्दू या कश्मीरी बोलते हैं। कश्मीरी भाषा भारतीय आर्य वर्ग की दर्दीय शाखा की है और लोकगीतों में साहित्य में समृद्ध है। आइए बात करते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था की। अधिकांश लोग जीवन निर्वाह के लिए कृषि में लगे हैं और चावल, मक्का, गेहूं, जौ, दालें, तिलहन तथा तंबाकू सीढ़ीनुमा पहाड़ी ढलानों पर उगाते हैं। कश्मीर की घाटी में बड़े बड़े बागों में सेब, नाशपत्ती, आड़ू, शहतूत, अखरोट और बादाम उगाए जाते हैं। कश्मीर की घाटी भारतीय उपमहाद्वीपों के लिए एकमात्र केसर उत्पादक है। केसर की क्यारी कहा जाता है कश्मीर को।

गुजर और गद्दी खानाबदोशों के द्वारा भेड़ बकरी याक व खच्चरों का पालन और ऋतु प्रवास किया जाता है। कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना का उत्पादन यहीं पाली जाने वाली बकरियों से होता है। रेशम पालन भी बहुप्रचलित है। हस्तशिल्प यहाँ का परंपरागत उद्योग है। हाथ से बनी वस्तुओं की व्यापक रोजगार क्षमता और विशेषज्ञता को देखते हुए राज्य सरकार हस्तशिल्प को उच्च प्राथमिकता दे रही है। कश्मीर के प्रमुख हस्तशिल्प उत्पादों में कागज की लुगदी से बनी वस्तुएं, लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, शाल और काशीदाकारी का सामान आदि शामिल है। हस्तशिल्प उद्योग से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। हस्तशिल्प उद्योग में 3.40 लाख कामगार लगे हुए हैं और उद्योगों की संख्या बड़ी है। धातु के बर्तन, परिशुद्धता के उपकरण, खेल का सामान, मुख्य क्रिकेट के बल्ले, फर्नीचर, काशीदारी, माचिस, राल और तारपीन इस राज्य के प्रमुख औद्योगिक उत्पाद हैं। अगर कृषि की बात देखी जाए तो राज्य की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। धान, गेहूं और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। लद्दाख में चने की खेती होती है। फलोद्यानों का क्षेत्रफल 242 लाख हेक्टेयर है। राज्य में 2000 करोड़ रुपए के फलों का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है, जिसमें अखरोट निर्यात के 120 करोड़ रुपए भी शामिल है। जम्मू कश्मीर राज्य सेब और अखरोट के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र घोषित किया गया है। बाजार हस्तक्षेप योजना की शुरुआत से उचित ग्रेडिंग सुनिश्चित करते हुए फलों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है। 25 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अथवा रूप से बागवानी क्षेत्र से रोजगार मिलता है। इस क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म ईंधन के साधन सीमित है। इनका अधिकार

विभाग जम्मू क्षेत्र में संकेंद्रित है। प्राकृतिक गैस के छोटे भंडार जम्मू के निकट पाए जाते हैं। बॉक्साइट जिप्सम के भंडार उधमपुर जिले में है। अन्य खनिजों में चूना पत्थर कोयला जस्ता और तांबा भी शामिल है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था पर नजर डाली जाए तो विभाजन से पहले ये संपूर्ण क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के प्रांत सीमावर्ती राज्यों लद्दाख बल्टिस्तान तथा गिलगित एजेंसी को समाविष्ट किए हुए था। ये संपूर्ण क्षेत्र लद्दाख ले जिला और अनंतनाग बारामूला श्रीनगर पुलवामा बड़गाम कुपवाड़ा और कारगिल जिला जो श्रीनगर प्रांत में है और जम्मू प्रांत के जिले कठुआ उधमपुर राजौरी डोडा और पुंछ का कुछ भाग ये सभी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के भाग है। जम्मू कश्मीर राज्य का संघ सरकार में एक विशेष दर्जा बना हुआ है। भारत के शेष राज्य भारतीय संविधान का पालन करते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान 1956 में स्वीकृत है जो भारतीय गणराज्य का अभिन्न अंग होने की पुष्टि करता है।

¡Sácalo el zapato! ¡Hágame un junte!

संघ सरकार के पास प्रतिरक्षा, विदेश नीति एवं संचार के मामलों में प्रत्यक्ष वैधानिक अधिकार है और नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार और आपातकालीन शक्तियों के मामलों में अप्रत्यक्ष प्रभाव हासिल है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रशासनिक अधिकार निर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होते हैं। विधानसभा के दो सदन हैं। विभिन्न क्षेत्रों के 87 प्रतिनिधियों से गठित विधानसभा और 36 सदस्यीय विधान परिषद, राज्य के 6 निर्वाचित प्रतिनिधि सीधे भारतीय संसद की लोकसभा में भेजे जाते हैं और विधानसभा व विधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से निर्वाचित 6 सदस्य राज्यसभा में भेजे जाते हैं। उच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश हैं, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यातायात के साधनों पर अगर नजर डालते हैं तो भारतीय संघ सरकार ने जम्मू कश्मीर में राजमार्गों और संचार सुविधाओं के विकास पर भारी विनियोग किया है। देश के विभाजन और कश्मीर पर भारत पाकिस्तान विवाद के कारण श्रीनगर से झेलम की घाटी होते हुए रावलपिंडी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसके कारण एक लंबे और अधिक कठिन गाड़ी मार्ग को जोगनीहाल दर्रे से होकर जाता था, सभी मौसमों में उपयोग योग्य राजमार्ग में बदलना जरूरी हो गया। इसी में शामिल है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग का निर्माण, जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, मगर यह सड़क कई बार तीखे मौसम के कारण दुर्गम हो जाती है, जिसके कारण घाटी में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती है। एक सड़क श्रीनगर को कारगिल और लेह से मिलाती है। जम्मू उत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन है। श्रीनगर और जम्मू वायु मार्ग से दिल्ली और दूसरे भारतीय शहरों से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से लेह, लेह जम्मू और लेह दिल्ली के बीच भी वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। संस्कृति के मामले में नवरेह शब्द संस्कृत शब्द नववर्ष से बना है। कश्मीर में नवरेह नवचंद्र वर्ष के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि में जम्मू और कश्मीर में शिवरात्रि भी जम्मू और कश्मीर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। राज्य में मनाई जाने वाले 4 मुस्लिम त्यौहार हैं, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद मिलाद या मिलाद उन नबी और मेराज आलम यानी मुहर्रम भी मनाया जाता है। लद्दाख का विश्व प्रसिद्ध गोपमा उत्सव जून महीने में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव का प्रमुख आकर्षण मुखोटा नृत्य है। लेह में स्थित बौद्ध विहार में हर साल जनवरी में होने वाले पर्व में काली की प्रतिमाएं बड़े पैमाने पर प्रदर्शित की जाती हैं। इसके अलावा सर्दी के चरम का त्यौहार लोहड़ी तथा रामबन और पड़ोस के गांवों में सिंह संक्रांति और अगस्त माह में भदरवाह में मेला पात मनाया जाता है। अब पर्यटन स्थल की बात करें।

त्रिपुरा व पुगा यानी चांगथंग में स्थित है, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कश्मीर घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। कश्मीर घाटी में चश्मेशाही झरना, शालीमार बाग, डल झील, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और अमरनाथ की पर्वत गुफा तथा जम्मू के निकट वैष्णो देवी मंदिर, पटनीटा और लद्दाख के बौद्ध मठ राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्र है। 15 सितंबर को लद्दाख महोत्सव तथा जून सिंधु दर्शन प्रसिद्ध त्योहार है। ये है हमारा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर और उससे जुड़ी हुई संस्कृति, सभ्यता और ये सब गौरव करने के लिए ये एक से बढ़कर एक है। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है जम्मू और कश्मीर के बारे में, लेकिन यहाँ जितनी जानकारी मैं आपको दे सका सो उसे स्वीकार कीजिए।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दिल में रहता है कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना खिला है जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल में रहता है कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं।

0: पत्ती बना ले मुझे पत्ती, मैं हो गया मशवरती तेरे बिना। अयो अयो
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग ड्रिंकिंग वेयरिंग, लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग स्पीकिंग बिहेविंग, दैट्स माय लाइफ स्टाइल।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

गा प्यार में मुस्कुरा, दिल तू भी गा प्यार में मुस्कुरा। सपने में जो आते हैं अक्सर, महफिल में उनको बुला।

0: आते हैं अक्सर महफिल में उनको बोला
1: अलैला
0: कल जो हुआ सो हुआ भूल जा सपने में जो आते हैं अक्सर महफिल में उनको बोला
1: अलैला।

रूपनगर की भीड़ में हमने खुद को भुलाना सीख लिया। मत नजर के जाम

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार, मी मोनाली सावगत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशिया वाटो.
3: क्षमा का सद्गुण. पात्र परिचय: वेदांत, आदित्य, आदित्य प्रकाश, यश, दृष्टि, उन्नति. लेखिका: सुधापुरी.
4: हाँ, पकड़ लिया.
5: हा हा, अब मैं पकड़ूंगी. सब भागो. दीदी, आप भी तो खेलो.
6: ठीक है, तुम सब भागो और मैं पकड़ती हूँ. रुको रुको, ठहरो. बहुत खेल लिया ये पकड़म पकड़े का खेल. आओ कुछ नया खेलते हैं.
4: और क्या खेल सकते हैं?
6: क्रिकेट खेलें.
5: क्रिकेट? और हम लड़कियाँ?
6: हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बहुत खेलती हूँ क्रिकेट.
7: और क्या, तुम लोग भी खेलना हमारे साथ. प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे चलकर लड़कियों की टीम बनाना.
4: कोई बॉल, बैट या रैकेट तो है नहीं हमारे पास?
6: उसकी कोई चिंता नहीं, कोई चपटा सा फट्टा भी हो तो काम चला लेंगे. ऐसे तो हाथों को बैट बनाकर हैंड क्रिकेट भी खेल सकते हैं.
4: वो देखो, वहाँ वो लड़का बैठा है, उसके पास कितना अच्छा बैट और बॉल है. उससे जाकर कहते हैं कि हम सब मिलकर खेलते हैं.
5: हाँ चलो चलो.
7: हमारे साथ बैट बॉल खेलोगे?
8: तुम लोगों के पास अपना बैट है?
5: नहीं.
8: तो तुम मेरे ही बैट से खेलोगे? मैं नहीं खेलता.
5: हम कल ले आएंगे ना, मेरे पास बैडमिंटन रैकेट है, हम कल उससे बैडमिंटन भी खेल सकते हैं.
8: हाँ पर आज तो नहीं है ना तुम्हारे पास. जाओ जाओ, मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ.
4: तो क्या तुम आरती उतारोगे अपने बैट बॉल की?
6: कोई बात नहीं, चलो चलो, इसे अकेले ही रहने दो, हम सब कुछ और खेल लेते हैं.
4: हाँ हाँ, ऊंच नीच खेलते हैं, नहीं तो पोशब्बा भाई पोशब्बा खेल लेते हैं.
6: मैं बताऊँ, लंदन लंदन खेलते हैं.
5: ठीक है, इसमें वही होता है ना कि लंदन सुनते ही सब मूर्ति बन जाते हैं और डाइनर को सबको हंसाने की कोशिश करनी होती है.
6: हाँ, और जो सबसे पहले हंस पड़े उसे सजा मिलती है, जैसे कुछ गाओ या जोक सुनाओ या कुछ भी करके दिखाओ.
4: चलो चलो शुरू करो, पहले मेरी डैन. आहा, हंसी तो आ रही है. देखो देखो, थोड़ी दिख भी रही है. आई आई आई आई, आहा आ गई. जी नहीं, ये बेईमानी है, मैं तो बिल्कुल नहीं हंसा था. वाह जी वाह, सारे दांत दिख रहे थे और अभी कह रहे हो हंसा नहीं. चलो चलो चुपचाप अपनी डैन दे दो. हाँ
5: हाँ हाँ, मैंने भी इससे हंसते हुए देखा था. भाई अब तुम्हारी डैन, चलो कोई भी चीटिंग नहीं करेगा. हाँ
4: अच्छा भाई, ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूँ. लंदन लंदन लंदन स्टैचू. गुड़िया कब तक रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी, आई रे आई हंसी आई.
5: ये बात गलत है, तुम कितने कार्टून जैसी शक्लें बना रहे थे.
4: क्यों भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें हंसाने के लिए.
8: सुनो, मुझे भी खिलाओगे?
4: अरे ये कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा.
5: धत, कितने बुलक्कड़ हो, इसे भूल गए?
7: अरे ये वही तो है, इसने हमें अपने साथ खिलाने से मना कर दिया था.
4: हमने इसे कहा था कि हमें अपने बैट बॉल से खिला ले, पर इसने मना ही कर दिया.
8: सॉरी, कुछ ही देर में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया. अकेले मैं अपनी गेंद और बैट से थोड़ी ही खेल सकता हूँ. मैं दूर से तुम लोगों को इतने मजे करते हुए देख रहा हूँ, मेरा भी तुम्हारे साथ खेलने का दिल कर रहा है.
7: वाह क्या बात है, जब हमने तुम्हें अपने साथ बैट बॉल खिलाने के लिए कहा था तब क्या हुआ था? तब तो मना ही कर दिया था।
8: सॉरी।
4: कोई सॉरी बॉरी नहीं, अब बैठो अकेले अपने बैट बॉल के साथ, चल भाग यहाँ से।
8: ठीक है।
6: अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? उस बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं खिला रहे?
8: दीदी, पहले इसने हमारे साथ खेलने से मना नहीं कर दिया था।
7: हाँ, बड़ी अकड़ दिखा रहा था अपने नए बैट बॉल की।
6: पर अब तो वह तुम्हारे पास खेलने आया था ना, सॉरी भी बोल रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था, क्यों?
8: मतलब हमारा ये व्यवहार ठीक नहीं है।
4: लगता है इसे अपनी भूल का पता चल गया है, और फिर वो सॉरी भी तो बोल रहा है।
7: हाँ, मेरी मम्मी भी कहती है सॉरी कहना बड़ी हिम्मत का काम है।
8: अपनी गलती मान लेना और पश्चाताप करना बड़प्पन की निशानी होती है।
6: अरे, उस दिन तुम सबको मैंने गांधी जी के बारे में बताया नहीं था क्या?
7: क्या?
6: कि किस तरह उन्होंने भी अपने पिताजी से एक बार चिट्ठी लिखकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगी थी।
7: हाँ हाँ, सुनाई तो थी कहानी, पर
6: जैसे ही उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करके माफ़ी मांग ली और फिर से अपनी गलती न दोहराने की प्रतिज्ञा ली, उनके पिता की आंखों में प्यार और क्षमा के आंसू आ गए थे। वे सुबुक सुबुक के रोने लगे थे।
8: और हमें देखो, इस बच्चे की एक छोटी सी भूल भी माफ नहीं कर पा रहे हैं।
6: ठीक सोच रहे हो सब, वह भी तो अपनी गलती मान रहा है
4: और सॉरी भी बोल रहा है। मैं उसे बुला के लाता हूँ।
7: हाँ, फिर मिलके लंदन भी खेलेंगे और क्रिकेट भी।
6: ये हुई ना बात।
4: बड़ा मजा आएगा।
6: और क्षमा करने के अच्छे गुण से जो एक नया दोस्त बनाएगा वो अलग।
9: हाँ दीदी, सजा देने वाले से क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा होता है।
6: शाबाश, बड़े सयाने हो गए हो सब। हे सुनो, रुको, आओ खेलते हैं, आ जाओ।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुना तो सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
1: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
0: बजाओ रे।

अम्मा को झूठ बोला, बाबा को झूठ बोला, अल्लाह अल्लाह झूठ बोला, हसन से झूठ बोला। पर तुझको लाखों हलालों की हराम कमाई दिया और तू मेरे को ताना दे रही, दो बादाम खिला के बोल रही, अरे बादाम नो लाते कते संदक ले।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ख्वाबों के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। और कहते हैं, आंखें खोलू तो चेहरा तेरा हो, आंखें बंद हो तो सपना तेरा हो, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन अगर कफन मिले तो दुपट्टा तेरा हो। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। आइए ख्वाबों के सफर में अगले गाने की तरफ चलते हैं। विभा जी, कैसे हैं आप?
2: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कभी किसी का इंतजार किया?
1: हाँ, इंतजार तो किया, हमने कविता भी लिखी इंतजार पे।
2: बहुत अच्छी लिखी होगी। और ये गाना भी इसी पे आधारित है।
1: जी जी।

0: से करते हैं। बहुत खूबसूरत गाना है, इंतजार भी है। जैसा कि आपने भी अनुभव किया होगा और हमारे श्रोताओं ने भी, इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी होती है और स्पेशली जब इंतजार महबूब का हो तो उसमें सपने और उतावलापन भी होता है। और इस गाने के बोलों से ही आपको ये सुनने को और महसूस करने को मिलेगा, नैन बिछे हैं राह में काश तुम ना जाते।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया, प्यार का सागर 1960 में यह फिल्म आई थी जिसे देवेंद्र गोयल ने डायरेक्ट किया था और कहानी लिखी थी एम नाजीरुद्दीन और संगीत से संवारा था रवि साहब ने। तो इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना है। इस फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, मदन पुरी, मोहन चोटी, लीला मिश्रा इस फिल्म के कलाकार थे। तो आइए इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना जो अभी बीबा जी ने याद कराया है, प्रेम धवन साहब का लिखा, आशा भोसले का गाया हुआ ये गीत प्यार का सागर इस फिल्म का। खुश रहो खुशियां बांट।
2: रात रात भर जाग जाग।

0: नमस्कार, खाबो के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सुनाए हैं रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं। विवा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला गाना भी सनी मेरे पास इंतजार पे ही है, और इंतजार को कैसे किया जा रहा है इस गाने में आप सुनेंगे। रातों को चोरी चोरी बोले मेरा कंगना, अब से जो बरसा आई आई न सजो। एक कंगना का नाम लेकर अपने प्रीतम को याद किया जा रहा है इस गाने में। कभी वर्षा की खूबसूरती का व्याख्यान है, तो कभी चांद और सितारों पर बात हो रही है। मन को चांद सितारों को नाम देकर प्रीतम की ही बात हो रही है, और इसके गाने के बोलों में जैसे आपको मजा आएगा सुनते हुए। बिरह अंगन बेपैरी मन को जलाए, बरखा की रिमझिम आग लगाए।
0: जी जी जी, और ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, और ये एक फिल्म आई थी जिसके बारे में सोच रहा था, मोहब्बत जिंदगी है। जी हाँ, 1966 में ये फिल्म बनी थी। इस फिल्म के कलाकार धर्मेंद्र, महमूद अली, राजश्री, देवेन वर्मा, नाजिर हुसैन इस फिल्म के कलाकार हैं। और फिल्म में जो है एक अलग कहानी इसमें बताई गई है। एक अमीर व्यक्ति का मृत यहाँ पर बताया गया, उसके लड़का जो है वो इसका वारिस बनता है, ये तो सभी को पता है। तो इस चीज को समझकर एक हीरोइन जो है उससे शादी करती है, और बाद में ये कुछ और ट्रेजेडी इस फिल्म के अंदर बताई गई है। तो आइए इस फिल्म की कहानी आप देखने के बाद समझ पाएंगे। तो जगदीश निराला ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और ओपी नैयर साहब का संगीत है। तो इस फिल्म का अब जो गाना है इसे HS बिहारी साहब ने लिखा है, आशा भोसले ने गाया है। तो चलिए इस फिल्म का ये गीत अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुणे की आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो बुनियादी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं कि हम भरोसा कभी कभी दूसरों पे कर लेते हैं, और जब दूसरों पे भरोसा करते हैं तो मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, ट्रस्ट योर सेल्फ, यानी खुद पे भरोसा रखो तो वो ताकत बन जाती है। जब दूसरों पे भरोसा रखोगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाती है। इसीलिए इन चीजों का थोड़ा सा बैलेंस रखिए। कभी कभी आपको दूसरों पे विश्वास या भरोसा रख के चलना पड़ता है, लेकिन वहां पर अपनी आप पर भी उतना ही भरोसा रखिए कि आप इस चीज को कर पाएंगे। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। आइए विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?

0: सुनिए, अभी मैं आपको एक भक्ति गीत की तरफ ले चलूंगी। भक्ति में भी प्यार है, और कैसे भक्ति और प्यार का मिक्सचर करते हुए ये गाना फिल्माया गया है। आप तो इस गाने को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। राधिके तुमने बंसुरी चुराई क्या तेरे मनाई, स्टेज पर दर्शाया गया ये गाना है। सुंदर नृत्य हो रहा है और राधा कृष्ण की छेड़छाड़ है इस गाने में। ना तेरी बैरन ना तेरी सौतन, मेरी मुरल दिया मुझे सब काम, करी तेरी कौन बुराई। एंजॉय द सॉन्ग।
1: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। बेटी बेटे इस फिल्म का ये गाना है जो 1964 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी थोड़ा सा यूनिक है और इसमें सुनील दत्त, सरोजा देवी, महमूद अली, जमुना, शोभा कोटे और भी कलाकार इसमें हैं। और इस फिल्म की कहानी इस तरह से है कि एक पिता जो है अपने तीनों बेटों को सुधारने के लिए खुद अंधा बनने का एक्टिंग करता है। तो इस तरह की बहुत ही खूबसूरत कहानी इसमें डिजाइन किया गया है। तो आइए, इस फिल्म का ये गीत शैलेंद्र साहब का लिखा है, मोहम्मद रफी साहब का गाया है, शंकर जयकिशन साहब का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके नाम। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना बेटा बेटी इस एल्बम का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला गाना कौन सा है विवा जी आपके पास?
2: अगला गाना मेरे पास है, ये गाना उदासी भरा है। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कहीं खो गया था। जो इस गाने में उदासी है, तड़प है, और जैसे कि प्यार का दूसरा रूप जुदाई है, तो इस गाने के बोल ही बताने हैं कि कैसे तड़प और जुदाई है इसकी। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तोड़ क्या है, उसी के हो गए हम जो ना हो सका हम।
1: जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। दो बदन इस एल्बम का है जो 1966 में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म मुझे लगता है मनोज कुमार, आशा पारेख, मनोज कुमार, सिमी ग्यारहवाल प्राण पर पिक्चराइज किया गया था। बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगल लव स्टोरी इसमें बताई गई है। तो आइए इस फिल्म का ये गीत आपको सुनाएंगे। राज खोसला के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी, और इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। रवि साहब का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए ख्वाबों के सफर में। खुश रहो, खुशियां बांटो।

के जो निर्देशक रहे आशीष सेन, उसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। चलिए अब इस गाने का लुफ्त उठाते हैं। और इस गाने को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, लता मंगेशकर का गाया, रोशन साहब का संगीत, सजा रहे न रहे हम महका करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हैं कि कभी कभी हम लोग अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस भी कर लेते हैं, तो वो जो है थोड़ा सा जीवन में मुश्किलों को बढ़ा देता है। ऐसे में हमें जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें जो है ओवर एक्टिंग या ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दूसरों को जो है मुश्किल देता है। तो इसीलिए दूसरों को दुख देने के बजाय दूसरों को सुख देने के रास्ते पर चलना है हमें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना सनी मेरे पास है, ये मोटिवेशनल सॉन्ग है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है।
1: दोस्ती इस एल्बम का 1964 में जो रिलीज हुई थी। दिव्यांग व्यक्तियों की कहानी इसमें दिखाई गई थी, एक अंधा व्यक्ति की और एक पैरों से नहीं चल पाते ऐसे व्यक्ति की कहानी इसमें बताई गई थी। तो दुर्भाग्यवश इन दोनों का जो है यहाँ पर मिलन बताया गया और फिर चीजें जो है उनकी दोस्ती में भी कुछ दरारें आती हैं और लास्ट में फिर हैप्पी एंडिंग बताया गया है। खेल की बात यह है कि फिर राजश्री प्रोडक्शन का ये फिल्म बनाया था और वो चाहते थे कि एक और इन दोनों को लेकर फिल्म बनाए, तो ऐसा कभी भी हुआ नहीं कि वापस ये दोनों एक साथ फिल्म में आ जाए। लेकिन ये फिल्म उनका ब्लॉकबस्टर रहा, बहुत ही रातों रात ये लोग स्टार बन गए दोनों। फिर बाद में पता नहीं इनका किस्मत का सितारा कहाँ चला गया, तो दोनों की अपनी अपनी जिंदगी अलग हो गई और फिर वापस जो फिल्म बनाने का सपना था उनका वो पूरा नहीं हो पाया। काफी कोशिश की उन्होंने कि इन दोनों को मिलाकर एक फिल्म बनाए, लेकिन दोनों लोग जो है शायद जिंदगी के मुकाम पे अपने अपने जगह पे अलग चले गए। सुधीर कुमार और सुशील कुमार ये दोनों ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया था और बहुत ही पॉपुलर हुए, रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन कहानी फिर वहीं पर रुक गई। आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं और इस गीत को आप बहुत ही दिल से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको कहीं ना कहीं आपके दिल को छू लेगा। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने दोस्ती सलमान का सुना, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ मजनू, सुल्तानपुरी साहब का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये गीत, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। तो आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा। अबीबा जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गानों को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे गाने हैं, जब पूरे माहौल बनाकर हम सुनते हैं तो उसका आनंद और भी अच्छा हम कर पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं, और मैं थोरली इन गानों को एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी जी, अब अगला गाना भी बता दीजिए। मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड़ पे आ गए हैं कार्यक्रम के।
1: बिल्कुल, और ये वाला गाना है, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से प्यार की तरह, वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, और इस गाने में उदासी के साथ शिकायत भी है। आहों से भरे इस गाने में अपने महबूब से मिलने की तड़प भी सुनाई दे, सूदिंग और रिलैक्स मूड में इस गाने को सुने, बहुत मजा आएगा।
0: जी जी जी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, बहुत ही अच्छा गीत है। एक फिल्म जो आपने पहले भी, इस फिल्म का एक गीत हमने सुनाया था, ममता, इसी फिल्म का ये गाना है, रहे न रहे हम महका करेंगे, जो गीत आपने सुना उसी फिल्म का ये गीत है। ये भी आर अक्षर से शुरू होता है, इसलिए विभा जी ने इस गीत को याद कराया है। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा ये गीत, लता मंगेशकर का गाया हुआ, रोशन साहब का संगीत से सजा ममता इस एल्बम का ये खूबसूरत गाना। और इसी के साथ हम लोग चाहेंगे आपसे इजाजत। एंड विभा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर, बहुत ही प्यारी बातें, प्यारे गाने आप हमें सुनाए, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका भी शुक्रिया सनी, और हमारे श्रोताओं का इतने प्यार से इतना अपना वक्त देके हमें सुनने के लिए। अब हम महसूस कर सकते हैं कि आप इन गानों को अच्छी तरह से एंजॉय कर पा रहे हैं, और भी एंजॉय करते रहेंगे इस वादे के साथ आज के एपिसोड में विदा लेते हुए। सबको प्यार से प्यार करना चाहिए।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। एंड जाते जाते चार लाइने आपके लिए, खुशियों से हो न कोई दूरी आपकी, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी आपकी, रंगों से भरे इस मौसम में रंगीन हो आपकी दुनिया पूरी, यही शुभकामना करते हैं। एंड हमारे सभी श्रोताओं को भी ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी तरह खुशी के साथ, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, फिर मिलेंगे इस वादे के साथ, खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: एक ख्वाब था और उस ख्वाब की एक आवाज थी। आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।

0: से और आगोश में नन्हे को लिए
1: विल यू शट अप।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

अभी तक आपने बालक नरेंद्रनाथ का बालपन, उनका नटखट स्वभाव, चंचल परंतु भावुक हृदय और प्रखर बुद्धिमत्ता के बारे में जाना। उनकी स्वाभाविक नेतृत्व कला, उपस्थित बुद्धि, निर्भीकता तथा तर्कसंगत विचार के सभी कायल थे। उनका मन सैकड़ों सुंदर कल्पनाओं से पूर्ण था। हृदय स्नेह सिक्त, बुद्धि कुशाग्र, साहस अमित, अचिंतनीय उद्भावनी शक्ति, कार्यक्षमता असीम और उत्साह अदम्य था। और सबसे बढ़कर थी उनकी ईश्वर के प्रति उन्मुखता। जन्म से ही थे वे ध्यान सिद्ध।

0: प्रार्थना आत्मानुसंधान में बचपन से ही उनकी रुचि और अधिकार थे। इस अनन्य असाधारण महापुरुष के जीवन का अनुध्यान करने से हम लोग देखेंगे कि ये सारी बातें अतिरंजित नहीं बल्कि सत्य की तुलना में बहुत कम हैं।
1: उम्र के छठे वर्ष में प्रवेश करते ही बालक नरेंद्र का विद्याभ्यास प्रारंभ हुआ। पाठशाला जाने के पहले दत्तवंश के कुल पुरोहित ने आकर नियमानुसार पूजा अर्चना कर नरेंद्र को पहला पाठ पढ़ाया। सरकंडे की कलम को दूध में डुबोकर स्लेट पर बंगला भाषा का पहला अक्षर अ लिखवाया और कहा,
2: कहो बेटा आ,
3: आ, आ,
2: और ये है आ,
3: आ।
1: हो गया विद्यारंभ। दूसरे दिन से नरेंद्र धोती पहनकर सरकंडे की कलम और रस्सी बंधी दवात लेकर पाठशाला जाने लगे, पर ज्यादा दिन जाना नहीं हुआ।
0: माता पिता ने गौर किया कि नरेंद्र पाठशाला के साथियों से गलत भाषा सीख रहा है। उसके तौर तरीके भी बदलने लगे। स्कूल में हर सामाजिक स्तर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी बातचीत बोलचाल भी सब नए ढंग के होते हैं। सो माता पिता ने उन्हें और इस प्रकार के विद्यालय में रखना उचित नहीं समझा। घर पर ही एक कमरे में छोटी मोटी पाठशाला खोलकर वहाँ गुरुजी के हाथों अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। इस नई पाठशाला में कई रिश्तेदारों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे, इसलिए नरेंद्र को दोस्तों की कमी नहीं हुई। पर पाठशाला में पढ़ने के बावजूद माँ के निकट नरेंद्र जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वो बंद नहीं हुआ।
4: बेटा, तुम गुरुजी से बंगला तो सीख ही रहे हो, पर आज से मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना भी सिखाऊंगी।
3: क्यों माँ?
4: भाषा सीखना तो अच्छी बात है, अंग्रेजी राजभाषा है, उसे सीखना भी जरूरी है। फिर दूसरे प्रांत के लोगों से बातचीत करने में ये भाषा काम आएंगी।
3: ये कौन सी किताब है माँ?
4: ये प्यारी चरण सरकार का लिखा अंग्रेजी का फर्स्ट बुक है।
1: नरेंद्रनाथ के पढ़ने का एक अपना ही ढंग था। अध्यापक महोदय बगल में बैठकर पाठ पढ़ जाते और नरेंद्र आंखें मूंद कर लेटे लेटे उसे सुनते और इसी तरह सुन सुनकर उन्हें पाठ याद हो जाता।
0: उन दिनों उनके एक बुजुर्ग रिश्तेदार नृसिंह दत्त अपने पुत्र रामचंद्र दत्त के साथ नरेंद्रनाथ के घर में रहते थे। रात में नरेंद्र नृसिंह दत्त के साथ ही सोया करते थे। वृद्ध दत्त महोदय को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और उनकी धारणा थी कि कठिन विषयों को बचपन में सिखाने से बच्चे उन्हें आसानी से याद कर लेते हैं। सो वे रोज रात को नरेंद्र से बातें किया करते थे और उन्हें उनकी वंशावली, संस्कृत के श्लोक तथा स्रोत और संस्कृत व्याकरण के सूत्रों को याद करवाते थे। इस तरह नरेंद्र को बचपन में ही संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का ज्ञान हो गया था। वे टूटी फूटी अंग्रेजी और संस्कृत भी बोलने लगे थे और बांग्ला तो उनकी मातृभाषा थी ही।
1: सन 1871 में जब वे 8 वर्ष के थे, उन्हें ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में भर्ती करा दिया गया। विद्यालय के शिक्षकगण एवं एक एक करके सभी उनकी बुद्धिमत्ता से उनकी ओर आकृष्ट हुए। पर एक दिन कठिन समस्या उठ खड़ी हुई। नरेंद्र ने अचानक अंग्रेजी भाषा सीखने से मना कर दिया। सभी लोगों ने बहुत समझाया कि आजकल अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, नहीं सीखने से काम नहीं चलता। यहाँ तक कि वृद्ध नरसिंह दत्त महाशय ने भी समझाया, पर नरेंद्र की प्रतिज्ञा नहीं टली। इस तरह कुछ दिन चलता रहा। अंततः उन्होंने दत्त महाशय की बात मान ली और नए उत्साह से अंग्रेजी भाषा सीखने लगे। इतिहास और संस्कृत भी उनका प्रिय विषय रहा, पर गणित के प्रति वे विरक्त थे। उनके पिता ने इसे सहज रूप से लिया और कहने लगे,
5: ठीक है, अगर बिले को गणित में रुचि नहीं तो ना सही, ये तो बनियों के दुकानों में काम आने वाला विषय है। बिले क्या पंसारी की दुकान खोलकर दाल चावल बेचेगा?
0: खेलकूद के प्रति नरेंद्र को बचपन से ही स्वाभाविक प्रेम था। उन्हें बहुत जल्दी पाठ याद हो जाता था और वे साथियों के साथ खेलने में मतवाले हो जाते। जलपान का पैसा जमा करके कंचा, बैट बॉल आदि खरीदते। क्रिकेट के खेल में वे दक्ष थे। परीक्षा निकट आने पर वे थोड़े ही दिनों की पढ़ाई में पास हो जाते। सभी खेलों में वे अगुआ थे।

0: कभी कभी विद्यालय का कक्ष ही खेल का मैदान बन जाता। बच्चों में झगड़ा हो जाने पर वे ही मध्यस्थता करते। दो दलों में मारपीट हो जाती तो बीच में पड़कर वे ही दोनों दलों को अलग कर देते। ऐसा करते वक्त उन्हें भी एक दो घूसे पड़ जाते, पर वे खुद भी मुक्केबाजी में प्रशिक्षित थे, इसलिए अपना बचाव कर लेते थे। स्वयं वे मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।
1: बहुत जल्दी पाठ याद करके वे क्लास में ही दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगते थे। शिक्षक के क्लास में आकर पढ़ाना शुरू कर देने के बाद भी वे कहानी सुनाने में ही मशगूल रहते। रामायण महाभारत के कोई मजेदार प्रसंग छेड़ देते और बाकी दोस्त पाठ भूलकर उन्हें ही सुनते रहते। एक बार फुसफुसाहट से चिढ़कर एक शिक्षक छात्रों से पाठ पूछने लगे। कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी चुप रहे, परंतु नरेंद्र का मन दो तरफा था। कहानी सुनाते सुनाते भी वे शिक्षक की बात सुन लेते थे, इसीलिए शिक्षक ने जब नरेंद्र से पाठ पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। शिक्षक ने पूछा कौन बता रहा था, सब ने नरेंद्र की ओर उंगली उठाई, पर शिक्षक ने विश्वास नहीं किया और नरेंद्र को छोड़ सबको बेंच पर खड़ा कर दिया। नरेंद्र भी खड़ा हो गया।
2: बेटा तुम्हें खड़ा होना नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ।
3: नहीं, मुझे भी खड़ा होना होगा क्योंकि मैं ही तो बात कर रहा था।
0: एक रास्ता उन्हें भाती नहीं थी। बालक नरेंद्र पढ़ाई के साथ साथ नित नए खेल या मनोरंजन का साधन ढूंढते रहते। उन्होंने एक नाटक दल का गठन किया और वे पूजा घर के सामने के बरामदे में घर में नाटक खेला करते। पर एक चाचा ने आपत्ति की तो उन्होंने आंगन के एक किनारे व्यायाम का अखाड़ा बना लिया। मित्रों के साथ वहां वे नियमित व्यायाम करते। एक दिन एक चचेरे भाई का व्यायाम करते समय गिरकर हाथ टूट गया। चाचा ने नाराज होकर व्यायाम का सारा सामान तोड़ दिया। दुखी होकर नरेंद्र ने पड़ोस के नवगोपाल बाबू के जिम्नास्टिक के अखाड़े में नाम लिखाया। वहां उन्होंने लाठी भांजने, तलवार चलाने, नाव खेने, तैरने, कुश्ती तथा अन्य व्यायामों में दक्षता प्राप्त की। एक बार मुक्केबाजी में प्रथम पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक चांदी की तितली मिली थी। लाठी भांजने में बालक नरेंद्र को बड़ा मजा आता था। अखाड़े में और अखाड़े के बाहर कुछ मुस्लिम उस्तादों से उन्होंने इस विद्या में महारत हासिल की थी।
1: जब उनकी उम्र महज 10 साल की थी, स्कूल में खेल प्रतियोगिता चल रही थी। नरेंद्र ने लाठी भांजने वालों को ललकार कर कहा,
3: मेरे साथ कोई खेलने को तैयार है? कोई भी चलेगा।
1: सबसे बलवान और अधिक उम्र का एक खिलाड़ी आगे आकर बोला,
4: तू ललकार रहा है, तेरी उम्र ही क्या है?
3: अरे उम्र से क्या होता है, साहस हो तो आगे आओ।
4: अरे सुनो, इस बच्चे की बात तो सुनो। ला रे, एक लाठी तो दे, मैं भी इसकी छुट्टी कर देता हूँ।
3: नरेंद्र क्या पागल हो गया है, इस पहलवान से तू क्या लड़ेगा, हार जाएगा रे। पहले से ही हार मान लू, देखू तो आजमा कर।
4: शाबाश नरेंद्र, क्या पैतरा कैसा है। अरे देखो तो, ये छोटा सा लाडला, अरे बराबरी से लड़ा जा रहा है, पर हार तो निश्चित है।
0: नरेंद्र ने पैतरा बदलते बदलते अचानक कुशलता पूर्वक हा की आवाज करते हुए प्रतिद्वंदी पर एक ऐसा प्रचंड आघात किया कि उसकी लाठी दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई।
3: ये लो, संभालो।
4: अरे वाह नरेंद्र, वाह क्या मारा है।
5: अच्छी शिक्षा पाई तूने नरेंद्र, तेरी शिक्षा सार्थक हुई।
1: वे अपने मोहल्ले के सबसे प्रिय पात्र थे। वे उन लोगों को मामा, छोटे चाचा, फूफा, मौसी, माँ, दादा, दादी, दीदी, भाई या बहन कहकर पुकारते थे। सबसे बुरे वक्त में वे ही सबसे पहले पहुंचकर उनकी मदद किया करते थे। उनके हास परिहास से बुजुर्ग भी बिना हंसे नहीं रह पाते थे। सभी के घरों में वे निसंकोच आते जाते थे। पिता ने उन्हें एक छोटा सा घोड़ा खरीद दिया था। घुड़सवारी में दक्ष हो जाने पर रोज शाम घोड़े पर चढ़कर घूमने जाना उनका शौक था।
0: सभी दोस्त नरेंद्र को बहुत चाहते थे, प्यार करते थे। वे भी सभी से इतना घुल मिलकर बातें करते थे कि सभी बच्चे समझते थे कि नरेंद्र उसे ही सबसे ज्यादा चाहता है।

0: एक बार एक पड़ोसी बुजुर्ग ने नरेंद्र से कहा,
1: अरे नरेंद्र, हमेशा मैं तुम्हें घूमते घामते या खेलते ही देखती हूँ, कभी पढ़ता लिखता भी है तू?
2: ताई जी, मैं दोनों ही काम करता हूँ।
3: बात सही निकली। परीक्षा में नरेंद्र ने सभी प्रश्नों का जवाब ठीक दिया। कविता, इतिहास, भूगोल, अंक गणित, भाषा, सभी में अव्वल नंबर मिले। परीक्षक ने खुश होकर पूछा,
4: नरेंद्र, सुना है तुम्हारे पिताजी आजकल लाहौर गए हैं, तो तुम्हारी देखभाल कौन करता है?
2: जी हाँ, पिताजी लाहौर में हैं, पर माँ तो यही है और वो ही मुझे क्या करना होगा वो समझा देती है, और पढ़ाई तो मैं स्वयं करता हूँ।
4: बहुत अच्छा बेटा, ऐसा ही करते रहना, भविष्य में तुम जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे।

0: संन्यास के प्रति नरेंद्र को बचपन से ही अनुराग था। वे हमेशा सोचते रहते कि मौका मिलते ही वे सन्यासी बन जाएंगे। अक्सर ये बातें वे स्कूल के दोस्तों से कहते थे।
1: तुम लोग देख ही ना, बड़ा होकर मैं सन्यासी बनूंगा। क्यों? ये देखो ना, मेरे हाथ में सन्यासी बनने की रेखा मौजूद है।
2: तुझे कैसे पता ये कौन सी रेखा है?
1: मुझे एक साधु ने कहा है।
0: फिर कल्पना के सहारे वे कहते जाते सन्यासी गण कैसे हिमालय जाकर तपस्या करते हैं।
1: हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ बर्फ से ढकी और उसमें गुफा के अंदर सन्यासी धुनी जलाकर ध्यान करते हैं।
2: वो क्या खाते हैं नरेन?
1: वो लोग तो फल फूल खाकर ही गुजारा करते हैं। पहाड़ों के जंगल में अनेक फलों के पेड़ हैं, वही तोड़ के खाते हैं। अगर मैं हिमालय में भी न जाऊं, तो जंगल में झोपड़ी बना के रहूंगा और वही तपस्या करूंगा।
2: तुझे डर नहीं लगेगा? जंगली जानवर आ जाए तो क्या करेगा?
1: अरे जंगली जानवर कभी सन्यासियों पर हमला नहीं करते, और वैसे भी अगर तुम जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाओ तो वे भी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप निकल जाएंगे।
2: अच्छा?
1: हाँ, तभी तो कौपीनधारी जटाजूट वाले सन्यासी गण फल फूल खाकर भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं।

0: बढ़ने के साथ साथ उनके स्वभाव में एक परिवर्तन आया। वे पुस्तकों के अध्ययन, समाचार पत्रों के अध्ययन, सभा समितियों में उपस्थित रहने में रुचि दिखाते रहे। उनकी याददाश्त बहुत ही प्रखर थी, इसीलिए सभाओं से लौटकर साथियों को भाषण का सार तत्व कह देते थे और उन विषयों पर आलोचना भी करते थे।
1: उनका सौंदर्य बोध भी अपूर्व और मौलिक था। एक दिन एक दोस्त को गाते सुनकर उन्होंने कहा था,
2: सुर और ताल ही संगीत का एकमात्र अंग नहीं है। अगर कोई नकियाते स्वर में गाए तो क्या अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। गीत के भाव को भीतर से फूट पड़ना चाहिए, शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और सुरताल तो ठीक होना ही है। जो संगीत श्रोता के मन में अनुरूप भाव जगा नहीं पाता, वो संगीत संगीत ही नहीं है।
0: सन 1877 में जब नरेंद्र तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, उनके पिता विश्वनाथ काम के सिलसिले में उत्तरी और मध्य भारत में जाया करते थे। एक बार जब वे मध्य प्रदेश के रायपुर में थे तो कई महीनों के बाद उन्होंने अपने परिवार को रायपुर ही रहने के लिए बुला लिया। उन दिनों इलाहाबाद और जबलपुर होकर ट्रेन नागपुर तक जाती थी। नागपुर से रायपुर तक बैलगाड़ी में सफर करना पड़ता था, उसमें 15 दिनों से भी ज्यादा का समय लग जाता था।
1: ये सफर नरेंद्र के जीवन का यादगार सफर रहा। उनके साथ माता भुवनेश्वरी, बहनें और दो छोटे भाई थे। एक दो नौकर भी साथ चल रहे थे। नरेंद्र बैलगाड़ी में बैठकर दोनों ओर के जंगल और पहाड़ों की शोभा देखकर मोहित हो गए।

0: पहाड़ी इलाकों गुफा में झरझर करते झरने, वहीं एक पहाड़ी गुफा में उन्होंने मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता देखा था। देखते देखते बालक नरेंद्र ध्यानमग्न हो गए। मधुमक्खियों का विशाल साम्राज्य, उनका संगठन, कार्यक्षमता और अनुशासन की बातें सोच सोचकर उन्होंने कई सीख ले ली थी। रायपुर में अच्छे विद्यालय नहीं थे, अतः नरेंद्र अपने पिता के पास ही पढ़ते थे। पिता उन्हें सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं देते थे, पुत्र के बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न विषयों का विवेचन भी किया करते थे। दोनों में बहस छिड़ जाती और पिता पुत्र से हार मानने को भी तैयार रहते। वहाँ कई विद्वानों का आना जाना होता था, कई विषयों पर आलोचनाएं होती थी। बालक नरेंद्र हमेशा वहाँ बैठे ध्यान पूर्वक सबकी बातें सुना करते थे और मौका पाकर अपना विचार भी व्यक्त करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और वैचारिक क्षमता का परिचय पाकर बुजुर्ग चकित हो जाते और उसे बालक समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। एक दिन नरेंद्र ने ऐसी ही एक सभा में बंगला के विख्यात लेखकों के गद्य एवं कविताओं का उदाहरण देकर पिता के विद्वान दोस्तों को चकित कर दिया था।
1: बालक नरेंद्र बहुत ही आत्मसम्मानी थे। छोटा समझकर कोई उनकी उपेक्षा करे, ये वे सहन नहीं कर पाते थे। एक बार उनके पिता के एक मित्र के उनकी अनावश्यक अवमानना करने पर नरेंद्र ने सोचा, जब मेरे पिता मुझे तुच्छ मानकर अवहेलना नहीं करते तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उस सज्जन से विनम्रता पूर्वक कहा,
2: आपकी भांति ऐसे अनेक लोग हैं जो सोचते हैं कि किसी की कम उम्र होने पर उसमें ज्ञान विचार नहीं होता, किंतु ये धारणा बिल्कुल गलत है।
1: उस सज्जन ने देखा कि नरेंद्र आहत सर्प की भांति क्रुद्ध हो गए हैं और उनसे बात करने को भी तैयार नहीं, तो वे अपनी गलती मानने को विवश हो गए।
0: रायपुर में रहते समय उन्हें परिवार का भरपूर साथ मिला। वे अक्सर पिता के साथ खाना पकाते थे और इस तरह पाक कला में निपुण हो गए। एक और विद्या उन्होंने रायपुर में सीखी थी, शतरंज खेलना। ये खेल उन्हें बहुत पसंद आया, बहुत ही ध्यान लगाकर खेलते थे। इस छोटे से बालक के द्वारा शतरंज की गहरी चालों को चलाते देख सभी अचंभित हो जाते थे। नरेंद्र ने कई दिग्गजों को हराया था।
1: बालक नरेंद्रनाथ को कभी कभी इंद्रियातीत अनुभूतियां हुआ करती थी। किसी वस्तु या व्यक्ति को पहली बार देखकर उन्हें लगता था कि उन्होंने पहले भी उन्हें देखा है, पर कुछ याद नहीं कर पाते थे। लोगों से विचार विमर्श करते वक्त उन्हें लगता था कि पहले भी तो ये बातें सुन चुके हैं, पर याद नहीं कर पाते थे कि कहां सुन चुके हैं। बाद में जब वे पुनर्जन्मवाद से परिचित हुए तो उन्हें लगा कि ये सब बातें शायद उनके पिछले जन्मों में घटी थी, जिनकी आंशिक स्मृति इस जन्म में उन्हें रह रहकर याद आती। पर बाद में उन्होंने समझा कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। उनका बालक मन इन्हीं विषयों में उलझता रहता था। उनके पिता ने भी उन्हें समझा बुझाकर उन उलझनों से उनके मन को

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: वेलकम बैक श्रोते हो। फेब्रुवारी महिना आहे। फेब्रुवारी महिना म्हणजे प्रेमी युगुलांसाठी एक खूप म्हणजे आनंददायी असा महिना असतो। मी माझ्या एका कवितेमध्ये लिहिलंय की सुखांनी फावे पुन्हा नव्याने पुलकित, असा अजन्म हाती न सुटणारा हात दे। सुखांनी फावे पुन्हा नव्याने पुलकित, असा अजन्म हाती न सुटणारा हात दे। फिकी पडावी जीवनातील दुःखे सारी, फिकी पडावी जीवनातील दुःखे सारी, जीवनाच्या प्रत्येक पावलावर साथ दे। फिकी पडावी जीवनातील दुःखे सारी, जीवनाच्या प्रत्येक पावलावर साथ दे। व्हावा न कधी पापणीचा काठ ओला।

0: हमारा भी जमाना था, हमारा भी जमाना था, हमारा भी जमाना था।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोल दी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लुटा।
1: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: जीवन में अगर सेवा भाव है तो जीवन बहुमूल्य बन जाता है। हमारे आसपास कई ऐसे रोजगार हैं, कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन सेवा से है, जैसे कि हॉस्पिटल, बीमार, बुजुर्ग, तकलीफ में रह रहे, तकलीफों से जूझ रहे लोगों को मदद पहुंचाने वाले। इस प्रोफेशन में एक बहुत ही खास नाम जुड़ जाता है उनका, जो कि इनकी दिन रात सेवा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जो कि नर्सिंग के द्वारा लोगों को बहुत बहुत सुख और सुविधाएं पहुंचाते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एक और एपिसोड में मैं शांतनु आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे ग्लोबल हॉस्पिटल के चीफ मैट्रन, चीफ नर्स ब्रह्मा कुमारी रूपा बहन को, जो कि राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित हैं, कि कैसे उनके जीवन में सेवा का या नर्सिंग का क्या महत्व है और वास्तव में नर्सिंग की ड्यूटी कितनी टफ होती है। हम इन बातों पर चर्चा कर रहे थे और आज हम दोबारा उनके साथ मिल रहे हैं। रूपा दीदी, आपका स्टूडियो में फिर से स्वागत है, नमस्कार। और शुरुआत करते हैं एक सवाल से।
4: आपके प्रोफेशन में आपको इतने लोगों ने सिस्टर्स बोला होगा, कितने ही लोगों ने सिस्टर्स बोला होगा, आप कितनों की सिस्टर्स बनी होंगी। आपको नहीं लगता कि समटाइम्स ये जो वर्ड है सिस्टर, या जैसे एक मेल नर्सों में तुमको ब्रदर्स कहते होंगे या जो भी तरीके से बुलाते हैं, इसका एक वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है और उसको कैरी कर पाना कई बार लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्स है, वो भी 24 घंटे हैं, उसके पास भी, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है वो कितना डिफिकल्ट है, किसी और के बॉडी को हील करने में उनकी बॉडी का कितना एनर्जी लग रहा है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो नर्स है वो थकान महसूस करे, या हो सकता है उनको भी कभी फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन आता होगा। कई पेशेंट ऐसे मिल जाते होंगे जो कि कॉन्स्टेंटली एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे कोई अगर आपको सिस्टर कह रहा है तो भी क्या आपके अंदर से वो सिस्टर वाला प्यार निकलता है, या उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कैसे आप डील करते हैं?
5: अपनी थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है हमें इन बातों के लिए। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग स्टाफ होती है और वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय कई बार सिस्टर्स हो जाती है फ्रस्ट्रेट, और ज्यादातर उस समय होती है कि जब

0: मना हमारे हॉस्पिटल में हमें ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ती है क्योंकि हमारी जो सिस्टर्स है वो कैंपस में ही ज्यादातर रहती है। लेकिन बाहर के हॉस्पिटल में कई बार मैं देखती हूँ कि जैसे हमारा हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर का टाइम चल रहा है, जैसे आप दूसरे शिफ्ट वालों को दे रहे हैं पेशेंट का हैंड ओवर दे रहे हैं और उसी समय अगर एडमिशन आ जाता है तो कई बार मैंने सिस्टर्स को फ्रस्ट्रेशन होते हैं, अरे अभी ही आना था क्या इसको, मुझे जाना है और आज मुझे जल्दी निकलना है, ऐसे समय पे ये होता है। लेकिन यहाँ इतनी हमारी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि फर्स्ट ये हम लोग पहले कहते हैं कि हमें टाइम देखकर काम नहीं करना है, तो हम वो देखते हैं कि जो भी है। तो मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम हमारे स्टाफ से नहीं फेस करनी पड़ती है कभी भी, वो लोग बड़े प्यार से ही करते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट
1: ये बताया है कि आपने जो ये बताया ना कि टाइम देख करके सेवा नहीं करनी, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला फॉर हूएवर इज इन दिस प्रोफेशन, जो भी कोई इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है कि आपको सेवा करनी है, समय देख करके सेवा नहीं करनी। बहुत अच्छा लगा ये सुन के।
0: और मैं हमेशा हमारे नर्सेस को भी यही हमारी इनको कहती हूँ कि पेशेंट हमारे पास जब आता है तो वो बहुत दर्द में आता है क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में आना नहीं चाहता है। जब बहुत टॉलरेंस के बाहर हो जाता है तब जाकर वो एडमिट आते हैं, तो हमें उन्हें बड़े प्यार से वेलकम भी करना चाहिए, मतलब उनको लगना चाहिए कि हाँ बाबा मेरी यहाँ केयर अच्छी से होगी, इस प्रकार से हमें उनको ये करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एकदम अरे इस समय क्या आया, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। वो कंपैशन हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारे इस पे पेशेंट इतना आया है तो हमें उसकी अच्छी देखभाल प्रॉपर नर्सिंग केयर हमें करनी चाहिए। ये हम हमारे सारे नर्सेस को सिखाते हैं यहाँ, मतलब
1: इस पर फोकस होता है, ये आप सिखाते हैं, इस फोकस में है।
0: हाँ, तो ये होता ही है कि भाई ये ध्यान रखना है हमें।
1: एंड आई थिंक आपके फोकस में क्योंकि ये मूलभूत बातें हैं जो कि नर्सिंग की मूलभूत बातें हैं या प्यार या संभाल देने की मूलभूत बातें हैं, क्योंकि नर्सिंग मतलब ही प्यार से किसी को ठीक कर रहे हैं ना। नर्सिंग वर्ल्ड का मतलब ही है कि केयर से आप किसी को ठीक कर रहे हैं, दवाइयों से नहीं। दवाई तो चलो देंगे ही, लेकिन जो प्यार और पालना है उस पालना से आप सामने वाले को ठीक करते हैं। ये आपके मूलभूत सिद्धांत इतने मजबूत है कि ये आपको एक साधारण नर्सिंग प्रोफेशन में आपको एक बहुत अनूठा अनोखा व्यक्तित्व बना देते हैं, जिसके तहत 2018 में राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बहुत कम नर्सेस को ये सम्मान मिलता है। आपको जब ये सम्मान मिला तो आपने पहले भी बताया कि मैंने सम्मान के लिए कोई सेवा नहीं की, लेकिन जब आपको ये पुरस्कार मिला तो आपको क्या लगता है कि आपके आसपास में जो लोग थे क्या उनका आपके प्रति नजरिया थोड़ा डिफरेंट हुआ या कुछ क्या चेंजेस आए?
0: चेंजेस तो है नहीं, लेकिन सबको बहुत प्राउड फील हुआ क्योंकि राजस्थान स्टेट में मिलना, एक फीमेल इसको मिलना, तो ये क्योंकि हर स्टेट से एक व्यक्ति को उस साल में मिलता है हर स्टेट से। और ये कैसे आपका सिलेक्शन होता है कि यहाँ से आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हम लोग जैसे सिरोही में है, सिरोही हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारा ये फिर सेंट्रल इस पे गया, स्टेट लेवल पर जयपुर में गया और वहां से सिलेक्ट होकर फिर सेंट्रल पे लिया, तो उस समय वहां दो नाम जाते हैं और उसमें से सेंट्रल वहां से एक का सिलेक्शन होता है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और जब इसका मेल आया मुझे तो भी मुझे ये रहा कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकी। और मैं जब इस संस्था में, मैं जैसे आपको इस ब्रह्मा कुमारीज में आई तो मुझे हमारे दादी प्रकाशमणि जी थे, तो दादी प्रकाशमणि जी ने पहले कहा था कि जो सेवा हमें मिलती है उस सेवा को अगर हम दिल से करते हैं तो उसमें हमें 101% सफलता मिलती है। तो जब मुझे ये मेल आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं मेल पढ़ रही थी और मेरे मेल के वो वर्ड्स मुझे कुछ नहीं दिखाई दिए थे और दादी प्रकाशमणि जी मुझे दिखाई दे रहे थे और वो ऐसे कह रहे थे कि देखा मैंने आपको कहा था ना, अगर हम दिल से सेवा करते हैं तो उसमें कैसे सफलता मिलती है। कि ये एकदम मानना चाहिए, तो ये हमारे लिए था कि ऐसे अवार्ड मिलेगा, वो भी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको ये सम्मान मिलेगा। तो मैंने देखा कि बहुत

0: बनाएगा। और सेकेंड, जैसे ये अवार्ड मिला उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ गई अवार्ड मिलने के बाद कि मुझे
1: ये अपना बहुत बड़ी बात है कि अवार्ड केवल सम्मान नहीं है, साथ में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाता है।
0: रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो हमें और ज्यादा लोगों की हमारे प्रति बढ़ गई, तो उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। तो ये ऐसे रहा।
1: ये रूपा जी की जो भी सेवा आपको मिलती है, चाहे कोई छोटी से छोटी सेवा मिले या बड़ी से बड़ी, वैसे सेवा तो कोई छोटी बड़ी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसका कनेक्शन देखा जाए कि भाई कितने समय में हो रहा है और कितने लोगों के लिए हो रहा है, उसके हिसाब से अगर हम उसको सीमित या असीमित कहते हैं, बट जो भी सेवा है उसको अगर आप दिल से कर रहे हैं तो उसमें 101% सक्सेस है ही है। ये बहुत बड़ा मंत्र है।
0: और सबसे मैंने ये रखा है कि मुझे कोई भी कुछ कहता है, अब मुझे पता है कि ये काम मेरे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हाँ जी करके बड़ों ने जो हमारे लिए निमित्त आत्मा है उन्होंने जो भी मुझे सेवा दी है वो हाँ जी कर सेवा करो। तो मैंने देखा कि अपने यहाँ वो आप में कैपेसिटीज भी आ जाती है। जैसे शुरुआत में मुझे याद है कि हमारा जब ये हॉस्पिटल का सेटअप बना और ऑपरेशन थिएटर जब शुरू हुए हमारे, तो मुझे ऑपरेशन थिएटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। जब हमारे पास ऑपरेशन थिएटर्स के लिए कोई सिस्टर नहीं थी, एक्सपीरियंस सिस्टर नहीं थी, और हमारे पास जो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टीज एंड डायरेक्टर डॉक्टर अशोक मेहता जो वेल नोन कैंसर सर्जन थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर कोई ट्रेनिंग ये करता है तो मैं उनको सिखाऊंगा, और उन्होंने पूरा ऑपरेशन थिएटर की मुझे ट्रेनिंग दी। और मुझे याद है कि इतना कॉन्फिडेंस हमारे में आ गया, क्योंकि माउंट अबू ये हमारे इनका ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होने के नाते ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं विजिटर्स के साथ, तो कई बार कई विदेश के भी डॉक्टर्स हमारे पास सर्जन्स वगैरह आकर गए हैं। तो मैंने देखा कि इतना उन्होंने हमें ट्रेन किया तो हमें उनको भी असिस्ट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैंने देखा कि जब बड़े हमें कुछ कहते हैं और उस बात को हम अगर स्वीकार करते हैं तो वो आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन जस्ट आप हाँ जी करते हैं और उस बात को आप पॉजिटिवली लेते हैं तो अपने आप हमारे में वो कैपेसिटी आ जाती है, वो पावर्स आ जाती है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरा रहा है। और मैं करीबन मेरे ख्याल से 12 इयर्स मैं ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज करके रही, और लास्ट 10 इयर्स से ही मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विस पर आई हूँ। तो मेरा नर्सिंग का सफर शुरू हुआ है एज अ स्टाफ नर्स और फिर धीरे धीरे करकर चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विसेज के पोस्ट पे आई है। लेकिन फिर भी मैं कई बार मैं ये फील करती हूँ कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में जितना मजा नहीं आता है उतना उस समय जो आता था क्लिनिकल एरियाज में जो ऑपरेशन थिएटर में हम करते थे, तो वो उसका अपना आनंद था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, क्योंकि आपको कई सारी पॉलिसीज डिसिप्लिन वगैरह कराने होते हैं उस हिसाब से, लेकिन आनंद उसमें ज्यादा आता था।
1: बाकी एक चीज मुझे इसमें ये, जैसे आपने बताया कि जैसे बड़े आपके कहते हैं उससे आपको ये 100% यकीन रखना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव से कह रहे होते हैं, तो अनुभव जो है व्यक्ति को बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित भी करता है और सक्षम भी बनाता है। जब कोविड आया उस टाइम पे किसी को भी अनुभव नहीं था कि इस प्रकार की बीमारी को किस तरीके से डील किया जाए, क्योंकि टच करना या लोगों के विक्सिनिटी में आना, नजदीकी में रह करके वो चीज पॉसिबल ही नहीं था। और जो लोग बहुत नजदीक संपर्क में थे पेशेंट्स के, उनके लिए भी बहुत बड़ा हैजार्ड था, बहुत डेंजरस था, क्योंकि उनको भाई उन्हें भी कोविड हो सकता है। तो ये जो इस प्रकार की, क्योंकि इसके पहले की आपकी जितनी भी ट्रेनिंग रही है वो सब अलग अनुभव के साथ रही है, उसका अनुभव शेयर करने के लिए भी लोग रहे होंगे, बट कोविड का सिचुएशन एकदम फ्रेश सिचुएशन था, उसमें अनुभव भी क्या होने वाला है आपको पता नहीं था। ऐसे में आप और आपकी टीम ने दिन रात एक करके बहुत सेवाएं की है। और ये क्योंकि मैं खुद माउंट आबू में हूँ और हमारे श्रोता साथी भी माउंट आबू में हैं, कोविड का दौर कोई भूल नहीं सकता, कितना ही सेवा जो है आपके और पूरी टीम ने किया है। वो टाइम कैसा था, किस तरीके से आपने खुद को प्रिपेयर किया या अपनी टीम का हौसला बढ़ाया, या हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम?
0: कोविड

0: से आया तो मुझे याद है उस समय सबसे पहले तो सबसे ज्यादा बिजी लोग कहते थे लॉकडाउन हुआ हम घर में फ्री बैठे हैं, लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल वर्कर्स जो थे वो सबसे ज्यादा बिजी थे। एक तो हमें सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ा और हमें ऑनलाइन हमने ट्रेनिंग ली, क्योंकि ये पीपीई किट पहनना, पीपीई किट उसकी ट्रेनिंग हमारे स्टाफ को देना, उसके बाद कैसे पेशेंट्स के साथ आना है, किसी पीपीई किट पहनकर आपको काम करना है, शुरुआत में बहुत मुश्किल हो रहा था। और स्टाफ को ज्यादा इन्फेक्शन न होने के कारण हम तो 12-12 घंटे स्टाफ की हमारे ड्यूटीज लगाते थे, कंटिन्यूशन में स्टाफ ड्यूटी कर रहा था उस समय, 12 आवर्स की उनकी ड्यूटी हम लगाते थे। और लेकिन साथ में हमने देखा कि अपने आप को हमने ट्रेन किया, ऑनलाइन हमने ट्रेनिंग्स ली इन बातों के लिए, कैसे पीपीई किट पहनना है, कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, और फिर कैसे ये बायो मेडिकल वेस्ट जो ये है इनका, क्योंकि ये इन्फेक्शियस ये था तो इनका कैसे हमें हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है उसको कैसे सेग्रीगेशन करना है, कैसे उसके लिए भी इन्फेक्शन और ज्यादा ना फैले उसके लिए कैसे प्रिकॉशंस लेनी है, मना इसके लिए हमें खुद को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी, साथ साथ हमारे स्टाफ को भी हमें ट्रेन करना पड़ा, और प्रैक्टिकल में भी हम जाकर ये सारा काम करवा रहे थे। नॉट ओनली नर्सेस के लिए, इसमें हाउसकीपिंग स्टाफ का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था इसमें। तो हमने देखा कि किस प्रकार से आपको, जैसे मैंने कहा बायोमेडिकल वेस्ट का है, पीपीई किट पहनकर कैसे काम करना है, और जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस था कि विदाउट रिलेटिव्स पेशेंट रह रहे हैं, विदाउट रिलेटिव्स। कई जगह पे तो हमने देखा कि रिलेटिव्स ने एक बार लाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसके बाद तो वो आए नहीं है। कई बार हमने वीडियो कॉल से हम रिलेटिव्स के साथ पेशेंट्स की बात कराते थे, ताकि इस प्रकार से, तो काफी हमने टाइम हमारे पेशेंट्स को भी इस समय दिया हुआ है। और मैनेजमेंट ने भी हमें जो सारी चीजें चाहिए वो सारी प्रोवाइड करते गए हैं हमारे साथ साथ। हमने न कि हमारे स्टाफ भी कोरोना से कैसे वो प्रिवेंट हो रहे ऐसे, क्योंकि नेचुरली पेशेंट्स की केयर करते करते कई हमारा स्टाफ भी इंक्लूडिंग मैं, हम भी कोरोना के चपेट में आए हुए थे, तो कैसे अपने आप को आइसोलेशन कराकर अब ये करना है, उसकी हमने काफी ट्रेनिंग भी ली और प्रैक्टिकल भी हमें तुरंत करना पड़ा हर बात के लिए। एकदम ये अनुभव जो रहा कोरोना का, काफी एकदम ये था, मतलब फर्स्ट वेव्स में तो हमने पूरी ट्रेनिंग ली, लेकिन सेकेंड वेव्स में तो हमने देखा कि किस प्रकार से, और हमने ये भी देखा कि एंग्जायटी के कारण यंग जनरेशन की मोर्टेलिटी ज्यादा हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, ये था। तो यंग जनरेशन काफी फियर के कारण हमने देखा कि डेथ की तरफ ये हो रहे हैं, लेकिन
1: डर ने
0: काफी
1: सताया, डर ने कईयों को सताया,
0: डर के कारण ही काफी हम यंग जनरेशन जो गई है कोरोना में, हम तो देखते हैं कोविड पैंडेमिक में, वो जस्ट एंग्जायटी, इसके अलावा ये नहीं रहा है उनका। और कई बार ऐसे भी हमने ओल्ड एज वाले पेशेंट्स ऐसे थे कि वेंटिलेटर पे थे और हमें लग रहा था कि ये रहेंगे नहीं, वो एकदम वेंटिलेटर से आउट होकर अच्छे होकर डिस्चार्ज होकर घर गए हैं, वो भी हमने देखा है। लेकिन बहुत एकदम अलग एक्सपीरियंस था इन बातों का, कभी हम इस एक्सपीरियंस को भूल नहीं सकते हैं। और अभी भी कोरोना सब जगह अभी चल रहा है, जो न्यूज आ रही है अभी कि चाइना में बहुत सारा कोरोना का ये हो रहा है, लेकिन हम लोग वैक्सीनेशन के कारण काफी सेफ थोड़ा फील कर रहे हैं, लेकिन बहुत
1: ये अनुभव आप भी नहीं भूल सकते और देश भी नहीं भूल सकता, इसलिए
0: देश
1: में 2022 में जी 2022 में आपको सेवा रत्न पुरस्कार भी दिया गया कोविड के दौरान अपनी सेवाओं की वजह से, इसका तो पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन हमें भी बहुत निश्चिंतता होती है कि हमारे साथ ऐसे अनुभवी नर्स और उनका टीम है जो कि हमारा ख्याल रखने के लिए हमेशा अपने दिन रात को एक करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं इस चर्चा को फिनिश रैपिड राउंड में जाने के पहले आपसे एक या दो कुछ ऐसे किस्से सुनना चाहूंगा, मैं समझता हूँ मेरे श्रोताओं को भी बड़ा मजा आएगा सुनने में, जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल इंसिडेंट्स रहे हैं आपके नर्सिंग लाइफ के, मतलब अगर

0: एक या दो इंसिडेंट्स आपको ऐसे याद करने हो, एक था जो आपका फर्स्ट वाला था, बट इवन देन कोई ऐसे इंसिडेंट्स जो कि आपको खट्टे मीठे याद दे करके जाता है?
1: कई ऐसे एक्सपीरियंस है जिसमें, जैसे ऑपरेशन थिएटर का मैं बता रही हूँ कि शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि हमारे जो ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टीज डॉक्टर अशोक मेहता थे, एकदम शुरुआत में जैसे पेशेंट्स आते थे तो बॉम्बे से पूरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम लेकर आते थे और यहाँ ऐसे ऑपरेशन हमने देखे हैं पेशेंट्स के। एक ऑपरेशन मैं नहीं भूल सकती हूँ कि पेशेंट को पूरा रोडन अल्सर बना, कैंसर यहाँ था और पूरा बड़ा ये था, तो हमें ऐसे कुछ ये करना था कि जिस ऑपरेशन को मैं फर्स्ट टाइम असिस्ट कर रही थी, मुझे भी इस ऑपरेशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ये 1995 की मैं बात कर रही हूँ। और इस ऑपरेशन में ऐसे था कि पेशेंट के वो कैंसर ट्यूमर जो था, उस ट्यूमर ने आई की भी पूरा ये सारा इन्वॉल्व था, आई के हमारी मसल्स भी जो ये होता है ना उसमें पूरा ऐसे ये था रोडेंट अल्सर में। तो क्या हुआ था, जब हम शुरुआत में ये होते हैं तो वहां लगाने के लिए हमें ऐसे था कि अंदर चीक के अंदर से जो हमारी चीक के अंदर की जो सेल्स है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन्स व्हाइट वाला जो अगर हम देखते हैं, उसको निकालकर वो यहाँ आंख में लगाने वाले थे, ऐसे था। तो मुझे लगा कि चलो फर्स्ट वो ही हुआ सर्जरी के दौरान। फिर ये तब तक पता था कि कोई भी चीज शरीर से हम निकालते हैं ऑपरेशन के दौरान तो उसको हमें हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जांच के लिए भेजना जरूरी होता है, इसलिए हम अलग से निकाल कर रखते हैं और उसके लिए हम अलग से एक स्पेसिफिक इसमें रखते हैं फॉर्मोलिन, हमारा जो लोहे आता है डिसिन पे, उसमें हम ये डालते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि चलो ये निकाला है तो हमें डालना है, इतनी सी वो स्कीन थी यहाँ वहां कहीं गिर न जाए, इसलिए मैंने हमारे असिस्टेंट को कहा भाई वो फॉर्मोलिन वाली बॉटल लेकर आओ, उसमें मैं डालती हूँ। और मैं जब अभी डालने वाली थी तो एक जो डॉक्टर थे माना जो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो मुझे ऑब्जर्व उन्होंने कर रहे होंगे शायद, उन्होंने देखा अभी मैं ऐसे उस बॉटल में, क्योंकि वो हमारी नॉन टच टेक्निक होती, हम लोग स्क्रब होते हैं तो ग्लोव वगैरह पहने गाउन होता है, तो फॉर्सेप्स से मैं ऐसे डालने वाली थी, उतने में वो डॉक्टर साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बाद में ये कराओ। फिर मैंने जैसे कहा कि अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उस समय उनकी बात मानकर हाँ जी किया और उसको वैसे ही ये कर दिया। फिर बाद में वो सारा अल्सर जो ये था रोडेंट अल्सर, इतना बड़ा ट्यूमर का रूप था, उसको सारा निकाला और जब आंख में ये करने के लिए जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स मुझे मांगे जो अंदर इससे निकाले थे था, तो मुझे पता पड़ा कि माय गुडनेस मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी उस समय, और मुझे कैसे परमात्मा जो हम सुप्रीम सर्जन करते हैं, क्योंकि ये मेरा ये है कि सुप्रीम सर्जन ने मुझे कैसे सेव किया और वो हमारा पेशेंट कैसे सेव हुआ, तो मेरी एक छोटी सी गलती पेशेंट को कितना बड़ा हार्म ये होती थी और वो ऑपरेशन सक्सेस हमारा नहीं होता था। तो मैं हमेशा ऑपरेशन थिएटर में जब भी एंटर करती थी तो हमेशा एक सुप्रीम सर्जन से वो एक रिलेशन कि परमात्मा मेरे सुप्रीम सर्जन है, और जो उनको मैं सारा बताती कि आज ये ऑपरेशन है, आज ये टीम आने वाली है, तो मैंने देखा कि जब हम परमात्मा के साथ अगर कनेक्शन अपना कराते हैं तो अगर आपकी गलती भी हो रही है तो उसको कैसे शुद्धि हो जाती हो, करेक्ट अपने आप हो जाती। तो ये मेरा एक पहला बहुत बड़ा एक रहा। सेकेंड एक्सपीरियंस मेरा ओली ट्रेनिंग के दौरान रहा कि जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट डे तो हमने जो साड़ी पे रैपलिंग की थी और सेकेंड डे हमारा जो रैपलिंग का ये हो रहा था, तो जो माउंटेन था उसकी हाइट काफी ज्यादा थी और जो हमें बांधा गया था पूरे, तो जैसे अभी मैंने रैपलिंग करना शुरू किया तो जो ये थे हम ये तो एकदम टाइट हो गए, जो रोप्स मुझे बांधे हुए थे ये एकदम टाइट हुए, जिसके कारण मैं ब्रीथ भी नहीं कर पा रही थी और मुझे लगा कि दिस इज माय लास्ट ईयर, और मैंने परमात्मा को अपने आप को ये कहा कि बस मैं अभी आपके इस पे आ रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। और मेरे मुंह से कैसे निकला उस समय कि उनको मैंने बताया कि सारे जन तो एकदम घबरा गए कि एकदम ये हो गई, तो मेरे मुंह से निकला कि मेरे ये बहुत टाइट है, इसको लूज करो, चेस्ट के इसको जो बांधा हुआ था ट्रैपलिंग के समय, और उन्होंने जैसे लूज किया तो मैं अपने आप

0: इतना इजीली उतर गई उस माउंटेन। तो मैंने देखा कि हर कार्य में अगर हम परमात्मा को साथ रखकर करते हैं तो हमारी हर कार्य कैसे इजी हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट उस समय सिचुएशन लगती है, लेकिन परमात्मा हमें बहुत इजीली उस गलतियों से या इससे हमें पार कर देता है। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है इस 30 साल में, लेकिन
1: जो दोनों अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया ना, उन दोनों अनुभव में एक चीज तो बहुत पक्की निकल के आती है कि अगर आपने ऊपर वाले को अपना साथी बनाया है तो फिर आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। और दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी स्पेशली वो ये कि आप निश्चिंत हो जाते हैं, फिर फिक्र नहीं होती है। और जब आप बेफिक्र होकर के कोई काम करते हैं तो उस काम की सफलता की गुंजाइश ज्यादा होती है। मैं समझता हूँ हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ सीखा है आपसे, और सेवा भाव, सेवा का जो आनंद है वो क्या होता है, वो तो आपके बातों से, आपके आवाज से ही हमें महसूस हो रहा है शुरू से, कि कैसे आप अपने सेवा के जीवन को बहुत दिल से पसंद भी करते हैं और लोगों को प्रेरणा भी देते हैं कि वो भी अपना जीवन ऐसा बनाए। जाते जाते हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे। आई होप यू आर रेडी फॉर इट।
0: ओके,
1: तो आपको एक शब्द में या एक वाक्य में ही इसका जवाब देना होगा, है ना? तो पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: सेवा वो है कि जिससे दूसरों को खुशी मिले।
1: तो क्या आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने किसी को केवल रास्ता ही बताया है तो क्या वो भी सेवा कहलाएगा?
0: और भी कह सकते हैं, आगे जाकर अगर वो अच्छाई पर ये हो जाता है तो वो आपको याद करता है कि आपने मुझे ये रास्ता बताया तो आज मैं इस पर उस स्थान पे हूँ। तो जिससे खुशी मिलते है, दुख दर्द हम उनका दूर करते हैं। नर्सिंग के भाषा में तो हम यही कहेंगे कि हमारे पेशेंट अच्छे होकर जाए, जिनका दुख दर्द दूर हो जाए, जिसको हम सेवा कहते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं और खुद ही हम टेंशन में आ रहे हैं, तो वो उसको हम सेवा नहीं कहेंगे।
1: जिस कार्य को करते हुए खुद भी हम खुश हो रहे हैं और सामने वाले को भी खुशी मिल रही है, वो सेवा है। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। सेवाधारी या जो सेवा करता है उसका डेफिनेशन क्या है?
0: मतलब निस्वार्थ भावना से, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, जो कार्य आप करते हैं उसको हम सेवाधारी कहेंगे।
1: तो अपेक्षा का डेफिनेशन क्या है?
0: अपेक्षा का माना ये है कि हमने किसी के लिए कुछ किया तो हमें लगता है कि उसने भी, हमने उसके लिए कुछ किया है तो उसने भी मेरा ये करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। मैंने उसके लिए ये हेल्प दी तो मुझे जब जरूरत पड़े तो वो और ज्यादा रीति से मुझे हेल्प करे, या मुझे सामने से होकर वो हेल्प के लिए ये करे, ऐसे नहीं।
1: भारत क्या है?
0: भारत हमारा देश है, हम उसके नागरिक है, जहाँ इतने सारे जाति सर्व है और इकट्ठे होकर हम अनेकता में, विविधता में भारत एक है। तो और हमें बहुत प्राउड है कि हम इस देश के नागरिक हैं, भारत के। और मेरे हिसाब से इस देश में परमात्मा का अवतरण होता है, ये भारत भूमि है जहाँ ऋषियों मुनियों ने तो सजाया हुआ है, सोने की चिड़िया जिसका वर्णन किया जाता था वसुदेव कुटुंब के लिए, भारत हमारा और भारत का राजयुग सारे विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसे हमारा भारत है। ये भारत की डेफिनेशन एक वर्ड या एक शब्द में नहीं हो सकती है।
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और नाम ही हमारे कार्यक्रम का है यशस्वी भारत, तो यशस्वी भारत का यशोगान तो एक शब्द में नहीं पूरा हो सकता। भारत का तो आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। मुझे जानना था कि एक शब्द में अगर आप बताना हो तो एक आदर्श नर्स कौन है?
0: आदर्श नर्स हम जो दिल से अपने पेशेंट्स की सेवा करें, ना समय को देखें, ना ही करें, और ना सिर्फ पेशेंट लेकिन पेशेंट के पूरे फैमिली को, पेशेंट एज अ होल हम जो देखते हैं उसको एक कराती हूँ।
1: सिस्टर रूपा कौन है?
0: एक तो नर्स ही, मैं सबसे पहले अपने आप को एक नर्स ही समझती हूँ, और मैं अभी भी हम यही कहते हैं कि एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि अगर मान लो इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो भी सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि पेशेंट को ट्रॉली से लेकर मैं इमरजेंसी में पहुंचाऊं। उस समय मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विसेज है, नहीं, दिस इज माय गिफ्ट। मेरा फर्स्ट ये है कि पेशेंट को प्रॉपर फटाफट उसको ये मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इन इमरजेंसी एज अ नर्स। उस समय पोस्ट पोजिशन वगैरह कुछ नहीं आती है, एज अ नर्स हमें ये।
1: तो मैं समझता हूँ आपने जो जवाब दिया उसको समझते हुए रूपा जो है वो एक सेवाधारी है, और जैसे कि आपको हम सब जानते हैं सिस्टर रूपा के नाम से, तो आप सबकी सिस्टर हैं और अथक हैं, निस्वार्थ सेवाधारी हैं और देश का गौरव है भारत देश।
0: और एक बार
1: आपके जैसे वीरांगनाओं की वजह से, आपके जैसे तपस्विनी आत्माओं की वजह से भारत बनता है। रूपा जी, आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, यशस्वी भारत कार्यक्रम रेडियो मधुबन की देन है, और रेडियो मधुबन को हम बार बार थैंक्स कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए इतने अच्छे अच्छे गेस्ट हर बार आते हैं इस कार्यक्रम में, जो न केवल अपने कार्य से बट अपने स्वरूप से, अपने चरित्र से देश को एक नई परिभाषा देते हैं।
0: शंतनु भाई, एक बात कहना चाहूंगी,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। अगर कोई एक मैसेज हो जो आप हमारे श्रोता साथियों को देना।
0: यही एक छोटा सा संदेश होगा कि कभी मेहनत से हमें डरना नहीं है, बहुत अच्छी से हमें मेहनत करनी है अपने कार्य के प्रति और बिना अपेक्षा से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें
1: ये छोटा संदेश नहीं है, ये छोटा संदेश बिल्कुल नहीं है, ये पूरे जीवन का सार है कि अपेक्षा रहित और श्रम से कभी भी परेशान नहीं होना है, मेहनत से डरना नहीं है, हमेशा सेवा पे तत्पर रहना। इट्स अ वेरी बिग मैसेज दीदी, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू, ओम शांति, नमस्ते।
1: रूपा जी तो आज हमारे बीच में हमें बहुत कुछ हमें उन्होंने अपने जीवन से सुनाया, स्पेशली वो बातें जो हम और आप कभी सोचते भी नहीं होंगे कि एक नर्स के जहन में कौन सी बातें चलती होंगी जब वो किसी की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। सेवा के लिए आगे बढ़ना, खुद को ऑफर करना, यही कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन आज रूपा जी से बात करते हुए पता चला कि इसमें भी बड़ा मजा है, इसमें भी बड़ा आनंद है, बहुत रोमांच है। कहां बॉम्बे में अपना जीवन शुरू करने वाली एक साधारण सी भारत की महिला अपने आप को सेवा के फील्ड में जब आगे बढ़ाती है तो वो भारत की पहली महिला नर्स और हाई एटीट्यूड रेस्क्यू मिशंस का हिस्सा बन जाती हैं। तो कहां राष्ट्रपति उन्हें सम्मान देते हैं, तो कहां एक राजस्थान के छोटे से गांव में कोई व्यक्ति जिसको सेवा या चिकित्सा का इतना समझ नहीं है, वो उन्हें अपने लाइफ में एक सेवियर की तरह, एक देवदूत की तरह देखता है। ये सब बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, और इन इंटरेस्टिंग बातों को हमारे साथ आज शेयर कर रहे थे सिस्टर रूपा, जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल के चीफ नर्सिंग मैनेजमेंट को देखने वाले चीफ नर्सिंग स्टाफ हैं। और रूपा जी ने हमारे साथ जिन बातों को शेयर किया उसका अगर सार समझे तो उन्होंने यही बताया कि श्रम से नहीं डरना है और अपेक्षा रहित लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहना है। इस मैसेज के बाद कुछ कहने को रहता ही नहीं दोस्तों, बस इतना ही कि आप रेडियो मधुबन 90.4 FM के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड यशस्वी भारत के लिए इंतजार में रहिए। थैंक यू सो मच। मैं आरजे शांतनु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अभी तक आपने बालक नरेंद्रनाथ का बालपन, उनका नटखट स्वभाव, चंचल परंतु भावुक हृदय और प्रखर बुद्धिमत्ता के बारे में जाना। उनकी स्वाभाविक नेतृत्व कला, उपस्थित बुद्धि, निर्भीकता तथा तर्कसंगत विचार के सभी कायल थे। उनका मन सैकड़ों सुंदर कल्पनाओं से पूर्ण था। हृदय स्नेह सिक्त, बुद्धि कुशाग्र, साहस अमित, अचिंतनीय उद्भावनी शक्ति, कार्यक्षमता असीम और उत्साह अदम्य था। और सबसे बढ़कर थी उनकी ईश्वर के प्रति उन्मुखता। जन्म से ही थे वे ध्यान सिद्ध। पूजा प्रार्थना आत्मानुसंधान में बचपन से ही उनकी रुचि और अधिकार थे। इस अनन्य असाधारण महापुरुष के जीवन का अनुध्यान करने से हम लोग देखेंगे कि ये सारी बातें अतिरंजित नहीं बल्कि सत्य की तुलना में बहुत कम हैं।
1: उम्र के छठे वर्ष में प्रवेश करते ही बालक नरेंद्र का विद्याभ्यास प्रारंभ हुआ। पाठशाला जाने के पहले दत्तवंश के कुल पुरोहित ने आकर नियमानुसार पूजा अर्चना कर नरेंद्र को पहला पाठ पढ़ाया। सरकंडे की कलम को दूध में डुबोकर स्लेट पर बंगला भाषा का पहला अक्षर अ लिखवाया और कहा,
2: कहो बेटा आ,
3: आ,
2: और ये है आ,
3: आ।
1: हो गया विद्यारंभ। दूसरे दिन से नरेंद्र धोती पहनकर सरकंडे की कलम और रस्सी बंधी दवात लेकर पाठशाला जाने लगे, पर ज्यादा दिन जाना नहीं हुआ।
0: माता पिता ने गौर किया कि नरेंद्र पाठशाला के साथियों से गलत भाषा सीख रहा है। उसके तौर तरीके भी बदलने लगे। स्कूल में हर सामाजिक स्तर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी बातचीत बोलचाल भी सब नए ढंग के होते हैं। सो माता पिता ने उन्हें और इस प्रकार के विद्यालय में रखना उचित नहीं समझा। घर पर ही एक कमरे में छोटी मोटी पाठशाला खोलकर वहां गुरुजी के हाथों अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। इस नई पाठशाला में कई रिश्तेदारों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे, इसलिए नरेंद्र को दोस्तों की कमी नहीं हुई। पर पाठशाला में पढ़ने के बावजूद माँ के निकट नरेंद्र जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वो बंद नहीं हुआ।
4: बेटा, तुम गुरुजी से बंगला तो सीख ही रहे हो, पर आज से मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना भी सिखाऊंगी।
3: क्यों माँ?
4: भाषा सीखना तो अच्छी बात है, अंग्रेजी राजभाषा है, उसे सीखना भी जरूरी है। फिर दूसरे प्रांत के लोगों से बातचीत करने में ये भाषा काम आएंगी।
3: ये कौन सी किताब है माँ?
4: ये प्यारी चरण सरकार का लिखा अंग्रेजी का फर्स्ट बुक है।
1: नरेंद्रनाथ के पढ़ने का एक अपना ही ढंग था। अध्यापक महोदय बगल में बैठकर पाठ पढ़ जाते और नरेंद्र आंखें मूंद कर लेटे लेटे उसे सुनते और इसी तरह सुन सुनकर उन्हें पाठ याद हो जाता।
0: उन दिनों उनके एक बुजुर्ग रिश्तेदार नृसिंह दत्त अपने पुत्र रामचंद्र दत्त के साथ नरेंद्रनाथ के घर में रहते थे। रात में नरेंद्र नृसिंह दत्त के साथ ही सोया करते थे। वृद्ध दत्त महोदय को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और उनकी धारणा थी कि कठिन विषयों को बचपन में सिखाने से बच्चे उन्हें आसानी से याद कर लेते हैं। सो वे रोज रात को नरेंद्र से बातें किया करते थे और उन्हें उनकी वंशावली, संस्कृत के श्लोक तथा स्रोत और संस्कृत व्याकरण के सूत्रों को याद करवाते थे। इस तरह नरेंद्र को बचपन में ही संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का ज्ञान हो गया था। वे टूटी फूटी अंग्रेजी और संस्कृत भी बोलने लगे थे और बांग्ला तो उनकी मातृभाषा थी ही।
1: सन 1871 में जब वे 8 वर्ष के थे, उन्हें ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में भर्ती करा दिया गया। विद्यालय के शिक्षकगण एवं एक एक करके सभी उनकी बुद्धिमत्ता से उनकी ओर आकृष्ट हुए। पर एक दिन कठिन समस्या उठ खड़ी हुई। नरेंद्र ने अचानक अंग्रेजी भाषा सीखने से मना कर दिया। सभी लोगों ने बहुत समझाया कि आजकल अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, नहीं सीखने से काम नहीं चलता। यहाँ तक कि वृद्ध नरसिंह दत्त महाशय ने भी समझाया, पर नरेंद्र की प्रतिज्ञा नहीं टली। इस तरह कुछ दिन चलता रहा। अंततः उन्होंने दत्त महाशय की बात मान ली और नए उत्साह से अंग्रेजी भाषा सीखने लगे। इतिहास और संस्कृत भी उनका प्रिय विषय रहा, पर

0: सकते हैं। सभी खेलों में वे अगुआ थे। कभी कभी विद्यालय का कक्ष ही खेल का मैदान बन जाता। बच्चों में झगड़ा हो जाने पर वे ही मध्यस्थता करते। दो दलों में मारपीट हो जाती तो बीच में पड़कर वे ही दोनों दलों को अलग कर देते। ऐसा करते वक्त उन्हें भी एक दो घूसे पड़ जाते, पर वे खुद भी मुक्केबाजी में प्रशिक्षित थे, इसलिए अपना बचाव कर लेते थे। स्वयं वे मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।
1: बहुत जल्दी पाठ याद करके वे क्लास में ही दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगते थे। शिक्षक के क्लास में आकर पढ़ाना शुरू कर देने के बाद भी वे कहानी सुनाने में ही मशगूल रहते। रामायण महाभारत के कोई मजेदार प्रसंग छेड़ देते और बाकी दोस्त पाठ भूलकर उन्हें ही सुनते रहते। एक बार फुसफुसाहट से चिढ़कर एक शिक्षक छात्रों से पाठ पूछने लगे। कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी चुप रहे, परंतु नरेंद्र का मन दो तरफा था। कहानी सुनाते सुनाते भी वे शिक्षक की बात सुन लेते थे, इसीलिए शिक्षक ने जब नरेंद्र से पाठ पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। शिक्षक ने पूछा कौन बता रहा था, सब ने नरेंद्र की ओर उंगली उठाई, पर शिक्षक ने विश्वास नहीं किया और नरेंद्र को छोड़ सबको बेंच पर खड़ा कर दिया। नरेंद्र भी खड़ा हो गया।
2: बेटा तुम्हें खड़ा होना नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ।
3: नहीं, मुझे भी खड़ा होना होगा क्योंकि मैं ही तो बात कर रहा था।
0: एक रास्ता उन्हें भाती नहीं थी। बालक नरेंद्र पढ़ाई के साथ साथ नित नए खेल या मनोरंजन का साधन ढूंढते रहते। उन्होंने एक नाटक दल का गठन किया और वे पूजा घर के सामने के बरामदे में घर में नाटक खेला करते। पर एक चाचा ने आपत्ति की तो उन्होंने आंगन के एक किनारे व्यायाम का अखाड़ा बना लिया। मित्रों के साथ वहां वे नियमित व्यायाम करते। एक दिन एक चचेरे भाई का व्यायाम करते समय गिरकर हाथ टूट गया। चाचा ने नाराज होकर व्यायाम का सारा सामान तोड़ दिया। दुखी होकर नरेंद्र ने पड़ोस के नवगोपाल बाबू के जिम्नास्टिक के अखाड़े में नाम लिखाया। वहां उन्होंने लाठी भांजने, तलवार चलाने, नाव खेने, तैरने, कुश्ती तथा अन्य व्यायामों में दक्षता प्राप्त की। एक बार मुक्केबाजी में प्रथम पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक चांदी की तितली मिली थी। लाठी भांजने में बालक नरेंद्र को बड़ा मजा आता था। अखाड़े में और अखाड़े के बाहर कुछ मुस्लिम उस्तादों से उन्होंने इस विद्या में महारत हासिल की थी।
1: जब उनकी उम्र महज 10 साल की थी, स्कूल में खेल प्रतियोगिता चल रही थी। नरेंद्र ने लाठी भांजने वालों को ललकार कर कहा,
3: मेरे साथ कोई खेलने को तैयार है? कोई भी चलेगा।
1: सबसे बलवान और अधिक उम्र का एक खिलाड़ी आगे आकर बोला,
4: तू ललकार रहा है, तेरी उम्र ही क्या है?
3: अरे उम्र से क्या होता है, साहस हो तो आगे आओ।
4: अरे सुनो, इस बच्चे की बात तो सुनो। ला रे, एक लाठी तो दे, मैं भी इसकी छुट्टी कर देता हूँ।
3: नरेंद्र क्या पागल हो गया है, इस पहलवान से तू क्या लड़ेगा, हार जाएगा रे। पहले से ही हार मान लूं, देखूं तो आजमा कर।
4: शाबाश नरेंद्र, क्या पैतरा कसा है। अरे देखो तो, ये छोटा सा लाडला अरे बराबरी से लड़ा जा रहा है, पर हार तो निश्चित है।
0: नरेंद्र ने पैतरा बदलते बदलते अचानक कुशलता पूर्वक हा की आवाज करते हुए प्रतिद्वंदी पर एक ऐसा प्रचंड आघात किया कि उसकी लाठी दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई।
3: ये लो, संभालो।
4: अरे वाह नरेंद्र, वाह क्या मारा है।
5: अच्छी शिक्षा पाई तूने नरेंद्र, तेरी शिक्षा सार्थक हुई।
1: वे अपने मोहल्ले के सबसे प्रिय पात्र थे। वे उन लोगों को मामा, छोटे चाचा, फूफा, मौसी, माँ, दादा, दादी, दीदी, भाई या बहन कहकर पुकारते थे। सबसे बुरे वक्त में वे ही सबसे पहले पहुंचकर उनकी मदद किया करते थे। उनके हास परिहास से बुजुर्ग भी बिना हंसे नहीं रह पाते थे। सभी के घरों में वे निसंकोच आते जाते थे। पिता ने उन्हें एक छोटा सा घोड़ा खरीद दिया था। घुड़सवारी में दक्ष हो जाने पर रोज शाम घोड़े पर चढ़कर घूमने जाना उनका शौक था।
0: सभी दोस्त नरेंद्र को बहुत चाहते थे, प्यार करते थे। वे भी सभी से इतना घुल मिलकर बातें करते थे कि सभी बच्चे समझते थे।

0: कि नरेंद्र उसे ही सबसे ज्यादा चाहता है।
1: एक बार एक पड़ोसी बुजुर्ग ने नरेंद्र से कहा,
2: अरे नरेंद्र, हमेशा मैं तुम्हें घूमते घामते या खेलते ही देखती हूँ, कभी पढ़ता लिखता भी है तू?
3: ताई जी, मैं दोनों ही काम करता हूँ।
0: बात सही निकली। परीक्षा में नरेंद्र ने सभी प्रश्नों का जवाब ठीक दिया। कविता, इतिहास, भूगोल, अंक, गणित, भाषा, सभी में अव्वल नंबर मिले। परीक्षक ने खुश होकर पूछा,
4: नरेंद्र, सुना है तुम्हारे पिताजी आजकल लाहौर गए हैं, तो तुम्हारी देखभाल कौन करता है?
3: जी हाँ, पिताजी लाहौर में हैं, पर माँ तो यही है और वो ही मुझे क्या करना होगा वो समझा देती है, और पढ़ाई तो मैं स्वयं करता हूँ।
4: बहुत अच्छा बेटा, ऐसा ही करते रहना, भविष्य में तुम जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे।

0: संन्यास के प्रति नरेंद्र को बचपन से ही अनुराग था। वे हमेशा सोचते रहते कि मौका मिलते ही वे सन्यासी बन जाएंगे। अक्सर ये बातें वे स्कूल के दोस्तों से कहते थे।
1: तुम लोग देख ही ना, बड़ा होकर मैं सन्यासी बनूंगा। क्यों? ये देखो ना, मेरे हाथ में सन्यासी बनने की रेखा मौजूद है।
2: तुझे कैसे पता ये कौन सी रेखा है?
1: मुझे एक साधु ने कहा है।
0: फिर कल्पना के सहारे वे कहते जाते सन्यासी गण कैसे हिमालय जाकर तपस्या करते हैं।
1: हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ बर्फ से ढकी और उसमें गुफा के अंदर सन्यासी धुनी जलाकर ध्यान करते हैं।
2: वो क्या खाते हैं नरेन?
1: वो लोग तो फल फूल खाकर ही गुजारा करते हैं। पहाड़ों के जंगल में अनेक फलों के पेड़ हैं, वही तोड़ के खाते हैं। अगर मैं हिमालय में भी ना जाऊं, तो जंगल में झोपड़ी बना के रहूंगा और वही तपस्या करूंगा।
2: तुझे डर नहीं लगेगा? जंगली जानवर आ जाए तो क्या करेगा?
1: अरे जंगली जानवर कभी सन्यासियों पर हमला नहीं करते, और वैसे भी अगर तुम जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओ, तो वे भी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप निकल जाएंगे।
2: अच्छा?
1: हाँ, तभी तो कौपीनधारी जटाजूट वाले सन्यासी गण फल फूल खाकर भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं।

0: उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके स्वभाव में एक परिवर्तन आया। वे पुस्तकों के अध्ययन, समाचार पत्रों के अध्ययन, सभा समितियों में उपस्थित रहने में रुचि दिखाते रहे। उनकी याददाश्त बहुत ही प्रखर थी, इसीलिए सभाओं से लौटकर साथियों को भाषण का सार तत्व कह देते थे और उन विषयों पर आलोचना भी करते थे।
1: उनका सौंदर्य बोध भी अपूर्व और मौलिक था। एक दिन एक दोस्त को गाते सुनकर उन्होंने कहा था,
2: सुर और ताल ही संगीत का एकमात्र अंग नहीं है। अगर कोई नकियाते स्वर में गाए तो क्या अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। गीत के भाव को भीतर से फूट पड़ना चाहिए, शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और सुरताल तो ठीक होना ही है। जो संगीत श्रोता के मन में अनुरूप भाव जगा नहीं पाता, वो संगीत संगीत ही नहीं है।
0: सन 1877 में जब नरेंद्र तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, उनके पिता विश्वनाथ काम के सिलसिले में उत्तरी और मध्य भारत में जाया करते थे। एक बार जब वे मध्य प्रदेश के रायपुर में थे तो कई महीनों के बाद उन्होंने अपने परिवार को रायपुर ही रहने के लिए बुला लिया। उन दिनों इलाहाबाद और जबलपुर होकर ट्रेन नागपुर तक जाती थी। नागपुर से रायपुर तक बैलगाड़ी में सफर करना पड़ता था, उसमें 15 दिनों से भी ज्यादा का समय लग जाता था।
1: ये सफर नरेंद्र के जीवन का यादगार सफर रहा। उनके साथ माता भुवनेश्वरी, बहने और दो छोटे भाई थे। एक दो नौकर भी साथ चल रहे थे। नरेंद्र बैलगाड़ी में बैठकर दोनों ओर के जंगल और पहाड़ों की शोभा देखकर

0: पहाड़ी गुफा में उन्होंने मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता देखा था। देखते देखते बालक नरेंद्र ध्यान मग्न हो गए। मधुमक्खियों का विशाल साम्राज्य, उनका संगठन, कार्यक्षमता और अनुशासन की बातें सोच सोचकर उन्होंने कई सीख ले ली थी। रायपुर में अच्छे विद्यालय नहीं थे, अतः नरेंद्र अपने पिता के पास ही पढ़ते थे। पिता उन्हें सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं देते थे, पुत्र के बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न विषयों का विवेचन भी किया करते थे। दोनों में बहस छिड़ जाती और पिता पुत्र से हार मानने को भी तैयार रहते। वहाँ कई विद्वानों का आना जाना होता था, कई विषयों पर आलोचनाएं होती थी। बालक नरेंद्र हमेशा वहाँ बैठे ध्यान पूर्वक सबकी बातें सुना करते थे और मौका पाकर अपना विचार भी व्यक्त करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और वैचारिक क्षमता का परिचय पाकर बुजुर्ग चकित हो जाते और उसे बालक समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। एक दिन नरेंद्र ने ऐसी ही एक सभा में बंगला के विख्यात लेखकों के गद्य एवं कविताओं का उदाहरण देकर पिता के विद्वान दोस्तों को चकित कर दिया था।
1: बालक नरेंद्र बहुत ही आत्मसम्मानी थे। छोटा समझकर कोई उनकी उपेक्षा करे, ये वे सहन नहीं कर पाते थे। एक बार उनके पिता के एक मित्र के उनकी अनावश्यक अवमानना करने पर नरेंद्र ने सोचा, जब मेरे पिता मुझे तुच्छ मानकर अवहेलना नहीं करते तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उस सज्जन से विनम्रता पूर्वक कहा,
2: आपकी भांति ऐसे अनेक लोग हैं जो सोचते हैं कि किसी की कम उम्र होने पर उसमें ज्ञान विचार नहीं होता, किंतु ये धारणा बिल्कुल

0: उस सज्जन ने देखा कि नरेन आहत सर्प की भांति क्रुद्ध हो गए हैं और उनसे बात करने को भी तैयार नहीं, तो वे अपनी गलती मानने को विवश हो गए।
1: रायपुर में रहते समय उन्हें परिवार का भरपूर साथ मिला। वे अक्सर पिता के साथ खाना पकाते थे और इस तरह पाक कला में निपुण हो गए। एक और विद्या उन्होंने रायपुर में सीखी थी, शतरंज खेलना। ये खेल उन्हें बहुत पसंद आया, बहुत ही ध्यान लगाकर खेलते थे। इस छोटे से बालक के द्वारा शतरंज की गहरी चालों को चलाते देख सभी अचंभित हो जाते थे। नरेंद्र ने कई दिग्गजों को हराया था।
0: बालक नरेंद्रनाथ को कभी कभी इंद्रियातीत अनुभूतियां हुआ करती थी। किसी वस्तु या व्यक्ति को पहली बार देखकर उन्हें लगता था कि उन्होंने पहले भी उन्हें देखा है, पर कुछ याद नहीं कर पाते थे। लोगों से विचार विमर्श करते वक्त उन्हें लगता था कि पहले भी तो ये बातें सुन चुके हैं, पर याद नहीं कर पाते थे कि कहां सुन चुके हैं। बाद में जब वे पुनर्जन्मवाद से परिचित हुए तो उन्हें लगा कि ये सब बातें शायद उनके पिछले जन्मों में घटी थीं, जिनकी आंशिक स्मृति इस जन्म में उन्हें रह रहकर याद आती। पर बाद में उन्होंने समझा कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। उनका बालक मन इन्हीं विषयों में उलझता रहता था। उनके पिता ने भी उन्हें समझा बुझाकर उन उलझनों से उनके मन को मुक्त किया।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति, शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति, किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली, चोरी चोरी मुख मोरी, मोरी मुस्काए अलबेली, कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बांह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी, भोली परी हरी बोली।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी अभी तक तो हम बहुत सी चीजों को मैनेज कर रहे थे, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे थे, लाइफ को मैनेज कर रहे थे, अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, अपने प्रोफेशन को मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब खुद के ऊपर नजर गई तो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में समझा और अपनी सही पहचान करते हुए क्या वो सिचुएशंस हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, इस पर कई सारी बातें हम कर चुके हैं। आज भी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर पिछली कड़ी को हम देखें सिस्टर शिवानी, तो कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए थे कि जब सिचुएशन आ जाती है तो एक छोटा सा रिकैप लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाई एक्चुअली वी नीड टू मैनेज द सेल्फ।
1: वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम के परिस्थितियां बहुत सारी हैं हमारे सामने जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक ही चीज है जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज माई रिस्पॉन्स। सो वी शिफ्टेड द फोकस के सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय क्यों ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें तो सिचुएशन अपने आप संयम में आ जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ एक बातों के बारे में हमने विचार किया। एक था साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जो हम उलझन कहते हैं, बहुत उलझन है क्योंकि हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो अगर हम एक मिनट निकाल के भी स्टेप आउट करें कि जो ड्रामा चल रहा है उसको यहां से न देखने की बजाय एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें हर एक एक्टर का रोल बहुत क्लियर दिखाई देगा और सिचुएशन जैसी है वैसे दिखाई देगी। और फिर जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वही प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो साक्षी दृष्टा वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा डिटैच्ड होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन मुझे नहीं कंट्रोल कर रही है, मेरा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन जब हम उसमें उलझे हुए थे कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। सो जैसे कि कई बार होता है ना, बहुत केओस हो रहा है, लेट्स से ऑफिस

0: मिनट एक्यूरेटली आप करो। अब होता क्या है, सपोज 9 to 10 इन द मॉर्निंग मेरा कुछ हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 10 o'clock अगर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो मेरा 10 to 11 ऑटोमेटिकली ठीक बीतेगा। लेकिन अगर मैंने वो 1 मिनट 10 o'clock पे नहीं निकाला है तो मेरा 9 to 10 जैसा बीता होगा तो वो 10 to 11 पर इन्फ्लुएंस करेगा, फिर 10 to 11 भी थोड़ा अच्छा नहीं बीतेगा तो वो 11 तो somehow
1: 5 बजे तक तो स्टेज जब कुछ नहीं हो पाएगा।
0: फिर जबकि हम शाम को घर पहुंचते हैं तब तक तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं ना डायरी रखते हैं कि 9 to 10 ये करना है, 10 to 11 ये करना है, तो जैसे आप ऐसी डायरी बनाते हो तो एक कॉलम और भी साथ में ऐड करो, 9 to 10 क्या फील करना है, व्हाट टू डू इज 1 कॉलम, 9 to 10 व्हाट टू डू एंड व्हाट टू फील, 10 to 11 कैसा फील करना है,
1: पावरफुल, लवफुल,
0: एंड बेसिकली एवरीवन वांट्स टू फील हैप्पी। अगर आप किसी से भी पूछो क्या चाहिए तो 1 unanimous वर्ड इज खुशी चाहिए। तो हम और आप, इट्स अमेजिंग, आप यू आस्क एनीवन टुडे कितने दिन खुश रहना चाहेंगे, कहते 365 days। अच्छा पूरे दिन में कितनी बार, कहेंगे हर मिनट। तो प्योर डिजायर है कि मैं जीवन का पल पल खुशी में बिताऊं, और कर रहे हैं ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ। तो जैसे आप अपनी डायरी को टिक करते जाते हैं कि 9 to 10 ये काम हो गया, 10 to 11 ये काम हो गया, तो सेकंड कॉलम को भी चेक करें कि वो 9 to 10 आप जो अनुभव करना चाहते थे, खुशी का, स्टेबिलिटी का, वो किया या सिर्फ काम किया। और काम के साथ इधर फीलिंग दर्द वाली तो नहीं क्रिएट हो गई थी, लेट्स से आपका कल बच्चों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चों की स्टडी आपके लिए कंसर्न बनी हुई है एंड इट्स देयर ऑन योर माइंड, या आपके घर में फैमिली में कोई किसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इट्स ऑन योर माइंड। अब आप काम तो कर रहे हैं, आप टिक करते जाएंगे, ये काम हुआ, ये काम हुआ, मन की स्थिति क्या थी पूरा दिन, हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सिर्फ काम किया काम किया काम किया लेकिन सारा दिन दर्द में बीता, हाउ फेयर इज इट। क्योंकि डे बाय डे फिर जीवन ऐसे तो बीत ही रहे हैं, फिर पूछो कैसे चल रहा है, कहेंगे चल रहा है, चल रहा है। एंड देन समवेयर जो एक बहुत डीप रूटेड सभी के अंदर आज सेट होता जा रहा है कि दिस लाइफ इज नॉट वेरी इंजॉयबल, इट इज मोर लाइक चल रहा है, इट्स मोर लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम सिर्फ पूरा करते जा रहे हैं। और उसका रीजन सिर्फ एक है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इट्स नॉट दैट खुशी इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी मच पॉसिबल, और इसीलिए हर एक के अंदर ये डिजायर है कि मैं खुश रहूं, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप में कल्टिवेट हो जाएगी। आपने पूरी जो अपॉइंटमेंट डायरी बनाई, आप उस पर काम करते हैं तब तो वो आप एक एक टास्क अचीव कर पाते हैं, सिर्फ डायरी बना दी और किया नहीं तो हो जाएगा क्या? सिर्फ सोचने से कि मुझे ये करना तो वो अपने आप हो जाएगा,
1: करना तो पड़ेगा,
0: करना तो पड़ेगा ना। तो नाउ एवरीवन, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, करेंगे क्या उसके लिए, एक मिनट निकालेंगे उसके लिए, हाँ करेंगे, फिर करते नहीं। तो अनलेस वी डू इट वो अपने आप तो नहीं आने वाला। तो इसलिए मॉर्निंग में जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, 10 मिनट्स भी अगर अपने से निकालते तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं आपसे मेडिटेशन आगे हो रहा, परमात्मा से भी अभी तक कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, अपना दिन तो प्लान कर सकते हैं ना, दिन की प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ आज मुझे कैसा फील करना है पूरा दिन। तो वो थॉट हम सुबह सुबह क्रिएट करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, चाहे आज कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ गई, आई विल क्रॉस इट विद स्टेबिलिटी, आई एम पावरफुल, यू नो दिस इज अ थॉट आई हैव टू कीप गिविंग माई सेल्फ। फिर सुबह सिर्फ दिया लेकिन फिर सारा दिन फिर सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, इसलिए वो एक घंटे के बाद एक मिनट, वो बहुत बहुत वैल्यूबल है। सो वो एक मिनट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके नेक्स्ट आवर पर भी यू नो प्रभाव पड़ता है। अगर हम ये एक एक मिनट निकालें हर घंटे के बाद तो हम सारा दिन हमारी स्थिति कैसे रहेगी, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट शाम को घर पहुंचेंगे तो कैसी स्थिति,
1: हम उस हालत में नहीं होंगे जिसमें हम थके हुए होते। इनफैक्ट फिजिकली हम जितना भी थके हुए हों, हम इमोशनली और मेंटली इतने ड्रेन्ड आउट होते हैं।
0: एक्चुअली फिजिकली हम बहुत ज्यादा नहीं थक रहे, आज क्या हमारा वायुमंडल है, अच्छे अच्छे हमारे ऑफिस है, एसी गाड़ी में हम ऑफिस जाते हैं, एसी ऑफिस में हम बैठे हैं, कम्फर्टेबली बैठे, कोई फिजिकल तो बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं। ये जो थकावट की फीलिंग है, इट्स मोर हियर, क्योंकि इमोशनली और मेंटली हम थोड़ा सा ड्रेन आउट

0: जाते हैं क्योंकि एनर्जी की वेस्टेज बहुत हो रही है, क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ वो एनर्जी डिप्लीट होते जा रही
1: है। शिवानी, वी शुड ट्राई टू टेल एवरीवन, हम सब आज संकल्प करें, मैं तो आज अभी इस एपिसोड के बाद एक घंटे के बाद का अलार्म लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये ट्राई करके देखे कि एक हफ्ता कम से कम हर एक घंटे बाद हम ये एक पॉजिटिव थॉट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एक मिनट में हमने परिस्थिति का चिंतन नहीं करना है, हमने उस एक घंटे को भी नहीं देखना है,
0: अपने दर्द का भी चिंतन नहीं करना है।
1: वही तो कर रहे होते हो, तो ना परिस्थिति का चिंतन, ना अपने दर्द का चिंतन, और ना ही एक घंटे को भी देखें, सिर्फ अपने आप को ये कहें वो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं कि मैं कौन हूं, और अपनी वो स्ट्रेंथ जो है वो अगले घंटे के लिए भी अपने आप को।
0: इट्स बेसिकली लाइक अ चार्जिंग। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो पहले मोबाइल सुबह चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो सारा दिन में तो डिस्चार्ज हो जाता है।
1: बार हमें हाँ।
0: तो अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, चार्जर अपने साथ रखना शुरू किया ना। अब आप कहीं भी जाओ हर जगह चार्जर लगे हुए हैं, विच इज वेरी गुड। ऑफिस में भी आप जाओ, चार्जर भी लगा है, फोन उसी के साथ लगा हुआ है, तो शाम को जब आप घर पहुंच रहे हैं, आप घर ड्राइव करके जा रहे हैं, आपका फोन फुल्ली चार्ज है। पहले क्या होता था, घर पहुंचने के टाइम वापसी पे वो फोन कई बार डिस्चार्ज हो जाता था, तो जब आपको चाहिए था वो, आप कहीं रास्ते में अटक गए, यू डिडंट हैव इट। सिमिलरली हियर, अगर आप सारा दिन में बहुत डिस्चार्ज हो गए, शाम को जब आपको वो एनर्जी चाहिए, आप घर पहुंचे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, सिर्फ वही टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, उसमें हम हमेशा हर रोज कैसे होते हैं,
1: डिस्चार्ज।
0: दैट इज दी ओनली रीजन जो हमारे आज घर पे रिलेशनशिप्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी जब घर पहुंचते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वो शाम तक डिस्चार्ज की स्थिति में होता है।
1: और इनफैक्ट जो घर पे हैं
0: वो भी
1: डिस्चार्ज हो चुके होते हैं, एंड देन जैसे कि मैं सारा दिन का थका हारा आया हूं, वो कहते हैं कि मैं सारा दिन वेट करती रही, मैं सारा दिन घर पे बैठी रही, तो वो वहां टकराव जो है वो ओहो।
0: अब तो पूरी इवनिंग जो है ना आपकी 7 to 10 या जितना भी टाइम आप घर पे हैं वो डिस्चार्ज स्थिति में है, फिर आप रात को सोए, चार्ज हुए, सुबह आप फ्रेश हैं, आप ऑफिस चले गए, फिर घर पे आए,

0: हमें प्यार चाहिए। आज मेहनत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन खुशी का पैरामीटर, घर में आपस में विश्वास का पैरामीटर, प्यार का पैरामीटर, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा और ही घटता जा रहा है, जस्ट बिकॉज द प्रायोरिटी वॉज नॉट राइट। एंड जब हम ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ घंटे कि भाई वर्क को 14 घंटे दिए तो सेल्फ को 2 घंटे देना, नहीं, इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए कि जब तक मैं हेल्दी नहीं हूं मेरी फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती, और जब तक मैं और फैमिली हेल्दी नहीं है मैं काम के क्षेत्र में भी जस्टिस नहीं कर सकता। तो मुझे पहले अपने को हील करना पड़ेगा, मैं ठीक हो गया, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होकर मैं ऑफिस गया, नाउ आई विल बी डूइंग जस्टिस टू वर्क, एंड जितना काम मुझे करना है 100% गारंटी इट विल गेट डन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। हम काम कर रहे हैं, यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेपर पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मन कहां पर है?
1: वहां क्या चल रहा होगा?
0: अगर घर पे नहीं भी है, ऑफिस में कोई ना कोई बात हो जाती है सारा दिन, और मेरे अंदर ताकत तो है नहीं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो काम भी कर रहे हैं, मन ऐसा क्यों, ये क्यों, आगे कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं, सो एम आई डूइंग फुल जस्टिस टू वर्क। इवन काम के क्षेत्र में फुल कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहां पे स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो स्टेबिलिटी तब होगी जब सेल्फ पे काम किया होगा, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं हमारा सारा टाइम काम पे है। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो राइट सेट करनी है, पहले मैं ठीक तो परिवार ठीक है फिर अब मैं काम पे जाता हूं, देन एवरीथिंग विल बी मोर यू नो फ्लोइंग एंड वेरी स्मूथ एंड आई विल एंजॉय एवरीथिंग आई एम डूइंग। नहीं तो मैं तीनों को एंजॉय नहीं कर रहा, तीनों जगह ही कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे।
1: पर मजे की बात तो ये दिख रही है कि सेल्फ पे काम करने के लिए आपको उतने 14 घंटे नहीं चाहिए।
0: एक मिनट, एक घंटे के बाद एक मिनट, इट जस्ट दैट इट लुक्स टू सिंपल, लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखना पड़ेगा। वो सुनते में इतना इजी लगता है कि समवेयर
1: हमने कर लिया,
0: हाँ, एंड मेजोरिटी बोलते हाँ हम तो जरूर कर लेंगे, लेकिन वो करना पड़ता है, विधि पूर्वक करना पड़ता है। कई कॉरपोरेट हाउसेस में जब उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ऑफिस में जैसे स्पीकर्स लगे हुए हैं एंड लिटिल लाइट म्यूजिक, यू नो मेडिटेशन म्यूजिक हर घंटे के बाद बजता है एक मिनट के लिए, रिमार्केबल रिजल्ट, पूरा एनवायरमेंट ऑफिस का ठीक हो जाता है, एंड क्योंकि लोगों को एक रेस्ट मिलता है। यू नो इवन ऑफिस में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको वो एक मिनट में क्या क्रिएट करना है, पॉज, उनको वो भी नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ वो म्यूजिक बजता है एंड दे जस्ट स्टॉप एंड रेस्ट। वो रेस्ट भी बहुत काम करता है।
1: आई नो जिस भी चीज में है आप, इनफैक्ट अगर हम देखें
0: क्योंकि वो वन मिनट वो डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है
1: कि सब चीजों से एक मिनट का,
0: जैसे स्कूल में बच्चे हैं आपका एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर होता है, टेक दैट वन मिनट, नहीं तो वो एक मिनट जो एक टीचर क्लास से बाहर जाएगी और दूसरी टीचर आएगी, अगर वो एक मिनट आप स्टेबल हो जाएंगे आप पिछले सेशन को भी ठीक से अब्सॉर्ब कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी होंगे। नहीं तो एक लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो एक एक टीचर आकर समवेयर हियर इट हैज नॉट गॉट अब्सॉर्ब प्रॉपरली, और फिर घर जाके बहुत स्टडी करना पड़ता है फिर से, सो दैट वन मिनट जो बीच में मिलता है इट्स वेरी वैल्यूएबल, इसको करके देख सकते हैं।
1: तो सिस्टर शिवानी आज जो हमारे सामने बात आई कि एक मिनट का रेलिवेंस को हमने सोचा, और अभी तक हम ये कहते थे कि एक मिनट क्या है, आपको हम दूसरों के साथ कितना वक्त गुजार रहे होते हैं, तो वो एक मिनट जो मुझे एम्पावर करेगा, और उसमें भी बहुत जो सही बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं क्या सोचना है, इट्स ओनली कि हमें वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके अपने आप को एम्पावर करना है, और वो ट्राई करके देखें, बार बार हमारी कोशिश रहती है, हम कहें कि अनुभव से बड़ा जो है वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, मतलब जब तक हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे उससे गुजरते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओम शांति। तो चलिए एक बार फिर बॉल हमारे कोर्ट में है, हमें तय करना है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे लेकर जाना चाहते हैं, एंड लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने तो अब तय कर लिया है कि मैं इस एपिसोड को खत्म करते ही जरूर अलार्म लगाऊंगी, एक घंटे बाद सिर्फ एक मिनट, एक मिनट, आप किसी भी जगह पे हो, आप अपने घर पे हो, हाउसवाइफ हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, और इनफैक्ट जहां हमें परिवर्तन आने लगेगा आसपास का माहौल अपने आप परिवर्तित होगा, और उसमें भी हमें यह याद रखना है कि हमने थॉट क्या क्रिएट करना है। लेट्स ट्राई इट आउट, और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज आपसे हम यहीं विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि आप हमसे फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है

0: त्याच सोबत
1: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
2: पहला नशा पहला खुमार।
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
3: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम लड़ेंगे साथी जिंदगी के लिए, कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे कि जब तक लड़ने की जरूरत है। इसी जज्बे के साथ शुरू हुआ हमारा स्वाधीनता आंदोलन, जो इतिहास के पन्नों में अनगिनत वीरों के बलिदान की अमर कहानी लिख गया। मालवा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नगर है धार, जो कभी राजा भोज की राजधानी हुआ करती थी। इसी के पास एक छोटी सी रियासत थी अमझेरा। रियासत में लगभग 2,08,000 बीघा कृषि भूमि थी और उसके भू राजस्व से राज्य को 1,32,000 रूपये की आय हुआ करती थी। अमझेरा राज्य में लगभग 36 सरदार थे जो राजस्व वसूली का काम करते थे। 1818 में मालवा क्षेत्र जब अंग्रेजों के अधीन आया तो अंग्रेजों ने रियासतों से वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया। सर जॉन मेलकम की मध्यस्थता के जरिए अमझेरा के शासक ने दौलत राव सिंधिया को सालाना 35,000 रूपये देना स्वीकार किया था। कंपनी की गारंटी के तहत ये तय हुआ था कि अब सिंधिया अमझेरा रियासत में अपने सैनिक नहीं भेजेगा और उसके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार अमझेरा के शासक स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। राजा बख्तावर सिंह सन 1854 में अमझेरा की गद्दी पर बैठे। अमझेरा राज्य के अंतर्गत भोपावर में ब्रिटिश सरकार ने एक एजेंसी स्थापित की और वहां पॉलिटिकल असिस्टेंट और भील एजेंट का मुख्यालय रखा गया। ये एजेंसी आसपास की छोटी रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए स्थापित की गई थी। 1857 के विप्लव की खबरें मिलने के बाद धार और अमझेरा राज्य में कंपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह की तैयारी शुरू हो गई थी। 1 जुलाई सन 1857 को इंदौर में विद्रोह हो गया। ये खबर मिलते ही अमझेरा के राजा ने अपने पेशेवर सैनिकों के साथ सरदारपुर और भोपावर के ऊपर धावा बोल दिया। 2 जुलाई को राजा बख्तावर सिंह ने यूनियन जैक को अपने हाथ से हटा दिया। विद्रोहियों ने अंग्रेजों के बंगलों को तहस नहस कर दिया। इससे आतंकित होकर वहां से यूरोपियन परिवार बैलगाड़ियों में बैठकर झाबुआ की ओर निकल गए, जहां के राजा ने उन्हें शरण दी। इस समय लगभग पूरा मालवा विद्रोह में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। धार की रानी जीजाबाई भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी। उस समय अमझेरा के विद्रोही राजगढ़ के भील विद्रोहियों के साथ साथ मंदसौर के विलायतियों के सीधे संपर्क में थे। इन गतिविधियों से अंग्रेज सरकार तिलमिला उठी, क्योंकि भोपावर और सरदारपुर की मालवा भील कोर ने भी अमझेरा के राजा को पूरा सहयोग दिया था।

अपने क्षेत्र से अंग्रेज अधिकारियों को भगाने के बाद राजा बख्तावर सिंह और अधिक गतिशील हुए। उन्होंने 28 सितंबर 1857 को एक बड़ी लड़ाई की योजना बनाई। 10 अक्टूबर को राजा ने धार की रानी के साथ मिलकर अमझेरा और धार में एक ही दिन भोपावर की सरकारी फोर्स पर हमला कर दिया, जहां इंदौर और रतलाम की फोर्स तैनात थी। विद्रोहियों के आक्रमण के सामने सरकारी सैनिकों ने नाम मात्र का विरोध किया और वे भी विद्रोहियों के साथ मिल गए। भोपावर में लड़ाई के बाद विद्रोहियों ने घोषणा की कि वे मानपुर तथा मंडलेश्वर जाने की योजना रखते हैं। बड़ौदा के रेजिडेंट ने 31 अक्टूबर 1857 के पत्र में लिखा,

कि ये विद्रोही मंदसौर लूटने के लिए जा सकते हैं तथा दोहद और गोधरा भी विद्रोहियों से भरा पड़ा है। उस समय विद्रोहियों में इतना जोश था कि वे महू तथा इंदौर पर भी आक्रमण करने के लिए पूरी शक्ति से जुट गए। राजा बख्तावर सिंह के रहते हुए विद्रोह का शमन करना ब्रिटिश सरकार के लिए कठिन हो रहा था। लालबाग की मुठभेड़ में कैप्टन हुचिनसन ने बख्तावर सिंह को पकड़ लिया, लेकिन वो किसी तरह से वहां से निकल भागे। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा होलकर से सहायता मांगी। महाराज होलकर ने राजा बख्तावर सिंह को महू आने के लिए संदेश भेजा, जहां वे स्वयं उनसे बातचीत करना चाहते थे। अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह ने आमंत्रण स्वीकार कर होलकर महाराज का पत्र पाते ही अपने साथियों के साथ महू के लिए प्रस्थान कर दिया। जब वे महू जा रहे थे तो रास्ते में बेटवा के पास 11 नवंबर सन 1857 को उन्हें बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद कैप्टन हुचिनसन ने गवर्नर जनरल के एजेंट को इसकी पुख्ता सूचना दी। 13 नवंबर की रात को 9 बजे राजा बख्तावर सिंह को महू लाया गया। राजा के साथ हैदराबाद कंटिंजेंट के 12 विद्रोही सवार भी थे। इसके अलावा 12 अन्य सिपाही तथा राज परिवार के अन्य सदस्य भी। कैप्टन ने आदेश दिया कि इन सभी को बंदी के रूप में कोतवाली में रखा जाए तथा सभी को निशस्त्र कर दिया जाए। बाद में सभी बंदियों को कड़े पहरे में इंदौर लाया गया। 4 जनवरी सन 1858 को राजा बख्तावर सिंह को इंदौर छावनी से हटाकर जेल खाना भेज दिया गया। उनके पैरों में बेड़ी डाल दी गई और उनसे मिलने की किसी को भी अनुमति नहीं थी। राजा को अपने भोजन के खर्च के लिए केवल 4 आना प्रतिदिन दिया जाता था। उस 4 आने से ही वे अपनी गुजर करते रहे। कभी कभी पहरे वाले सिपाही बाजार से उनके लिए अचार पूड़ी ला दिया करते थे। राजा बख्तावर सिंह पर राजद्रोह का आरोप लगाने की तैयारियां की गईं और गवर्नर जनरल के एजेंट ने पत्र में लिखा कि यदि पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं तो उन पर सीधे तौर पर मुकदमा चलाया जाए।

इंदौर में राजा बख्तावर सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा आरंभ हुआ। उनके साथ अमझेरा राज्य के 5 और बंदी अधिकारी आए। ये थे गुलाब राय कामदार, सलकू राय पटवारी, मोहनलाल कामदार, कुंवर भवानी सिंह मुसाहब और चिमनलाल वकील। राजा बख्तावर सिंह बंदी थे, उन्हें खड़ा रहना पड़ा। कुछ देर के बाद उन्हें बैठने के लिए मोढ़ा दिया गया। मुकदमे की सुनवाई दोपहर तक होती रही। अंत में महाराजा साहब ने बख्तावर सिंह से कहा, हमने तुम्हें बच्चे की तरह पाला, ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी गंभीर हरकत करोगे। तुम्हें तो फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, असीरगढ़ का किला जरूर दिखाऊंगा। उस समय इंदौर एक तरह से फांसी नगर बन गया था। अमझेरा के कई लोगों को इंदौर छावनी लूटने के अपराध में फांसी पर लटका दिया गया। चिमनलाल वकील को काला पानी की सजा सुनाई गई। राजा बख्तावर सिंह को गाड़ी में बैठाकर सख्त पहरे में वापस जेल खाने भेज दिया गया। जनता ये सब दृश्य देख रही थी, उसे अच्छा नहीं लगा। कुछ झड़पें, कुछ वारदातें भी हुईं, लेकिन उन पर काबू पा लिया गया। सीतामऊ का इंदौर में पदस्थ वकील वजीर बेग ने अपने पत्र में लिखा कि इंदौर में हर रोज बंदूकों से, तोपों से, फांसी से आदमी उड़ाए जाते हैं। यदि ऐसा ही रंग रहा तो आगे क्या होगा? 200 कैदी महाराज ने भेजे हैं, वे सभी तोपों से उड़ाए जाएंगे, फांसी पर लटकाए जाएंगे। फांसी पाए कैदियों की सारी संपत्ति, हवेली, मकान, तालाब, सभी कुछ सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अमझेरा के राजा के मुकदमे की आंशिक सुनवाई के बाद उन्हें सजा नहीं दी जा सकी थी, उसे कुछ दिन के लिए मुलतवी रखा गया। राजा बख्तावर सिंह के पैरों में बेड़ी डाल दी गई। उनके पास किसी के भी आने जाने की मनाही कर दी गई थी। वे जेल में कठिन दिन गुजारने लगे। कुछ समय बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ये खबर सर्वत्र फैल गई। 10 फरवरी 1858 को सुबह 9 बजे राजा बख्तावर सिंह को फांसी दे दी गई। राजा के मृत शरीर को

0: फांसी देने के बाद उतारा नहीं गया बल्कि उसे शाम तक फंदे पर ही लटकने दिया गया। हजारों व्यक्ति नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देने वहां खड़े थे, लेकिन वे सभी असहाय थे क्योंकि चारों ओर बंदूकें तथा लाठी लिए सिपाही तैनात थे। शाम को मृत शरीर को फांसी के फंदे से उतारा गया और फांसी के खंभे से टिकाकर खड़ा कर दिया गया। रात्रि को राजा के 8-10 नौकरों को बुलाकर अंतिम संस्कार का कार्य सौंपा गया। राज परिवार के सदस्यों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई और इस तरह उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। युग युग से पीड़ित मानवता सुख की सांसें भरती होगी, जब अपने होंगे वन उपवन, जब अपनी ये धरती होगी, तब समझूंगा आया वसंत, तब समझूंगा आया वसंत। यही स्वप्न आंखों में लिए राजा बख्तावर सिंह इतिहास के पन्नों में अपने बलिदान की स्वर्णिम आभा लिए दर्ज हो गए।
1: शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना। किसी के इशारे के हम मुंतजिर हैं, बहा देंगे खून की नहर देख लेना। खुजंदी हुआ हिंद आजाद अपना, छपेगी ये एक दिन खबर देख।

यह थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति। अवेकनिंग विद रमा कुमारी इसमें आज फिर हम आपके साथ हैं और जिंदगी को एक नई नजर से देखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताएं, आज कुछ नई बात शुरू करते हैं। अभी तक हम बहुत सी बातें अपने जीवन से जुड़ी जान रहे हैं, लेकिन आज कहीं न कहीं ऐसा होता जा रहा है कि जीवन की हर सिचुएशन हम पर हावी हो जाती है। कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको बदलें, नहीं बदल पाते हैं। धीरे धीरे उसको बदलना भी छोड़ देते हैं और हालात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या यही है जिंदगी? कई बार मन करता है कि ये जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो कौन से ऐसे कौशल

0: कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक नई श्रृंखला के साथ आपके साथ हैं लाइफ स्किल्स। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, ओम शांति। और आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति, ओम शांति। डॉक्टर पटेल, शुरू यहीं से करते हैं कि क्या हुआ है जिंदगी में कि प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि जिंदगी अच्छी हो जैसी हमने इमेजिन की हुई है, नहीं हो पाती है, और फिर हम कहीं ना कहीं गिवन करना शुरू कर देते हैं, और फिर देन वी से कि लाइफ मीन्स कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी का मतलब ही है कि एक्सेप्ट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ऐसे ही जीना है। सचमुच क्या जिंदगी ऐसे ही जीनी है?
1: मैंने बिल्कुल आपने जो बताया वही बात सिद्ध करती है। आज लोग भी कहते हैं, लोगों से पूछो भी कि भी कैसे हो, तो कहेंगे चल रहा है, या तो बहुत प्रॉब्लम्स है,
0: जी रहे हैं,
1: हाँ, या तो नहीं गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति ने उनके रिस्पॉन्स ही प्रूव करते हैं कि भी लोग इस प्रकार की जिंदगी नहीं चाहते। अब जितने सुसाइड्स को भी आज देखो, भी बच्चों में भी इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, वह भी प्रूव करता है कि भी सीरियस प्रॉब्लम है, कि इट्स नॉट एन स्मॉल प्रॉब्लम, इट्स नो रियली डीप रूटेड सीरियस प्रॉब्लम, कि जिसको लाइफ स्किल्स को समझ करके हमें दूर करना चाहिए।
0: सिस्टर शिवानी, गाड़ी पे आते हैं फिर से, आपके साथ लोग गाड़ी को बहुत एसोसिएट करते हैं, क्यों धक्का लगाना पड़ रहा है? क्या पेट्रोल की कमी है? क्या हमने इंजन की ओवरहॉलिंग नहीं की? व्हाट हैज रियली हैपेंड?
2: सबसे पहले तो क्या हमें गाड़ी चलाना आता है? बाकी सब भी तो बाद में करेंगे ना। गाड़ी में पेट्रोल भी तो मैं तब भरूंगी तब मुझे पता हो कि वो पेट्रोल टैंक खोलने वाला जो नॉब है वो कहाँ पर है। हाउ मच डू आई नो अबाउट माई कार? एंड इट्स नॉट अबाउट द कार, इवन इफ यू लुक एट इट्स अबाउट द ड्राइविंग। हाउ मच डू आई नो द स्किल? इवन अगर गाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा ना पता हो, ड्राइविंग की स्किल तो आनी चाहिए ना। दबाना है ब्रेक, दबा दिया एक्सेलरेटर, जो टाइम चाहिए कि हमें एकदम स्टॉप हो जाना चाहिए उस टाइम कई बार हम बहुत फास्ट चले जाते हैं। कोई टाइम चाहिए जो हमें फास्ट कुछ करना है, हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो तब दबाना था एक्सेलरेटर, दबा दी ब्रेक, ब्लैंक हो जाएंगे, मुझे नहीं पता अब क्या करना है जीवन में ना। तो वी से माई लाइफ हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, एंड इट नॉर्मली कम्स टू अ स्टैंड स्टिल एट अ पॉइंट वेर इट एक्चुअली नीड्स टू बी गोइंग अहेड। सो जस्ट बिकॉज आई डोंट नो when to press the accelerator, when to press the brake. So जैसे हम जीवन के ये बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं, अपनी गाड़ी कैसे चलानी, अपना कंप्यूटर कैसे चलाना है, इवन अपना मोबाइल कैसे यूज करना है, साधन सारे हैं, चलाना ना आता हो तो उसका पूरा यूज हम नहीं कर पाएंगे। इफ आई हैव अ मोबाइल बट आई डोंट नो कि उसका कैमरा कैसे वर्क करता है या उसका बाकी चीजें कैसे वर्क करती है, आई वोंट बी एबल टू यूज इट टू इट्स फुल पोटेंशियल। एंड तो मेरे पास चीज है लेकिन मैं उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रही जिस तरह से मुझे करना चाहिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। सेम विद लाइफ, आई हैव दिस ब्यूटिफुल लाइफ, आई हैव द पावर टू टेक इट द वे आई वॉन्ट, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं है इट जस्ट सीम्स टू बी गोइंग इन एवरीवेयर अदर डायरेक्शन।
0: कभी पिक्चर खिंच जाती है, कभी वो पिक्चर खराब हो जाती है हमसे, क्या हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम आती है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम सही तरह से उसे सॉल्व करें, वो क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे कहा सिस्टर शिवानी आपने कि स्टैंड स्टिल हो जाती है जिंदगी, कोई ऐसी घटना हो गई जीवन में और हम चाहते होते, क्योंकि सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो जाती है, लोग नहीं चेंज कर रहे होते तो हम नहीं उसको पार कर रहे।
2: आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है, जीवन ऐसी हो जाती है, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, लोग नहीं चेंज हो पा रहे तो इसलिए हम स्टैंड स्टिल हो गए। इसका मतलब मेरी गाड़ी रुपा की सब लोग चला रहे हैं। सी आई जस्ट सेड कि माई सी इवन इफ आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, लेट्स से आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियां, फिर भी मुझे ये ध्यान में आना चाहिए कि मेरी गाड़ी का कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। आई हैव टू फाइंड माई वे इवन थ्रू अ बिग मेस। सिमिलरली अगर कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है तो भी मेरी गाड़ी का कंट्रोल मेरे पास है। आई हैव टू फाइंड माई वे कि मुझे कैसे टर्न करना है, मुझे कहां रुकना है, कहां फास्ट जाना है। बट हम आजकल ये कह रहे हैं उनकी गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा एक्सीडेंट तो होना ही था। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, दिस इज द स्किल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस सीरीज, कि येस इट्स अ जर्नी एंड इट्स लाइक अ जर्नी ऑन द रोड, जहां सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में, सबकी गाड़ियां अलग अलग, सबका तरीका चलाने का अलग अलग, बहुत सारे लोग हमें आसपास मिलेंगे जो थोड़ा सा गलत तरह से भी चला रहे हैं। नाउडेज

0: पे कंपटीशन, गलत तरह का कंपटीशन, समटाइम वी से ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब चीजें हैं, लोग मुझ पर चिल्ला रहे हैं, तो मेरे हाथ में क्या है? इट जस्ट मीन्स कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो थोड़ा सा ठीक से नहीं चला रहे, बट फिर भी मेरी गाड़ी मेरे हाथ में है. दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू वर्क ऑन, नॉट जस्ट कीप ऑन यू नो ब्लेमिंग that other people are not driving well. Always on the road we will have different kind of people. Koi kisi tarah chalayenge, koi kisi tarah chalayenge. Mera focus apni journey par hona chahiye aur uska control mere paas hona chahiye. Jaise hi control bahar de diya, phir to then there is nothing much left to do. So what we want to do in this series is get back the control. To lead my life the way I want to lead it, not the way other people and situations are making me lead it. That is the most important thing.
1: Very true. एक बात अगर ये भी हम देखेंगे ना, मनोविज्ञान में भी मानने लगे हैं कि आज हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया है ना, बाह्य चीजें हमें कंट्रोल कर रही है. वास्तव में हमारा कंट्रोल इंटरनल होना चाहिए. बस ये बात भी अगर अच्छे से हम चर्चा कर ले, लोग इस बात को समझ ले, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है. और यही कला सीखनी है कि कैसे हमारा जो कंट्रोल है वो हम इंटरनल लाए.
2: पहले हमसे जो गलतियां हुई, मैं वही बार बार कर रही हूँ कि उनको एक बार देखें कि क्या हमने रॉन्ग साइड चलाना शुरू किया है.
1: गहराई से हम सोचे दो प्रकार से. आउटवर्डली अगर हम सोचे तो गलती यहां पर हुई है कि हम बाह्य बातों पर डिपेंडेंट हो गए. यह समझने लगे कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास बड़ा घर होगा तो मैं सदा के लिए शांत रहूंगा, मेरी पोस्ट पोजीशन बड़ी हो जाएगी, कितना बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाएगा. परंतु ये वो एक बहुत बड़ी गलती कर ली. वह चीजें भल जरूरी है, ये शरीर को कंफर्टेबल बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है, परंतु वह सुख नहीं दे सकती, वह हमें सदा के लिए आनंद नहीं दे सकती. बस इसके कारण एक तो हुआ, दूसरी बात कि हम लोगों पर भी डिपेंडेंट हो गए और रिलेशन में डिपेंडेंट हुए. इसके कारण फिर वह सदा के लिए व्यक्ति हमें सुख नहीं दे सकता है, तो और हम दुखी हुए, नहीं और निराश हुए, इरिटेशन आ गया है ना, हेट्रेट आने लगी, इस प्रकार की सभी नेगेटिव बातें डेवलप हुई. और एक गहराई से अगर बात देखे तो आज हम जो चीज हमें जीवन में चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए आउटर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, और जो आउटर एनर्जी है वो हमें अलग अलग दिशा में ले जा रही है.
2: आउटर एनर्जी मीन्स व्हाट?
1: आउटर एनर्जी ऐसा कहेंगे कि मैं अच्छा दिखूं, है ना, मेरा शरीर अच्छा हो, या तो जैसे मैंने कहा मेरा घर बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी कार दूसरों से बड़ी होनी चाहिए. ये जो सब हम प्राप्त करने के पीछे एनर्जी को लगा रहे हैं वह है आउटर एनर्जी.
2: अच्छा, अपनी ही ऊर्जा,
1: अपनी ऊर्जा,
2: अपनी ही कर्म की ऊर्जा जो है ये इन सब की प्राप्ति में लगा रहे हैं,
1: बाह्य चीजों की प्राप्ति में लगा रहे हैं. और इसके कारण एक तो वो वेस्ट होती है, और फिर अल्टीमेटली हमें लगता है कि मेरे में खोखलापन आ गया. आज देखिये तो लोगों के पास सब कुछ है लेकिन इनर वैक्यूम है. परंतु अगर हम इनर एनर्जी को यूज करने लगे तो एक तो वह सेव होगी, थोड़ी सी एनर्जी में आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, और इनर एनर्जी से आपको सही दिशा भी मिलेगी.
2: सर, एक मैं को बात ये जाननी है कि इनको प्राप्त करने के लिए एनर्जी तो यूज करनी पड़ेगी. सी, अगर मेरे को गाड़ी चाहिए, चलो मैं उसे ये नहीं कहूं कि मुझे सुख प्राप्त होगा, पर गाड़ी तो चाहिए ना, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कुछ भी है, या प्रोफेशनली सक्सेस तो चाहिए,
1: चाहिए
2: रिश्तों में भी, संबंधों में भी मधुरता चाहिए,
1: चाहिए,
2: या बंगला का कुछ एक कम्फर्ट चाहिए आज के वक्त में, तो उसको करने के लिए ऊर्जा, चाहे वो बाहर की, मेरी अपनी ही ऊर्जा मुझे इस्तेमाल तो करनी ही होगी.
0: आज मॉर्निंग में हमने किसी से पूछा आपको जीवन में क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी गाड़ी, अच्छा बच्चा, अच्छा मकान. एंड देन ही सेड आई कैन गो ऑन, द लिस्ट इज वेरी वेरी लॉन्ग. आई सेड ये लिस्ट कब तक चलेगी? सेड जीवन भर मेरे पास ये लिस्ट बहुत लंबी है. एंड लिस्ट में हर वर्ड आ रहा था जो चाहिए, क्योंकि ये सब होगा तो मैं खुश होऊंगा, एंड अच्छा चाहिए. यू नो द बेस्ट पार्ट वॉज द वे ही केप्ट सेइंग अच्छी पत्नी, अच्छा बच्चा. नो वेयर ऑन दिस लिस्ट आई एम देयर कि मैं अच्छा ना, आप अच्छे, आप
2: अच्छे,
0: बस दैट इज That is the only way. What you said, what mistake have we made? Then that is the mistake.
2: मैं अच्छी नहीं हूँ.
0: See, it's not कि मैं अच्छी नहीं हूँ. तो वो अच्छे नहीं है. सब जो हैं, जैसे हैं, वो अच्छे हैं. लेकिन वो अच्छे चाहिए मतलब जो image मैंने create किए वैसे वाले वो चाहिए.

0: वो वैसे वाले होंगे देन आई विल बी हैप्पी. तो पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया?
1: उस इमेज पे,
2: उस इमेज की प्राप्ति
0: उनके पास, कि वो वैसे होने चाहिए तब मैं खुश होऊंगा. अब ये नहीं होने वाला है. लेट अस वेक अप टू दिस रियलिटी. अवेकनिंग इज दिस वेक अप. उठ जाएं, जागृत हो जाएं कि ये जो हम बार बार अच्छी पत्नी, अच्छा दोस्त, अच्छा बच्चा, ये अच्छा अपनी डेफिनेशन के हिसाब से हम क्रिएट कर रहे हैं. और हम कहेंगे हम तब खुश होंगे जब वो रिश्ता इस डेफिनेशन में फिट होगा.
2: तो हम एक्सेप्ट तो फिर भी करके बैठे ही हैं. सी,
0: तो फिर हम खुश नहीं है ना.
2: हाँ, वो अब
0: सी अगेन, आपने तो अपनी आपने अपनी शॉपिंग लिस्ट में ये लिखा कि मुझे ये चाहिए. तो अगर आपको जब तक वो नहीं मिलेगा देन यू आर वेरी एम्प्टी.
2: तो हम चाहत भी हम खत्म कर दें.
0: इट्स नॉट अबाउट चाहत खत्म कर
2: दें. पीपल आर सेइंग यू नो कि बिना चाहत, उन्हीं से अगर आप आगे बात करेंगे तो उनसे कहेंगे चाहत तो खत्म करनी. अगर चाहत भी ना रही तो लोग बोलते हैं हमारे पास फिर बचा क्या, एक वही ड्रीम से तो लेकर चल रहे हैं.
0: सो देन वी आर ऑलवेज एम्प्टी ना. जैसे बात हुई कि हमेशा मेरा हाथ ऐसे है ना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये आएगा देन आर बी बेटर, ये आएगा देन आर बी बेटर. और वो उसने बहुत क्लियरली कह दिया, लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, कि मेरे जीवन के एंड तक ये लिस्ट रहने वाली है. मतलब एंड तक मैं कैसे रहने वाला हूँ? ऐसे रहने वाला हूँ. मतलब मैं एंड तक भी, एंड वट एवर वी कॉल, कि जब तक मैं इस कॉस्ट्यूम में हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी कंटेंटेड. एंड देन आई एम गोइंग टू से, एंड देन अब ही विल गेट अ कार, ही विल गेट अ जॉब, ही विल गेट मैरिड, बट डेफिनेटली ही वॉन्ट फील कि हिज वाइफ इज द अच्छी वाइफ. Because no one is going to fit into that perfect.
2: आज वैसे फिट कर भी जाएगी तो कल तो होगा ही होगा.
0: यू नो, तो वो डिसकंटेंटमेंट हमेशा बनी रहेगी. लाइफ स्किल्स मतलब मैं अपने अंदर कौन सी स्किल्स क्रिएट करूं जिससे चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई रिश्ता है, उसमें मैं कैसे अपने आप को मोल्ड करके अपने आप को कंटेंटेड और अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करूं. दिस इज इम्पोर्टेंट.
3: चाहत बुरी नहीं है, परंतु हम क्या चाहते हैं वहां गड़बड़ वहीं पर है. क्योंकि बाहर की चीजें चाहते हैं और उसका कहीं अंत नहीं है, वहां फुलफिलमेंट होनी ही नहीं है. इसलिए मैंने आउटर एनर्जी कहा. अगर अंदर की चाहत हो कि मुझे शांति चाहिए, मैं एक बार बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊं, तो फिर सब कुछ मिल जाएगा. ये बहुत अच्छी बात कही गई है, मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है. लोग ये सोचते हैं कि मुझे यह सब मिल जाएगा फिर मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, परंतु सत्य बिल्कुल इससे विपरीत है. पहले आप जहां भी हो संतुष्ट हो जाओ और फिर आपको जो चाहिए वह सब कुछ मिलेगा. और यही स्किल्स है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भी कैसे स्किल्स हमारे में आ जाए कि हम जहां है सचमुच सेटिस्फेक्शन का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, तब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. तब वो जो आर्ट है, क्योंकि लाइफ इज एन आर्ट है ना, वो बैलेंस करना पड़ेगा. वो बैलेंसिंग कैसे होगा?
0: जैसे गिरीश भाई ने कहा ना, क्या चाहिए. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग, नाउ चेंज द इक्वेशन. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए, लेट्स से मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए. ओके, लेट्स डू दैट. वो व्यक्ति पर नहीं आप जिम्मेवारी रख रहे हो, आप ये कर रहे हो कि मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए. और ये अच्छा रिश्ता क्रिएट भी कौन करेगा? आई विल क्रिएट दैट. So that I am not के मुझे कुछ नहीं करना, you need to be the perfect whoever, a wife, a child, a friend for me, then I'll never be happy. Because then I'm giving, like he said, the control totally to you. But if I say मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए and I am going to work on creating this good relationship, then the control comes back totally into my hand.
2: That's the problem is that I've been doing it all my life and अब मैं इतना थक चुका हूँ कि तभी तो मैं सी चाहत में मेरे को ही काम करना है. तो फिर चाहत क्या? सी अगेन इन माय ड्रीम.
0: आपको कुछ भी चाहिए हो बिना काम करे मिलेगा क्या? कुछ भी आप क्या बिना पढ़े बोलेंगे क्या मुझे पास होना चाहिए?
2: कितने लोगों का ये ड्रीम होता है,
0: लेकिन पास तो नहीं होंगे ना. कुछ भी चाहिए तो वो ऐसे नहीं आ रहा ना. कुछ भी चाहिए मीन्स आई विल वर्क टूवर्ड्स इट एंड आई विल गेट दैट. बट आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए. पास होना चाहिए स्टडी. ऐसा होगा नहीं कि आप एफर्ट डालेंगे, स्टडी करेंगे और आप पास नहीं होंगे. तो ऐसा होगा नहीं ना.

0: को तो नहीं बदल सकता हूं, जरूर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, सारे अमेरिका को बदल दूंगा। 55 का हुआ, सोचा शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा, मेरे स्टेट का गवर्नर जरूर बनूंगा, सारे स्टेट को बदल दूंगा। 75 का हुआ, सोचा शायद स्टेट को बदलना भी मुश्किल, कम से कम अपने गांव को तो जरूर बदल दूंगा। 85 का हुआ, मरने को था, सोचने लगा अरे रे अपने आप को ही नहीं बदला, अपने आप को बदल देता तो बहुत अच्छा होता।
1: स्वपरिवर्तन
0: ये फाउंडेशन वहां है, अपने आप को बदलो सारी दुनिया को बदल दोगे।
1: इज इट पॉसिबल? दैट इज व्हाट वी सेड, फील गुड, जो आपने कहा गारंटीड कि वो सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भाई साहब ने कहा पक्का मिलेंगी, लेकिन 0.1% चांस अगर नहीं मिले, यू आर स्टिल फीलिंग गुड। दैट्स व्हाट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये गारंटी है कि फीलिंग गुड जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। सी, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे हाथ में हैं और कुछ एक बातें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैं पहले अपनी सारी एनर्जी उन चीजों पर फोकस कर दूं जो मेरे कंट्रोल में है। सी, इट्स अगेन लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, सिर्फ मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में है। इट्स नॉट अ गारंटी कि बाकी लोग ठीक ड्राइव करेंगे, इवन अगर मैं उनको खड़े होकर ड्राइविंग की सारी स्किल्स वहां पर अच्छी तरह से बताऊं। सेम थिंग इज हैपनिंग, हम आसपास के अपने लोगों को बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो यू नो स्पाउस है, चाहे वो कोलीग है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वही करेंगे जो हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि दे आर चूजिंग हाउ दे वॉन्ट टू ड्राइव। नाउ आई हैव टू चूज हाउ आई वॉन्ट टू ड्राइव, एंड वो गारंटी है कि अगर मैं अपनी गाड़ी पर पूरी तरह से फोकस करूं, मैं रीच करूंगी अपनी डेस्टिनेशन विदाउट अ सिंगल एक्सीडेंट। दैट इज डेफिनेट, इवन इफ एवरीवन अराउंड मी इज ड्राइविंग बैडली, इट्स स्टिल पॉसिबल। लेकिन उसके लिए चाहिए होती है 100% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे। लेकिन अगर सब लोग आसपास गलत चला रहे हैं और मैंने दो मिनट भी थोड़ा उस तरफ ध्यान दिया कि वो कैसे चला रहा है, आई विल बैंग इन टू समवन, तो वो फुल फोकस
2: कोई और आएगा।
1: यस, फुल फोकस अगर आपको अपनी एनर्जी पे हो गया तो फिर आप पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे विदाउट अ सिंगल स्क्रैच हेयर। That's possible, and that's the purpose of life, to feel good and to feel happy.
2: डॉक्टर पटेल, एक अच्छी इंश्योरेंस मिल रही है हमें कि पूरी श्रृंखला में हम ये तो जानना चाहेंगे और ये सीखेंगे कि फील गुड कैसे करना है, बट और क्या कुछ शामिल होगा आने वाली कड़ियों में?
0: और तो मैं समझता हूँ फील गुड के लिए जरूरी है कि विचारों को बदलना, क्योंकि हमारे विचार ही सब कुछ करते हैं। कहेंगे कि जो बहुत बड़ी कला है वह है थॉट मैनेजमेंट, यू कैन कॉल इट इवन माइंड मैनेजमेंट। और माइंड मैनेजमेंट के लिए जरूरी चाहिए सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सेल्फ प्रोग्रेस, तो सेल्फ एस्टीम को हम कैसे डेवलप करें? और भी कुछ सचमुच ऐसी लाइफ स्किल्स की भी जिसे डेवलप करें, रिलेशनशिप की स्किल्स है, या तो अपने आप को चेंज करने की स्किल्स है, अंदर में भरपूरता को कैसे प्राप्त करे वह, और यह सब हो सकता है आध्यात्मिकता से। आज मूल चीज है, आज लोग धर्म की ओर तो मुड़े हैं परंतु आध्यात्मिकता का सत्य अर्थ नहीं समझे, तो आध्यात्मिकता को हम और डीपली समझेंगे। मेडिटेशन के साइंटिफिक बातें क्या उसको भी समझे, ताकि 21वीं सदी में भी लोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने लगे।
1: आज हम में से मेजोरिटी कोई ना कोई डिजीज के शिकार है, और कुछ नहीं तो दर्द यहां वहां तो लगा ही हुआ है, किसी के बैक एक है, किसी के नी पेन है। कैसे हम इस पेन को मैनेज करें विद द पावर ऑफ द माइंड, क्योंकि बहुत सारे हम स्कैन्स कराते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, तो डॉक्टर कहता है थिंक अबाउट इट, लेकिन आई डोंट नो बिकॉज मैंने यहां कभी देखा नहीं, तो देन आई लर्न टू लिव विद द पेन। नाउ वी वॉन्ट टू हील दैट पेन, तो माइंड का बॉडी पे असर, फूड का माइंड पे असर, बॉडी पे असर, रिलेशनशिप्स पे असर, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड एक बहुत बड़ी चीज जो आजकल हो रही है फियर, जिसकी वजह से हम बहुत सारी और चीजों पर कंट्रोल दे रहे हैं, वेदर इट इज एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट इज ऑल काइंड ऑफ साइंसेज आउटसाइड, तो कई बार हम बहुत ज्यादा उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं। हर रोज उनसे पूछ रहे हैं हम ऐसा करें या नहीं करें, हम आज का दिन ठीक है या आज का दिन ये ऐसा है, ये टाइम ठीक है या ये टाइम गलत है, तो पूरी गाड़ी का कंट्रोल किसको दे दिया है? जस्ट समवन एल्स। तो भले ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब में रहते हुए भी मुझे फिर भी कैसे चार्ज लेना है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो तंत्र है, इन सब इन्फ्लुएंसेस में रहते हुए

0: come out of it and still be the master of my life. That's what we need to do.
1: So life skills ki is puri shrinkla mein aapke saath rahi. Thank you so much, Sister Shivani, Dr. Patel. तुझे क्या चाहिए जिंदगी, बहुत बार अपने आप से कहते हैं. और आज तो हम इस मुकाम पर हैं, इस मोड़ पर हैं कि सचमुच लगने लगा है कि जिंदगी एक कॉम्प्रोमाइज है, थके से हुए हैं. लेकिन इस थकान को दूर करना है, हम में से हर कोई अच्छा फील करना चाहता है. फील गुड फैक्टर बहुत बार सुना, लेकिन आज से शुरू होती है ये जर्नी. हम जानेंगे कि कैसे अच्छा महसूस करते करते जीवन के हर सुख की प्राप्ति की जा सकती है. कैसे अभी तक जो पूरी डिपेंडेंसीज बाहर थी, धीरे धीरे एक एक करके ये चार्ज अपने हाथ में लेंगे प्रैक्टिकली. कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप इस श्रृंखला में जिसे चाहते हैं कि हम लेकर आए, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 9973455, 9973446, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेटिंग इजामा कुमारी इसमें आज इतना ही. लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में आगे भी बहुत से स्किल्स जानेंगे जिंदगी के बारे में, जिंदगी से जुड़ी हुई. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है

0: amor mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। आओ।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आपको नई कटाई रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हेलो
1: खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? गाने के शौकीन हैं आप?
2: ये दिल तो कहीं लगता नहीं, हम क्या करें?
1: गाने से प्यार करते हैं आप?
3: तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
1: तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने, गाने गाने सुहाने सुहाने, आपके लिए लेकर आया है रेडियो शिमला 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
2: थैंक यू.
1: सोल की बात आप कर रहे थे, आत्मा की, और दूसरे को देखने की, सोल टू सोल. मैंने ये सोचा कि जब तक मैं खुद को सोल नहीं समझूं, फिर पॉसिबल कैसे है?
2: नहीं पॉसिबल है, और अगर खुद को कर लिया तो सबके लिए हो गया.
1: पैरेलली एक और थॉट चल रही थी, चलो मैं सोल हूं और वो भी सोल है, तो रोल टू रोल बात कर रहे हैं, उसमें क्या है?
2: रोल टू रोल बात करने में हमारी जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, वर्ड्स, बिहेवियर है, वो ओरिजिनलिटी से नहीं होता है. क्योंकि या तो हम किसी से ऊंचे हैं, तो आपने कहा मैं डांट भी सकता हूं, मैं कमांडिंग वॉइस में भी बात कर सकता हूं, वो तो मेरा नौकर है, वो तो मेरा स्टाफ है ना,
1: तो उसमें नुकसान क्या है?
2: व्हाट डिड वी सी? व्हाट इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर माय परफॉर्मेंस टू बी बेस्ट? फॉर मी टू फील नाइस एंड टू मेक अदर्स फील नाइस. ये हमारा मंत्र है ना इस सीरीज में, कि मैं एक्टर इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर सही परफॉर्मेंस अगर दे रहा हूं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि हर क्षण, हर को एक्टर के साथ, किसी भी सीन के अंदर, मैं अगर एक सही एक्टर हूं, मीन्स आई हैव टू फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस. और अगर इस यात्रा में क्वालिटी बहुत प्यारी नहीं रही, शरीर तो छूट जाएगा, लोग भी छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी एनर्जी, which does not get destroyed, which is not created, which is the only thing which is eternal. और हमने देखा कि यहां पे हर सीन रिकॉर्ड हो जाएगा. तो अब अगर यहां के सीन में कोई ऐसी इमोशन क्रिएट कर दी, कार्मिक हिसाब किताब भी क्रिएट हो गया, इटर्नल रिकॉर्डिंग. अब आप ये बताइए कि रोल टू रोल बात करने में या सोल टू सोल बात करने में क्या फर्क पड़ने वाला है? व्यवहार करने में
1: मैं शांत रहूंगा, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ेगा, गुस्से से जितना मेरा नुकसान होता, आपने एक एपिसोड में कहा भी था कि हर थॉट का हर सेल पे असर पड़ता है, बॉडी की कितनी सेल्स हैं.
2: आप सामने वाले को अच्छी वाइब्रेशंस रेडिएट करेंगे, सामने वाला आपकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल हो जाएगा, सामने वाला भी ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करके आपको भेजेगा.
1: मैं अगर अगरबत्ती लगाऊं तो दोनों को खुशबू अच्छी आएगी ना?
2: Yes.
1: मुझे भी तो आएगी.
2: एंड उस अगरबत्ती से जो उसको खुशबू आएगी, वो भी आपके लिए कैसी थॉट्स क्रिएट करेगा, वो हमारी कमाई बनेगी.
1: कमाई?
2: एक सीन कमाई होगी ना, हमने दूसरे से क्या वाइब्रेशंस कमाई?
1: दुआएं.
2: हाँ, तो दुआएं कमाई, तो वो मुझ आत्मा की कमाई हुई ना. धन कमाते हैं तो वो शरीर की कमाई होती है, टेम्पररी, आज है कल नहीं. दुआएं कमाते हैं तो मुझ आत्मा की कमाई होती है, इटर्नल कमाई. बाहर धन कमाते हैं, विनाशी कमाई, आज है कल फिनिश्ड. यहां जो कुछ रिकॉर्ड हो गया वो इटर्नल रिकॉर्डिंग है.
1: गुड एंड बैड सारी साथ जाएगी.
2: रिकॉर्डिंग को ये नहीं पता होता कि गुड है या बैड है. Every thought, every feeling, every vibration getting recorded.
1: My God.
2: Every karma getting recorded. How much care we need to take? Or most important, ye kamai avinashi hai, eternal hai. Mitane ki koshish bhi karenge to mita nahi sakte. Saath jayegi, lambi chalegi. हमेशा रहेगी.
1: तो यहाँ पर तो सोच समझ के सोचना भी चाहिए
2: हर स्टेप पे. और इतना सोचना नहीं पड़ेगा, अगर कॉन्शियसनेस राइट फिक्स हो गई तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा. बिलीफ सिस्टम से थॉट, तो थॉट

0: वो अपनी पोजीशन भूल जाते हैं। अब यही अगर दादी जी उनके सामने बैठे विद दिस कॉन्शियसनेस, आई एम द चीफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो उस कॉन्शियसनेस में बैठे तो सामने वाला भी बैठेगा आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। फिर कॉन्शियसनेस जो है वो रोल टू रोल बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वो सामने बैठे हैं आई एम अ प्योर सोल चाइल्ड ऑफ गॉड टॉकिंग टू अनदर प्योर सोल चाइल्ड ऑफ गॉड, दोनों को अपनी पोजीशन नहीं याद है।
1: एक लेडी ने मुझे कहा था, चलते चलते बोल दिया था, किसी ने कुछ बोला तो मैं ग्रम्बल कर रहा था, तो उसने बोला देखिए किसी के अंदर का राम जगाना या रावण जगाना वो आपके ऊपर है।
0: किसी के अंदर का राम जगाना या रावण जगाना
1: डिपेंड्स ऑन यू।
0: नाउ व्हाट डज इट मीन डिपेंड्स ऑन यू, कि आप राम हैं या रावण हैं, मतलब आपके अंदर की कौन सी कॉन्शियसनेस जगी हुई है। राम कॉन्शियसनेस मतलब हमारी डिविनिटी, सोल कॉन्शियसनेस। रावण कॉन्शियसनेस
1: इम्प्योर,
0: अहंकार, ईगो। तो जो हमारे अंदर जगा हुआ है वो सामने वाले के अंदर जग जाएगा। इसीलिए एक का परिवर्तन कितनों का परिवर्तन करेगा।
1: ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया घर में अपने।
0: यस yes.
1: मैंने बोला था ये नहीं, ये करता वो ऐसा कर, जैसे जैसे मैं ये क्लासेस में और ये एपिसोड्स में आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और जैसे मेरा परिवर्तन हो रहा है, आई सी द चेंज इन माई ग्रोन अप चिल्ड्रन, माई फैमिली, माई स्टाफ।
0: नेचुरली इट इज गोइंग टू हैपन।
1: पहले मेरे दरवाजे की एंट्री पे लोग अपने रेडियो वेडियो बंद, कान ये डर कुछ कान कोई काम में लग जाते थे। आपके वो कितना डिफरेंस है, मैं एंटर करता हूँ
0: फियर में जीते थे ना। लेकिन फियर कॉन्शियसनेस
1: तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, इतना प्यार मिलता है।
0: तो फिर सोल कॉन्शियसनेस, अब ये सारा दिन में अगर सिर्फ अपनी फैमिली नहीं लेकिन हरेक जिससे मिले, हम हरेक जिससे मिले, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रहा हूँ,
1: ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है,
0: मैं आत्मा आत्मा से बात कर रहा हूँ। मार्केट गए, दुकानदार मिला, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रहा हूँ,
1: ये याद नहीं रहता जिसको मैंने।
0: ये प्रैक्टिस है, ये ही राजयोग है। जब हम ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन सीखने सेंटर पर आते हैं, पहले दिन का पाठ, आप शरीर नहीं, आप नाम नहीं, आप पोजिशन नहीं, आप ये सबको प्ले करने वाली आप आत्मा है, ये पहले दिन का पाठ है। और पहले दिन के पाठ को जीवन में 100% ले आना, ये पूरी लाइफ की जर्नी बन जाता है। बिकॉज जैसे आपने कहा मैं आत्मा हूं, अभी बिल्कुल याद नहीं है, विच मीन्स वी आर 100% बॉडी कॉन्शियस।
1: बिल्कुल
0: बॉडी में सब कुछ आ जाता है। बॉडी मीन्स जस्ट नॉट दिस बॉडी, बॉडी मीन्स इस बॉडी में आकर मैंने जो कुछ अक्वायर किया।
1: कुछ सेकंड के लिए याद रहता है फिर भूल जाते।
0: जब नॉलेज नहीं मिली थी तब तो कुछ सेकंड भी याद नहीं रहता था, तब तो बॉडी कॉन्शियस। अब 100% बॉडी कॉन्शियस से हम धीरे धीरे सोल कॉन्शियस पर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे आपने 1%, फिर 2%, 5%, ये कम होता जाएगा, ये घटता जाएगा, ये जर्नी है। अब जब इस पर हम अटेंशन रखेंगे और ये बढ़ता जाएगा, तो जो आप कह रहे हैं कि याद नहीं रहता, याद रहना शुरू हो जाएगा।
1: और दूसरी चीज याद नहीं रहेगी,
0: दूसरी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई है ना,
1: वो जो ईगो वाली थी वो याद नहीं रहेगी और ये याद।
0: दोनों में से एक ही कॉन्शियसनेस हो सकती है।
1: सही है,
0: तो दूसरे को भुलाने की कोशिश नहीं करनी है। अब सारा दिन में अगर प्रैक्टिस करनी है, अगर ऊपर नीचे कुछ हमने बात भी कर दी, कुछ हो भी गया, किसी को डांट भी दिया, ये सोचा ये तो छोटा है, हम इससे ये बात कर सकते हैं, आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट एंड चेंज।
1: प्लीज
0: कर दिया ना, सपोज अभी यहाँ कोई आया, हम अब हम इस रिजॉर्ट में हैं, कोई आपके कमरे में काम करने के लिए आया, एम्प्लॉई है, गलत काम कर दिया, डांट दिया उसको, क्यों सोचा एम्प्लॉई है, आई एम अलाउड टू शाउट एट हिम। नाउ रिफ्लेक्ट, वो आत्मा आई थी मेरा काम करने के लिए आई थी, मैं आत्मा ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया,
1: ठीक नहीं था,
0: मुझे आत्मा को एम्प्लॉई से नहीं आत्मा से बात करनी थी, काम करवाना था, ठीक नहीं हुआ था तो बताना भी था। ये नहीं है कि हम काम कर रहे हैं उसको नहीं करना है, रोल का अलग है प्रोटोकॉल, लेकिन बात किससे कर रहे थे, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही थी। अब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना,

0: we will talk to the soul.
1: Us time pe bhi, sorry ke vibrations
0: bhi. Of course, because that is the inner work. Kyunki purani consciousness hai na ego. Body consciousness koi is janam ki created consciousness thodi hai. हम तो कई जन्मों से भूल चुके हैं कि मैं आत्मा हूं, तो हर क्षण एकदम से नहीं याद रहेगा, लेकिन जब भूल भी जाए, अहंकार के वश कर्म कर भी दिया, उसके बाद रिफ्लेक्ट एंड यहां प्रोग्रामिंग चेंज, जैसे एक सीन अगर गलत हो भी गया तो आप नेक्स्ट सीन के लिए रिहर्सल तो करेंगे ना. अगर नेक्स्ट सीन के लिए रिहर्सल नहीं किया तो ये सीन भी गलत हुआ था, नेक्स्ट भी गलत, नेक्स्ट भी गलत, नेक्स्ट. सारा दिन में सबसे मिले, अगर हमें रियली वो कॉन्शियसनेस क्रिएट करनी है, बात करने से पहले वन थॉट विच विल टेक लेस देन वन सेकेंड उसको देखें, मैं आत्मा से बात कर रही हूं. द फर्स्ट वाइब्रेशन ऑफ द मीटिंग विल बी डिफरेंट. एंड जैसे ये थॉट क्रिएट की मैं आत्मा से बात कर रही हूं, यहां जो कॉन्शियसनेस है वो राइट सेट हो गई फ्रीक्वेंसी पे. उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा. आई द बीइंग टॉकिंग टू अनदर बीइंग, आई द एनर्जी टॉकिंग टू अनदर एनर्जी, ये सब कुछ जो हमने अक्वायर किया आज है, कल नहीं. आज कम, कल ज्यादा, परसों फिर कम हो सकता है. आज कोई ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा है, कल वो मालिक का रोल प्ले कर सकता है. रोल्स अलग अलग हैं. आज जो मालिक है वो कल कोई और रोल प्ले कर सकता है. मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूं. लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जो कॉम्प्लिकेशन हम कहते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, वो खत्म. अब पांच लोगों से मिलेंगे ना, एक ही तरह बात करेंगे. डोंट हैव टू बी डिफरेंट. तो जब एक ही तरह बात करेंगे पांच लोगों से, तो वो हमारी ओरिजिनलिटी होगी. जब पांच लोगों से मिलने से पांच बार बदल रहे थे, तो संस्कार क्या हो रहा था? ओरिजिनलिटी नहीं निकल के आ रही थी. इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ. अब रिश्तों में भी इसको देखें. बेटा है, बहू है, दामाद है, पत्नी है, कोई भी है तो आत्मा ना. इस सीन में मतलब जीवन के इस पीरियड में, जब से मैंने ये कॉस्ट्यूम पहना तब से वो मेरे साथ इस रोल में है. अब हम रोल के एक्सपेक्टेशन छोड़ के सोल को देखकर बात करें, तो हमारी बहुत सारी हर्ट खत्म हो जाएगी. ये ऐसे हैं, बेटा होकर ऐसे बात की, बेटी ने ऐसा जवाब दे दिया, दामाद ने कहना नहीं माना. ये सब रोल्स की एक्सपेक्टेशंस हैं. सोल से एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं.
1: देन आई कैन हैव एम्पथी.
0: एम्पथी विल बिकम नेचुरल. सोल कॉन्शियसनेस हमारे से रेडिएट होता हुआ प्यार बढ़ाता है. ईगो कॉन्शियसनेस प्यार को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आ जाती है बीच में. एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हर्ट क्रिएट हो जाता है, फिर कहना कोई नहीं मानता तो गुस्सा आ जाता है. अगर आज बच्चा ठीक से बात नहीं करे तो हम कहेंगे बच्चा है, फादर से बात भी नहीं करनी आती है, ऐसे जवाब दे दिया उल्टा, मेरे सामने ऐसा कह दिया. उस क्षण वो मैं कौन है जिसके सामने ऐसा कह दिया? मैं फादर. उस समय मैं आत्मा. मुझ आत्मा के सामने उस आत्मा ने ऐसे बात की. क्यों बात की इस तरह से? क्योंकि वो आत्मा दर्द में है. हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत कम होने लगेंगी, हर्ट बहुत कम होते होते खत्म होने लगेगा, क्योंकि आत्मा. रिश्ता वो रोल प्ले कर रहे हैं. बीइंग हैज बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी.
1: जब से आपने कहा ना सोल की बात, और ये एपिसोड सुन सुन के यहां तक पहुंचा कि पहले मैं एक्सपेक्ट करता था मैं एंटर करूं तो फैमिली मुझे विश करे. अब मैंने उल्टा कर दिया. मैं ही बोलने लग गया.
0: क्योंकि जब हम रोल कॉन्शियसनेस थे तो क्राइटेरिया क्या था? मैं बड़ा, मैं एंटर कर रहा हूं, तो जो छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको विश करना होगा. मैं आत्मा. एज क्या है मेरी?
1: इटर्नल है.
0: अपने बच्चों को क्या, अपने ग्रैंड बच्चों को अब देखें. हम बहुत इजीली कहते हैं 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का. कौन 2 साल का, 5 साल का है? उसने जो ड्रेस पहनी वो 2 साल की है. वो आत्मा 2 साल

0: पहले 90 साल की ड्रेस में थी, तो वो अभी कितने साल की है? 90+2।
1: हो सकता है उसको लोग संत महात्मा हो कहीं,
0: क्यों नहीं,
1: लोग उसकी पांव छूते और आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो।
0: हाँ, और हम उसको डांट देते हैं, उस पर हाथ भी उठा देते हैं कि तो छोटा बच्चा है। रिस्पेक्ट फॉर द सोल, बॉडी को देखकर, एज को देखकर, पोजीशन को देखकर तो व्यवहार ही बदल जाते हैं सारे। एक बच्चे को उतनी रिस्पेक्ट देनी है जैसे किसी भी और को देते हैं, क्योंकि वो आत्मा है जिसने एक छोटा नया शरीर लिया है। आत्मा छोटी नहीं है, शरीर छोटा है। इट्स लाइक अ न्यू ड्रेस। सपोज आपने आज ये ड्रेस पहली बार पहनी हो, तो मैं यही कहूंगी क्या आप नए हैं, आप छोटे हैं, मैं बड़ी हूं क्योंकि मैंने तो ड्रेस 6 महीने से पहनी हुई है, आपने तो आज नई पहनी है। वी टॉक लाइक दैट। उसने वो ड्रेस अभी पहनी है नई, लेकिन उससे पहले वो एक 90 साल की ड्रेस में था, उससे पहले वो एक और 100 साल की ड्रेस में था। लॉन्ग जर्नी,
1: लॉन्ग जर्नी। आप ग्रैंड पेरेंट हो,
0: यस, क्यों नहीं हो सकता, वो रोल प्ले भी किया होगा। और आज हम इन्हें बच्चा है ना, बच्चे के साथ कैसे भी बात कर सकते हैं, बच्चे पे हाथ भी उठा सकते हैं, हमें सोचना चाहिए। आप ये देखो, आप अभी इस शरीर में हैं, आपको कोई आके पांव भी छू रहा है, कोई नमन भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लुक एट द जर्नी ऑफ द सोल, इट गेट्स वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर द सोल। आज हम ये शरीर छोड़ते हैं और किसी परिवार में जाते हैं, शरीर हमारा चेंज हो गया, तो हम छोटा बच्चा बन जाते हैं वहां जाके। हमें समझ में नहीं आता, लोग तो हमारे से बहुत अलग तरह से बात करते हैं वहां से। चेंज, बिकॉज पीपल आर टॉकिंग टू द बॉडी नॉट टू द सोल। सो आज सारा दिन ये होमवर्क, आई द बीइंग, मैं आत्मा, दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ। हर एक से मिलने से पहले एक थॉट सामने देखकर, मैं आत्मा, आत्मा से बात कर रही हूँ, कि आत्मा यहाँ रहती है, यहाँ अंदर, बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, बीच में, लेकिन हम कहते हैं यहाँ क्योंकि अंदर कौन पॉइंट करेगा, तो यहाँ। तो हर एक को इस नजर से पहले एक थॉट क्रिएट करें, मैं आत्मा, आत्मा से बात कर रही हूँ। छोटे बच्चे से भी बात करें तो मैं आत्मा, आत्मा से बात कर रही हूँ, सी द वाइब्रेशन विल चेंज।
1: जरूर करेंगे कोशिश। थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: When we connect to people as a role-to-role or position-to-position connection, we radiate vibrations of ego. This creates thoughts of superiority or inferiority and radiates impure vibrations to the body and to the relationship. And a permanent negative recording is created on the soul. When we connect to people on the level of soul consciousness, we radiate pure vibrations which keep the mind peaceful, body healthy, create divine relationships and earn blessings. Every recording on the soul in this state will be a clean recording, and this recording is eternal. Our consciousness or belief system is the source of our thoughts. We create 75 to 80,000 thoughts in a day. It is difficult to check and change the quality of every thought. If our consciousness is, I am a soul, then automatically only pure thoughts will get created. When we are in the presence of a soul conscious person, like a saint or a child, their vibrations bring us in our soul conscious stage, and we feel pure and peaceful. If we are in a soul conscious stage, we will enable others to emerge the divinity within themselves.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-9999.

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। मेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के

0: प्रोग्राम में आपने ट्यून किया है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आइए आज शनिवार है तो करियर ऑप्शन के बारे में बातें करते हैं। हम लोग इस विशेष शनिवार के दिन अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनके करियर के बारे में किसी एक अलग विषय को लेकर बात करते हैं। जैसे पिछली बार हमने जादूगर के बारे में बताया था, कोई करियर कर सकते हैं क्या मैजिशियन बनके, तो हमने काफी अच्छी बातें सुनी थी प्रशांत जी से। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई एज ए मैजिशियन आप क्या क्या कर सकते हैं और मैजिशियन जो है सोशल काम भी कर सकता है और प्लस अपना कमाई भी कर सकता है और बहुत आसानी से सैटरडे संडे आप जो है प्रोग्राम्स करके अपने पूरे महीने का कमाई कर सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में आपने सुना। आज हम लोग जो है रेडियो के बारे में बात करेंगे, करियर इन रेडियो के बारे में। रेडियो के द्वारा हम कैसे अपने करियर को बना सकते हैं, रेडियो के द्वारा हम अपने जीवन का विकास कैसे कर सकते हैं, इस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो सोच रहे होंगे कि रेडियो पे क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, रेडियो में कितने टाइप के वर्क्स होते हैं, कितने टाइप के जॉब होते हैं, वो सारी बातें आज आपको पता चलने वाला है। तो दिन थाम के बैठिए और आज के हमारे खास मेहमान कमलेश जी जालंधर से आए हुए हैं। ब्रह्म कुमारी कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने वालों का भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे मधुबन रेडियो पर आकर।
0: जी, जी, जी।
1: और रेडियो को अगर मैं सच में कहूँ तो रेडियो मेरी जान है, मेरा जीवन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करने में, क्योंकि आपने ऑल इंडिया रेडियो में जालंधर में विशेष रूप से एक 30 साल आपने शायद काम किया है।
1: जी।
0: तो एक लंबा सफर आपने तय किया है रेडियो में, तो आपको रेडियो का A to Z सारी चीजें पता है। और निश्चित तौर पे हमारे जो आज के भी लिसनर्स हैं, हमारी युवा साथी हैं जो करियर के लिए कुछ नया हटके करना चाहते हैं, उनके लिए शायद बहुत अच्छा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि रेडियो से आपकी ताल्लुक कैसे बने और कैसे जुड़े, वो कहानी जरूर बताइए ताकि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लगे।
1: जी रमेश भाई, अगर रेडियो की बात मैं करूं तो रेडियो का सफर जो 30 साल का बहुत ही खूबसूरत सफर रहा और जीवन का गोल्डन पीरियड मैं कह सकती हूं इसको, क्योंकि जन जन तक पहुंचने का एक जरिया है रेडियो, हर घर में पहुंचने का जरिया है रेडियो। और मैं रेडियो से जुड़ी तो मैं बात करूंगी कि जब बचपन में मेरे फादर साहब जो सिग्नल में थे आर्मी में, वो रेडियो खुद बनाते थे घर में।
0: अच्छा,
1: तो जैसे वो टेबल पर सारा सामान पड़ा रहता था तो मैं पास बैठती थी उनके, वो देखती रहती थी। तो फादर साहब कहते थे इनको टच नहीं करना, तो मैं इनको बोलती थी कि ये जो ढोलक पड़े हुए हैं इनमें से बंदे बोलते हैं क्या? तो कहते नहीं, पूछना नहीं है कुछ, बस देखना है। तो मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में रेडियो मेरा करियर बन जाएगा। तो रेडियो पर जब भी मुझे, मतलब मैं आई रेडियो पे, उस समय की बात करूंगी तो बाय चांस कह लीजिए या मेरा कुदरत का करिश्मा कह लीजिए या मेरे मुकद्दर कह लीजिए, रेडियो पर मेरा आना हो गया। उसमें मुझे कोई खास ट्रेनिंग तब लेनी नहीं पड़ी क्योंकि मेरी आवाज और अंदाज कह लीजिए, मेरी प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी थी। तो फर्स्ट उसमें टेक में मेरा वॉयस टेस्ट हुआ और इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई।
0: नहीं, रेडियो पे इंटरव्यू के लिए आप कैसे गए? आप कोई पेपर में इश्तिहार आया था या डैडी?
1: जी जी जी, रेडियो पे इश्तिहार अखबार में ही आया था।
0: जी जी,
1: तो मैंने उसको पढ़ा और उसमें इंटरव्यू के लिए मैंने डेली अखबार में देखना शुरू किया। मुझे एक्सपर्ट थे जो वहां के, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा लेटेस्ट जो न्यूज चल रही है वो आप पढ़िए, एक हफ्ते का तो तकरीबन पढ़ लीजिए क्योंकि उसी में से इंटरव्यू आता है। तो वॉयस टेस्ट का ऐसे है कि वॉयस मेरी, आप कुदरत का कह लीजिए, एक तोहफा है मेरे पास। हाँ जी। और दूसरा ये कि आप जिस माहौल में रहते हो, आर्मी पर्सन होने की वजह से हम जगह जगह जाते थे, तो वहां का रहना सहना बोलना वाणी, है ना, ये सब मैंने सीखा। तो इन चीजों का मेरा रेडियो मेरा बहुत ये काम आई ये चीजें। और जब मैंने रेडियो पे ज्वाइन, फर्स्ट जब मेरी प्रोग्राम था तो मैं घबराई हुई थी क्योंकि माइक को फेस करना कोई बहुत मतलब मुश्किल काम है, बड़ा कुछ आसान काम नहीं है, बहुत घबराई थी। लेकिन जब मैंने शुरू कर दिया, मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि चलिए अनाउंसमेंट कीजिए, लिखकर अनाउंसमेंट कीजिए, वैसे नहीं करनी है, तो मैंने वो मीटर लिखा और बोलना शुरू कर दिया। बस उसके बाद तो जैसे मेरे पर लग गए और मैं एरोप्लेन का काम किया मैंने रेडियो में कि मैं उड़ती चली गई ऊंचे आसमान में, बहुत ही। और जब मैं लोगों से जुड़ी, मुझे फीडबैक आनी शुरू हुई, हमारे पत्रों का प्रोग्राम होता था तो उसमें मेरा नाम आता था कि कमलेश जी ने आज फलां प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, कमलेश जी की आवाज हमें बहुत अच्छी लगी, अंदाज

0: बहुत अच्छा लगा। तो अनाउंसर जो है, कलाकार है, वो तारीफ का भूखा होता है, तो मेरी तारीफ होती थी तो मैं दिन-ब-दिन अपने आप को और निखारती गई। तो रेडियो ने मुझे तराशा, निखारा, मेरी आवाज को, मेरी शख्सियत को उसने निखारा। तो जितने भी प्रोग्राम जिसमें मुझे याद है कि हम इंटरव्यूज करते थे, बहुत मतलब हिंदुस्तान से बहुत बड़े बड़े लोग आए, और उसमें आर्टिस्ट भी थे, संगीतकार भी थे, और प्रशासनिक लोग भी थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे किस महकमे में क्या काम चलता है, कैसे काम होता है। मुझे याद है हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बाकी सब ठीक है, पब्लिक ग्रीवेंसेस का ये प्रोग्राम था। तो उसमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे पास आए थे ऑफिसर, तो उनसे बात हुई, आधा घंटा हमने प्रोग्राम किया, तो 3 महीने बाद उनको हमने फिर बुक किया। तो उससे पहले उनका एक दो बार फोन आया तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन जब वो दोबारा आए हमारे ऑफिशियली, उनको हमने बुलाया प्रोग्राम के लिए, तो एजुकेशन में उसमें था कि रोजगार कैसे आप हासिल कर सकते हैं, या आप एजुकेशन जो है हायर कैसे ले सकते हैं, या स्कूलों में जैसे बहुत दूर के स्कूल है, उन बच्चों को पता नहीं है स्कूल जाने का, और पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं है, तो ये चीजें वो बताने वाले थे। तो आते ही उन्होंने कहा, कमलेश जी आप तो बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो बाकी सब ठीक है बहुत दूर तक सुनाई दिया, और हमारे पास 40,000 लोगों की एप्लीकेशन आई कि हमारे बच्चों को एडमिशन दीजिए हमारे डिपार्टमेंट में आपके। तो ये हमारी प्राप्ति थी। उसके बाद हमने डॉक्टर्स का ये सरकार ने शुरू किया था स्वस्थ भारत प्रोग्राम, तो स्वस्थ भारत प्रोग्राम में हमने सभी तरह के डॉक्टर्स को, एलोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर और यूनानीपैथी डॉक्टर, मुझे याद है कि एक 95 इयर्स ओल्ड हम डॉक्टर लेके आए थे मलेरकोटला से, उनको हम गाड़ी में लेके आए और स्टूडियो तक पहुंचाया, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं नर्वस देखकर पकड़कर बता सकता हूं कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। तो ये बातें बहुत दूर दूर तक सुनाई देती थी, और हमें पाकिस्तान से बहुत कॉल्स आती थी, कमलेश जी आप बहुत अच्छे सवाल पूछती हैं, और डॉक्टर एकदम से सारी जानकारी इस बीमारी के बारे में दे देते हैं, तो हम अवेयर हो गए हैं, हम खुद बहुत अवेयर हो गए थे। और खास करके फीमेल्स के मुझे फोन आते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही थी, आपका प्रोग्राम सुना तो मैंने अपने आप को अपने खाने पर ध्यान देना शुरू किया, मैंने अपने योग करना शुरू किया, मैंने सैर करना शुरू किया, तो मैं अपने आप को हेल्दी फील कर रही हूं। तो ये हमें फीडबैक जो मिलती थी वो हमारे लिए भी एक अच्छी डाइट का काम करती थी। तो दिन ब दिन हम अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में इन्वॉल्व रहते थे। जी
1: कमलेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रेडियो से कैसा आपका जुड़ना हुआ, और जैसे कि उस समय जब आप जुड़े आज से 30 साल पहले, तो उस समय रेडियो सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, तो आप जालंधर से जुड़े या फिर कहीं से जुड़े, कहाँ कहाँ आपने रेडियो पे काम किया थोड़ा सा?
0: जी, जालंधर हमारा नेटिव प्लेस है, तो वहीं से हमने मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो रीजनल सिलेक्शन होती है अनाउंसर की, और ट्रांसफर भी होती है, क्योंकि तीनों लैंग्वेज पे उसकी पकड़ होनी चाहिए। तो मेरे खुशकिस्मती थी कि मेरे परिवार के साथ ही मैं अपनी जॉब वहां कंप्लीट कर पाई, ट्रांसफर मेरी कहीं भी नहीं हुई। तो ये सब मतलब है, मुझे कोई इसमें मुश्किल नहीं लकी हुई रही मैं इस मामले में। तो हम लोग एक ही लगातार जो प्रोग्राम शुरू किया, तो तन मन धन से उसको पूरा किया, अच्छे से उसको लोगों तक पहुंचाया। लोग रेडियो जो है वो एक आम आदमी का रेडियो है ना, साधन है सीखने का। आप देखिए कि जो कोई रेडी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, आजकल तो रेडियो, एफएम रेडियो शुरू हो गए, तो मोबाइल में आ गया, हर की पॉकेट में जो रेडियो पहुंच गया है, तो वो अपने परिवारों के लिए अवेयर हुए। हमारे पास एक रिक्शे वाले आए, तो वो जैसे उनको हमने इंटरव्यू किया, तो वो कहते हैं जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैंने सोचा मैं रिक्शा चलाता हूं तो मैं कल को कोई और अच्छी गाड़ी लेके अपने बच्चों को रोजगार पे लगा दूंगा, लेकिन जब से मैंने आपका प्रोग्राम सुनना शुरू किया, बच्चों का प्रोग्राम सुनता हूं, बहनों का प्रोग्राम सुनता हूं, तो उसमें आप बहुत कुछ बताते हो कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, तो मैंने उनको स्कूल में डाल दिया, मैं खुद मेहनत करता हूं और उनको पढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश है। तो ये हमारी प्राप्ति है।
1: बिल्कुल कमलेश जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। निश्चित तौर पे जब हम लोग रेडियो के माध्यम से कुछ सुनाते हैं और लिसनर के जीवन में चेंजेस आते हैं, तो हमें बेहद खुशी होती है जब उनका रिप्लाई मिलता है। तो जैसे आपको सुन रहा था, मुझे कुछ याद है कि हम लोग बीच में रेडियो पर एक प्रोग्राम किया था नशा मुक्ति पर, और हमें लगता था कि अब क्या

0: पॉजिटिव रिप्लाई आएगा तो शुरू कर दिया हमने कुछ वीएपी कुछ डॉक्टर्स वगैरह लेके उस पर बात करना शुरू कर दिया। ऐसे कहते हैं कि बात बनती है या बात शुरू होती है तो बात बनती भी है,
1: कहीं पहुंच भी जाते हैं
0: कहीं पहुंच भी जाते हैं। तो हमारे जो लिसनर्स थे काफी लोगों ने रेडियो के प्रोग्राम सुनकर उन्होंने फीडबैक दिया कि हमने आपका प्रोग्राम सुन के आज से नशा छोड़ दिया है, आज से हमने चाय छोड़ दिया है, बीड़ी छोड़ दिया है। तो ये जो रिप्लाईज हमें मिलने लग गई हैं तो उससे हमें बहुत खुशी हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसका असर हो रहा है। तो चलिए कमलेश जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होते हुए इस कार्यक्रम में, और मैं चाहूंगा कि अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। वैसे सुना है कि आप गाते भी अच्छा है तो क्यों ना आपका ही गाना सुना जाए
1: चलिए मैं चंद लाइनें अपने सुनने वालों की नजर जरूर करूंगी। रमेश भाई आप भी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जो सुनिए। तो वैसे तो गाने का शौक मुझे, आप सच पूछिए तो मुझे भजन गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: लेकिन फिल्मी गीत भी बहुत शौकीन हूँ मैं गाने के, जब भी मौका मिलता तो मैं वो मौका हाथ से जाने नहीं देती हूँ। तो एक गीत है लता जी की आवाज में है ये गीत, और मैं आपकी नजर करूंगी। इसमें जो शुरू करती हूँ मैं
0: जी।

0: सर जयपुरी साहब की ये बोल, लता जी की आवाज, शंकर जयकिशन साहब का संगीत, ये आपने गीत सुना और आई मिलन की बेला फिल्म का ये गीत आपकी नजर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई हमें आपने जो गीत सुनाया हमें, और आशा करूंगा हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको यही गाने का जो है विशेष आनंद लेते हैं, म्यूजिक के साथ भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, हमने एक ही गाने को दो बार सुना है ना, मजा आया होगा आपको। कमलेश जी से भी सुना और वैसे भी हमने पूरा जो है म्यूजिक के साथ गीत भी सुना। तो चलिए, कभी कभी हमें जो अच्छे गीत होते हैं उन्हें दो तीन बार सुनना चाहिए, ताकि हमारे मानस पटल पर वो असर करता है ना। जो अच्छे विचार होते हैं उस पर आपको जो है बार बार सोचना चाहिए, उन चीजों को बार बार याद करना चाहिए, ताकि आपके मानस पटल पर वो काम करते रहें और आप एक अच्छे इंसान बने रहे, है ना। तो आइए, अब आपस आपको फिर से जोड़ना चाहूंगा मैं कमलेश जी से। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कि जब रेडियो की बात आपने की, आपने अपना करियर बनाया, 30 साल तक आपने उसमें काम किया, तो बहुत सारे अच्छे और सुंदर एक्सपीरियंस आपके पास है ही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हमारे युवा है, जो कॉलेज है या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको अगर रेडियो से जुड़ना हो तो क्या वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, किस तरह का प्रोफेशन उनको ज्वाइन करना चाहिए, यानी किस तरह की पढ़ाई उनको करना चाहिए रेडियो से जुड़ने के लिए, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एक स्टेपिंग स्टोन्स के बारे में बताइए, शुरुआत कहां से करें।
1: बिल्कुल रमेश भाई, अगर रेडियो से जुड़ने की बात हम करें तो सबसे पहला जो मेरे हिसाब से, हर एक का अपना अपना नजरिया होता है कि कोई भी लैंग्वेज जो है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, पूरी ग्रिप होनी चाहिए, ताकि अगर आप सही बोलेंगे, सही बात करेंगे तो लोगों के मानस पटल पर उसका अच्छा असर होगा और देर तक रहेगा। तो लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए। जब हमने रेडियो स्टार्ट किया तो तब शायद ट्रेनिंग का दौर कम था, हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, एकदम से रेडियो ज्वाइन हो गया, इंटरव्यू हो गई, टेस्ट हो गया पास, तो हमने ज्वाइन कर लिया। प्रैक्टिस से हम बहुत कुछ सीख गए। लेकिन आज की बात हम करें तो मीडिया का दौर है, इसमें तो बाढ़ आई हुई है। अगर आप कहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग है, और मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन जो है वो एक बेस है उसका, सबसे पहले है ना। तो ग्रेजुएशन तो आपको करनी ही चाहिए, और किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कुछ एक्सपर्ट बन जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। रीजनल लैंग्वेज है, जैसे एफएम रेडियो में तो रीजनल लैंग्वेज और मिक्स्ड लैंग्वेज आजकल चल रही है, तो उस पर भी आप मतलब होमवर्क कर सकते हैं, और रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग लीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, और अपनी प्रोनंसिएशन पर ध्यान दीजिए सबसे पहले। जैसे हम रेडियो की लैंग्वेज जो आज मिक्स हो गई है ना, उसमें हमें थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है, और नई जो पीढ़ी है उसको पसंद भी कर रही है। तो आप जो बात कहना चाहते हो एक लैंग्वेज में स्पष्ट कहिए, ताकि लोगों को उसका असर ज्यादा हो। दूसरी बात ये कि रेडियो जैसे बहुजन हिताए बहुजन सिखाए, ये जन जन तक पहुंचने वाली चीज है, तो उसके लिए आपको अगर आप रेडियो जो है पहुंचता है हर परिवार तक पहुंचता है, अगर उसमें किसानों की बात होती है, खेतीबाड़ी की बात है और इंडस्ट्री की बात होती है, परिवारों में जो है परिवारों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, एजुकेशन की बात होती है, देश की तरक्की की बात होती है, हमारी राष्ट्रीयता की बात होती है, ये सारी बातें हमारे मन में जो है उनको उन पर पकड़ होना जरूरी है, ताकि हम कुछ भी कहें तो सुनने वाले के कान में पहले तो वो रस घोले, अच्छे से बात करेंगे तो लोगों पर उसका असर होगा। और घबराने की बात नहीं, हम ये कह देते कि बेरोजगारी है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि रेडियो जॉकी का काम बहुत छोटा है, रेडियो जॉकी का काम बहुत जिम्मेवारी का काम है। तो आप इसकी ट्रेनिंग लेंगे तो जरूर आगे बढ़ पाएंगे, बहुत इसमें स्कोप है, डबिंग का है, एडिटिंग का है, म्यूजिक का अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। कैसे

0: पार्ट टाइम करो इसको, है ना। ये तो मतलब है संगीत के साथ आप जुड़ गए तो आपके सारे काम संवर गए, आप जो आपको पॉलिश कर दिया रेडियो ने, है ना। मैं अपनी बात करूं तो शायद मैं आज इतनी बातें कर रही हूं तो इतनी बातें नहीं करती थी मैं, मुझे दुनिया का ज्ञान नहीं था, तो अब मुझे ज्ञान देना बहुत आ गया है सबको, हर टॉपिक पे। आप कोई टॉपिक शुरू कर लीजिए तो उसमें मैं कितनी देर बात कर सकती हूं मैं बता ही नहीं सकती, है ना। तो ये चीजें बोलने का आपको, आपकी अपने मन की बात कहने का आपको मौका मिलता है,
1: और निश्चित तौर पे आपकी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, हमारे सभी दर्शक मित्र, श्रोता मित्र सुन रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा होगा कि क्या इतना आसान है रेडियो से जुड़ना। बिल्कुल बिल्कुल आसान तो है, लेकिन आपकी रुचि और आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत रंग लाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या होता है कि हर चीज हर व्यक्ति नहीं कर सकते, ये बात है, लेकिन आपकी रुचि जहां पर है अगर उस चीज को आप करना शुरू कर देते तो आपको मदद भी मिल जाता है, आप लगन से करते भी है और फिर चीजें जो है बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, रेडियो में आपको कुछ करना है तो मोस्ट वेलकम, स्काई इज द लिमिट, हर जगह जो है आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बहुत चांसेस है। बस शर्त यही है कि आपकी रुचि कितना है, आपकी इच्छा शक्ति कितना मजबूत है इस चीज को करने के लिए।
0: किसी को लिखने का शौक है तो लिख सकता है वो, है ना, किसी को गाने का शौक है तो वो गा सकता है। ये चीजें जो है आगे जैसे जैसे आप उसमें जुड़ेंगे ना तो बहुत सी चीजें
1: आएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर विशेष कमलेश जी को सुन रहे हैं रेडियो के बारे में, रेडियो क्या है, रेडियो में कैसे काम होता है, रेडियो से कैसे आप जुड़ सकते हैं, वो सारी बातें में आप सोच रहे होंगे कि जुड़ के फायदा क्या, कुछ कमाएंगे भी क्या, नहीं है ना, कमाएंगे भी, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस विषय को लेकर बातें कर रहे हैं हम लोग आज। रेडियो में कैसे करियर कर सकते हैं, रेडियो के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, इस विषय को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। कमलेश जी हमारे साथ हैं जिन्होंने 30 साल रेडियो में अपनी सेवा दी है और अभी भी उनकी जिज्ञासा है कि मैं रेडियो से ही जुड़ा रहूं। तो एक बार व्यक्ति रेडियो में आ जाता है तो वो रेडियो से कहीं अलग नहीं हो पाता क्योंकि उसकी जिंदगी बन जाती है रेडियो। तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आप अगर सोच रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं चाहूंगा कि आप इस और जरूर आइए। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें क्या कमाई हो सकती है, किस तरह से हमारा जो है शुरू होता है। और कमलेश जी खुद रेडियो में रही हैं 30 साल ऑल इंडिया रेडियो में जालंधर में, तो उन्होंने वो सारी चीजें देखी हैं और अभी शायद उन्होंने वो भी चीजें देखा है जहां पर लोग परमानेंटली इसमें होते थे और अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम शुरू हो गया है, तो वो भी फेज उन्होंने देखा है। तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा हमें अच्छी पे स्केल के बारे में पता चलेगा कि अभी और पहले में क्या क्या डिफरेंस हुए हैं। जी कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत फिर से। मैं चाहूंगा कि अब रेडियो से कमाई कैसे कर सकते हैं वो बताइए।
1: बिल्कुल रमेश भाई, मुझे लग रहा है कि सुनने वाले बिल्कुल कान लगाकर बातें सुन रहे होंगे। मुझे बहुत आनंद आ रहा है।
0: अभी तो ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाया भी होगा।
1: तो ऐसा है कि हमें जब ट्रेनिंग मिली ना रेडियो में जाने की, तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने ट्रेनिंग दी कि आप जब रेडियो पे ज्वाइन करोगे तो एक तो समय के पाबंद होना पड़ेगा, बिल्कुल मिनटों का हिसाब रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि घर की टेंशन है, जो बैग आपसे साथ लेके घूमते हो सारा दिन, उसको बाहर एक पेड़ लगाए गेट के, वहां टांग के आना है और अंदर आप बिल्कुल फ्रेश होके आना, और जब वापस जाना तो वो बैग अपना टेंशन का अपने घर वापस ले जाना है, टेंशन अंदर नहीं लेके आनी है। तीसरी बात ये कि अगर आप इनकम की बात करें रेडियो पे, तो हमारे पास बहुत से राइटर आए, बहुत से संगीतकार, गीतकार, हम सरकारी तौर पे उनको फीस मिलती थी, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बात है तो वो धीरे धीरे सरकार ने उसकी मतलब है बढ़ाई है वो भी, और उसमें बहुत से बच्चे जो है पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं।

0: वो छह ड्यूटीज करते हैं और बाकी अपनी पढ़ाई साथ साथ चल रही है उनकी। तीसरे इसमें आप जो भी काम सीख लेंगे, अगर आप बोलने के एक को आप को अच्छा लगता है, बोल सकते हैं आप, तो फिर तो आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं। अगर आपको डबिंग एडिटिंग का काम सीख लेते हैं तो आप आजकल ऑनलाइन कुछ भी रिकॉर्ड कीजिए और कहीं भी पहुंचा दीजिए। देखिए, एड का जमाना है, शोहरत का जमाना है, हर चीज को बिकती है जो एड से बिकती है, तो वो आप बनाना सीख जाइए, है ना। उसमें आप बोल के अपनी आवाज दे सकते हैं, उसको एडिट करके कहीं भी आप दूसरे देशों में लोग, बाहर के देशों को लोग भेज रहे हैं जिन्होंने काम करना है। तो इसके अलावा आप जैसे फीमेल की बात करूं तो वो हम उनको बुक करते थे, वो हमें पकवान बता के जाते थे, उनको भी हम फीस देते थे। और बच्चों की बात करें तो वो कोई कहानी सुना के जाता है, कोई गीत सुना के जाता है, कोई शब्द, कोई भजन, तो उनको हम फीस देते थे। तो आजकल पैसे का दौर है, तो कोई भी काम पैसे के बगैर नहीं होता है। तो आपको अगर इसमें काम करना है तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। रमेश भाई, अभी आप बात कर रहे थे कि हमने जो ऑनलाइन फला फला प्रोग्राम शुरू किए तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, और आप उसको एडिट करके ऑनलाइन सिंगिंग का प्रोग्राम चल रहा है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो
1: चल रहा है।
0: आप किसी प्रोग्राम की शुरुआत करोगे ना तो तभी आपको
1: बिल्कुल
0: चलेगा। रेडियो जॉकी की बात करें, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो मुझे लगता है कि मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरा जो जीवन में जो भी तरक्की हुई है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हमने जो सीखा है वो सिर्फ रेडियो से सीखा है। उसमें बहुत सारी शख्सियतें जो हमारे पास आती थी, हमारे सामने बैठती थी, उनके जीवन के बारे में हम सीखते थे कि उन्होंने कैसे जीवन शुरुआत किया। और आज दूसरी बात हम करें कि नया दौर है, बच्चों की शादियां भी जब होती हैं तो लव मैरिज भी हुई, अरेंज मैरिज भी हुई, तो फट से आज शादी हुई, कल डाइवोर्स हो गया, है ना। तो ये चीजें जो है वो हम सीखते थे कि पुराने लोग कैसे एक दूसरे से, मतलब है, तालमेल बिठा के परिवारों को चलाते थे। तो ये सब चीजें हमने रेडियो से सीखी। वैसे हम कहाँ मिलते, माइक ने हमें ऐसे लोगों को मिलाया जिन्हें हमें, जिन्होंने हमारे ही जीवन को संवार दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इनकम का साधन बनाना है अगर आपको, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, समय के पाबंद होना पड़ेगा, आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, शौक रखना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा, है ना। ये सब चीजें सीखेंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: और ये बहाना नहीं लगाना कि बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं मिलता। काम बहुत मिल रहे हैं, आप शुरुआत कीजिए, कभी ना कभी आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे।
1: हाँ, करने वाले के लिए काम बहुत है, नहीं करने वाले के लिए अच्छा काम भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे ऐसे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आज के इस प्रोग्राम में, और हमारे सभी श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि रेडियो में आपके जो अच्छे अनुभव है या फिर आपने किन के इंटरव्यूज किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर बता पाए तो।
0: इंटरव्यू के बारे में, हर तरह के इंटरव्यू हमने, हर तरह के प्रोग्राम किए, जिसमें मुझे याद है कि कई बार जो जिनसे हमने इंटरव्यू करना होता था, क्योंकि वो ऑफिसर हैं, जैसे डीसी है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर हमारे पास आए, उनका भी समय कोई पाबंदी होती है, कभी बिजी हो जाते हैं, तो हमने उनको बुक कर लिया और वो समय पे आए नहीं, तो प्रोग्राम शुरू हो गया। आधे घंटे का प्रोग्राम है तो हम उनकी वेट भी कर रहे हैं और प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया। तो जैसे बाकी सब ठीक है, प्रोग्राम हमने शुरू किया था, उसमें हम किसी भी फील्ड से, जैसे जो सरकार की योजनाएं हैं उनके कमजोर वर्ग के लिए, उनके बारे में हम बात करते थे। तो तब तक मैं शायद 20-25 प्रोग्राम कर चुकी थी, तो डीसी साहब लेट हो गए, उनकी गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस गई, तो मेरे पास 15 मिनट बोलना था, और हमारी जो जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को, वो हमारे डायरेक्टर साहब उनको लेके मेरे सिर पर खड़े थे कि देखो अभी प्रोग्राम शुरू होगा, डीसी साहब आएंगे और आप प्रोग्राम सुनिए, ऐसे लाइव प्रोग्राम जाता है। तो उसमें आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज से पता नहीं लगना चाहिए कि कुछ हुआ है, चाहे आसपास आग लगी हो तो आप उसमें उफ नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते, आपको अपना प्रोग्राम शो
0: मस्ट गो ऑन। तो मैंने वो प्रोग्राम शुरू किया, उधर से इशारा हो गया जी मैडम शुरू करो, तो डीसी साहब तो नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने फिर प्लान किया कि जब तक वो नहीं आते हैं तो तब तक मुझे क्या करना है, माइंड मेकअप हो गया मेरा। तो जितने मैंने पिछले 20-25 प्रोग्राम किए थे उनका मैंने वो याद करना शुरू, फला प्रोग्राम में फला आए थे तो उन्होंने ये बताया था,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो। दोस्तों, मैं हूं आरजे सिन्हा, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में, यानी एक मुलाकात प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ी हुई है श्वेता खरे जी। श्वेता जी पिछले 20 साल से प्राणी हीलिंग से जुड़ी हुई है। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो पुनेरी आवाज के स्टूडियो में।
3: थैंक यू सो मच। एक्चुअली सबसे पहले तो थैंक यू आप लोग का मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि प्राणी हीलिंग क्या है, ये आपके श्रोताओं को मैं बता सकती हूँ।
2: श्वेता जी, पहले तो आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि बेसिकली आप कहाँ से हैं, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, इसे एक शॉर्ट जर्नी हमारे श्रोताओं को बताइए।
3: जी बिल्कुल। मेरा जन्म स्थान प्रयागराज है, जहाँ पे मैं चार साल तक रही हूँ। उसके बाद अयोध्या के पास आईटीआई मनकापुर एक कैंपस है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है और ग्रेजुएशन भी मैंने वहां से किया है। उसके बाद एमबीए के लिए मैं लखनऊ में आ गई और उसके बाद आफ्टर मैरिज मैं पुणे में सेटल्ड हूँ। और प्राणिक हीलिंग का जितने भी कोर्स थे वो सारे मैंने लखनऊ से ही किए हुए हैं।
2: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। श्वेता जी, जैसे कि आप पिछले 20 साल से प्राणिक हीलिंग से जुड़ी हुई है, तो हम जानना चाहेंगे कि प्राणिक हीलिंग क्या है एंड इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं।
3: जी बिल्कुल। पहले तो प्राणिक हीलिंग के बारे में ये बताना चाहूंगी कि ये जिनके नाम से अभी हम सब जानते हैं, मास्टर चोआ कोकसुई, उन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया है। लेकिन बेसिकली ये हमारे इंडिया का ही कोर्स है, जिसको गौतम बुद्धा जी, सबसे पहले उन्होंने ही हमें इसके बारे में बताया था। लेकिन ये हीलिंग जाते जाते जापान तक पहुंची और फिर मास्टर ने इसको और आगे बढ़ाया। बेसिकली उनको उसकी बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत शॉर्ट में लाके हम सारे लोगों को उसको उसकी टीचिंग दी है। आपको पता होगा प्राणिक हीलिंग जो वर्ड आया है, ये संस्कृत के वर्ड प्राण से बना है, जिसका बेसिक मीनिंग है लाइफ फोर्स। yes. अपने लाइफ के जो अपना जो प्राण शक्ति होती है, उसी के थ्रू हम हील खुद को करते हैं। सिर्फ जो फिजिकल एलिमेंट्स है, प्रॉब्लम्स है, सिर्फ हम उसमें ही डील नहीं करते। प्राणिक हीलिंग सबसे ज्यादा इमोशनली, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली भी उससे आपको हेल्प करता है। आजकल आप जानते हैं हर किसी की लाइफ में इतना स्ट्रेस हो चुका है, इतना बच्चे हो गए, आज का यूथ हो गया, इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम प्राणिक हीलिंग में कोशिश करते हैं कि उनको उन चीजों से, स्ट्रेस से और डिप्रेशन से निकाल सके। तो सबसे ज्यादा तो हेल्पफुल प्राणिक हीलिंग इसी में है। सेकंड थिंग इज, सो अगर इनके बेनिफिट्स के बारे में बोले तो बेसिकली हम, आपको सभी को पता है कि हमारी बॉडी चक्र से, उसमें 7 मेजर चक्रस होते हैं और 11 उसके डिविजन्स होते हैं चक्रों के, और हमारा ऑरा जिसपे सारी एनर्जी प्रॉपर वर्क करती है, जो एनर्जी का जो सबसे पहले इम्पैक्ट अगर हमारे बॉडी में पड़ता है तो पहले ऑरा में पड़ता है, ऑरा से वो धीरे धीरे बाकी चक्रों में जाता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं प्राणिक हीलिंग से हमें ये बेनिफिट है कि जो भी हमारे अंदर की एक एबिलिटी होती है टू हील आवर सेल्स, हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, प्राणिक हीलिंग उसी पे वर्क करती है। हमारे उन चक्रों को पहले वो देखती है कि किन चक्रों में प्रॉब्लम है, हम उसको स्कैनिंग के थ्रू देखते हैं कि किन चक्रों में किसी में डिप्लेशन है, किसी में कंजेशन है, या कोई चक्र बहुत हाइपर एक्टिव है जिसकी वजह से कई बार एंग्जाइटी होती है। ये सारी चीजों को स्कैन करके देन उनको कैसे एनर्जाइज करना है और स्टेबलाइज करना है टू प्रॉपर वर्क के लिए। सो बेसिकली ये हेल्प करता है कि हम अपनी बॉडी को अपने आप से प्रॉपर हील कर सके।
2: सो श्वेता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे प्राणिक हीलिंग के बारे में जानकर, और कि कैसे हम हमारी खुद की बॉडी को खुद की एनर्जी से हील कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जरूर हमारे श्रोताओं के लिए भी यूजफुल रहेगी। सो श्वेता जी, मैं एक बात जानना चाहूंगी, कैसी कौन सी बात है जो आपको प्राणिक हीलिंग सीखने के लिए प्रेरित कर गई?
3: जी, ये एक मेरे खुद का एक्सपीरियंस था। मेरी एक छोटी सी स्टोरी है कि जब मैं इंटर कर रही थी तो मेरी एक हैबिट थी कि मैं सारी पढ़ाई रात को ही करती थी, मैं मेरे से सुबह पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैं पूरी रात जग के पढ़ाई करती थी। वो हैबिट इतनी ज्यादा हो गई कि आफ्टर एग्जाम, मेरे बोर्ड के एग्जाम्स के बाद भी मैं जगते रहती थी, और दिन में भी फ्रेंड्स आ गए, कभी कोई आ गया तो सोने को होता ही नहीं था। तो वो मैं उसकी वजह से बीमार पड़ने लगी, क्योंकि लाइफ से बैलेंस पूरा चला गया। तो काफी दिन तक ट्रीटमेंट होता रहा बट कोई भी उसका बेनिफिट नहीं हुआ, मैं बीमार और ज्यादा होते चली गई। देन किसी ने हमें बताया, मेरी मम्मी को बताया कि एक लखनऊ के डॉक्टर कैप्टन सक्सेना सर हैं, आप उनसे एक बार मिलिए। और देन ही केम टू मी और उन्होंने पूरा मुझे स्कैन किया।

0: तो वो जो स्कैन किया वो ऐसे था कि जैसे उनको किसी ने मेरी रिपोर्ट्स पढ़ाई है, जबकि ऐसा नहीं था। वो मुझे जानते भी, फर्स्ट टाइम वो मुझसे मिले थे। और देन 10 डेज का सिटिंग मैंने लिया और विद इन 2-3 सिटिंग्स में ही मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया एंड 10 डेज बाद तो टोटली फिट एंड फाइन। तो वहां से मुझे ये चीज लगी कि नहीं, ये साइंस क्या है, ये बहुत अमेजिंग चीज है ना, कि आपको उसके बारे में बस इतना पता है कि ये एक इंसान है, आपने उसको देखा, बाकी आपको कुछ भी नहीं मालूम है। एंड आप उसके बारे में बता सकते हैं उसको क्या क्या प्रॉब्लम है और आप उसको हील कर सकते हैं। एंड आई डिसाइडेड कि मैं इस चीज को सीखूंगी जरूर। और उसके बाद फिर मैंने जितने भी कोर्स होते थे इसके हो सकते थे, मैं उसी टाइम मैंने करना शुरू कर दिया और फिर प्रैक्टिस में हूँ, तब से मैं प्रैक्टिस में हूँ।
1: श्वेता जी, अच्छा लगा जानकर कि कैसे आपको आपका प्राणिक हीलिंग का एक्सपीरियंस आपको प्राणिक हीलिंग सीखने के लिए प्रेरित कर गया। सो दोस्तों, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, बट आपको ही मुझ जाइए और सुनते रहिए रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: दोस्तों ब्रेक के बाद मैं आरजे स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका और हमारे साथ जुड़ी हुई है श्वेता जी। श्वेता जी आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे एक मुलाकात शो में।
1: जी थैंक यू सो मच।
0: श्वेता जी अपार्ट फ्रॉम प्राणिक हीलिंग जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तब आप क्या करना पसंद करते हैं, आपके हॉबीज क्या है वो मैं जानना चाहूंगी।
1: हॉबीज तो बेसिकली मुझे पसंद है ट्रैवलिंग और कुकिंग, मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें। एंड एक हॉबी है जो जिसके बिना शायद मैं रह भी नहीं सकती, दैट इज म्यूजिक, सिंगिंग। तो वो मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब बचपन से ही मैं सिंगिंग के उसमें हूँ। जी
0: श्वेता जी एक गाना हो रहा है हमारे श्रोताओं के।
1: श्योर श्योर।

श्वेता जी, बहुत अच्छा लगा आपका गाना सुनकर और बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी। तो दोस्तों, श्वेता जी गाना तो बहुत अच्छा गाती है, खाना भी जरूरी अच्छा बनाती होगी।

0: श्वेता जी, आज के जो जेन सी यूथ है जो कैसे अलग प्रकार की चिकित्सा पद्धति जैसे कि प्राणी किलिंग एंड ऑल इसमें बिलीव नहीं करते हैं, तो आप उनको आज क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: जी, मैं यही कहना चाहूंगी, जो सी ये मैंने जैसे बोला प्राणी किलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या, ये सबसे पहले तो हम प्राणी किलिंग के लिए आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, ये आपकी अपनी एनर्जी है। तो सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि आप प्लीज अपने एनर्जी पे बिलीव कीजिए। और सेकेंड चीज, ये हमारे भारत में ना बहुत सारे साइंस थे जिसको समहाउ हम ही ने उसको बिलीव नहीं करके बाहर छोड़ दिया, अभी बाहर के लोग उसको वापस ला रहे हैं और वो टेक्निक अभी उनकी हो गई है, जबकि बेसिकली ये सारा ओरिजिन यहीं का है। तो प्लीज हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, पद्धतियां हैं जो इतनी सारी, उसको बाहर मत जाने दीजिए, बिलीव कीजिए और एटलीस्ट एक बार जरूर इन चीजों का एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हार्मफुल चीजें नहीं है इसमें मेडिसिन की तरह, तो एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए।
0: श्वेता जी, बहुत अच्छा लगा हमें प्राणी हीलिंग के बारे में जानकर, कैसे हम अपने चक्रों को हील करके हमारे बॉडी को हील कर सकते हैं और अपनी खुद की एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि हमें कहीं पे मतलब कॉस्ट नहीं लगने वाला है।
1: हाँ, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, तो इससे अच्छा क्या ही होगा कि हमारे बॉडी से हम खुद हील हो रहे हैं।
0: राइट। सो श्वेता जी, आशा करती हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए भी आज की इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहेगी और जरूर प्रेरणा मिलेगी उनको प्राणी हीलिंग सीखने के लिए आज के एपिसोड के बाद। सो श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है रेडियो पुनेरी आवाज के स्टूडियो में आने के लिए और आपके आगे के जर्नी के लिए भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।
1: थैंक यू सो मच।
0: सो दोस्तों, मैं आरजे सिंह आज के एपिसोड से विदाई लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए विषय पर नए गेस्ट के साथ, बट आप कहीं मजे सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

पर कुछ नकद कुछ उधार मुश्किल है, है, है मुश्किल है बचना हमारा हमारा रे घर में सताती है कड़की।

0: अरे छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं, हमारे सिवा हाँ तुम्हारे और कितने।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना, ना।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर।

अगर मुड़ के इधर देखो मेरे मासूम कातिल, तो जानोगे कि हम ही हैं तुम्हारे दिल के काबिल।